0: अरे गधों, सुर में रेको, सुर में हटको मत, हटको मत। जब दूल्हे राजा आएंगे तो लोगे तुम बलाए,
1: लोगे तुम बलाए।
0: अरे नालायकों हम नहीं तुम,
1: अरे नालायकों हम नहीं तुम।
0: तुम लेके बलाए फिर देंगे,
2: फिर देंगे।
0: अरे देंगे दुआए,
1: देंगे दुआए।
0: शाबाश, तो बनी रहे जोड़ी क्या।

0: अहो ऐकलत का
1: हो आमचा रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशिया बाटो।

01.02 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया। आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, आज हम स्वामी विवेकानंद के तेजस्वी विचारों की चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे संत थे जिनके रोम का हर कण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। राष्ट्र के दीनहीन लोगों की सेवा को विवेकानंद ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। उन्होंने युवाओं के हृदय को जितना झंकृत किया, उतना शायद किसी और ने किया हो। विवेकानंद जी ने करोड़ों देशवासियों को समृद्ध करना ही अपना जीवन का लक्ष्य बनाया था। उन्होंने 4 जुलाई सन 1902 को देह का त्याग कर दिया। वे भारत के महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में स्थित शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रही है। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद को केवल 2 का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी भाई बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया। कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ, परम और पवित्र है। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों को आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़भूंजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला, वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इसी प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यही बड़े बड़े महात्माओं व ऋषियों का जन्म हुआ। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यही केवल आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्यों के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। श्रोतों, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूँ आरजी शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रुते हो स्वामी विवेकानंद के कुछ अनमोल वचन प्रसिद्ध हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। वे कहते थे, हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है, करना ये है कि हम इसकी दिव्यता को पहचाने, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर। कोई एक विचार ले और इसे ही अपने जिंदगी का एकमात्र विचार बना ले, इसी विचार के बारे में सोचे, सपना देखे और इसी विचार पर जिए। आपके मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही एक विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है, यही समाज की रीत है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। हर जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है, वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। श्रुते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: देखें, अगर देखने का समय नहीं है तो सुन ही लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया। आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, साधारण मनुष्य अपने विचार का 90% विचार व्यर्थ विचार करता है, इसीलिए वो निरंतर भूले करता है। एक प्रशिक्षित मन कभी कोई भूल नहीं करता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अगर आप अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैं उस व्यक्ति को शूरवीर मानता हूँ जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वयं पर विजय ही सबसे कठिन विजय होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है, उसकी मांगे जो जो पूरी कर की जाती है त्यों त्यों और गर्जना करता रहता है। वे कहते थे, ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। वे कहते हैं, आज वही कल है जिस कल की चिंता तुमने कल की थी। वे कहते हैं, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, मगर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बड़ा सोचो, दूसरों से पहले सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है। वे कहते थे, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता, जीवन के हर कदम हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। वे कहते हैं, प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन, इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वो जो प्रेम करता है वही जीता है, वो जो स्वार्थी है वह मर रहा है। इसीलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, संभव की भी सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाएं। वे कहते हैं, भय और अधूरी इच्छा ही समस्त दुखों का मूल है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वाणी है जो हथियार उठाए बिना ही क्रांति करवा सकती है और परिश्रम किए बिना शांति। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, भगवान से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं है बल्कि

प्रभावी ढंग से उसके सारे बंधन तोड़ देता है। वे कहते हैं, विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो रहे हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता। वो भयभीत होते हैं और यही असफलता का कारण है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है, वही तुम्हारा परम शत्रु है। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रुति हो, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। वे कहते हैं, जो अपने लिए नियम नहीं बनाते उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, पीड़ितों की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मठ की भूमि तक भी बेच देंगे। हजारों असहाय नर नारी हमारे नेत्रों के सामने कष्ट भोगते रहे और हम मठ में रहे, ये असंभव है। हम सन्यासी हैं, वृक्षों के नीचे निवास करेंगे और भिक्षा मांगकर जीवित रह लेंगे। वे कहते हैं, किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। ये निर्भयता ही है जो क्षण मर परम आनंद लाती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो अग्नि हमें गर्मी देती है वो हमें नष्ट भी कर सकती है, ये अग्नि का दोष नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हार के डर से कोशिश छोड़ देने से अच्छा है जीत की कोशिश करते हुए मर जाना। वे कहते हैं, धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। ये शक्ति जब तक सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ये देश धर्म, दर्शन और प्रेम की जन्मभूमि है। ये सब चीज़ें अभी भी भारत में विद्यमान है। मुझे इस दुनिया की जो जानकारी है उसके बल पर दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में भारत अन्य देशों की अपेक्षा अब भी श्रेष्ठ है, महान है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब कभी भारत के सच्चे इतिहास का पता लगाया जाएगा तब ये संदेश प्रमाणित होगा कि धर्म के समान ही विज्ञान, संगीत, साहित्य, गणित, कला आदि में भी भारत समग्र संसार का आदि गुरु रहा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। वे कहते हैं, मनुष्य अपने अंदर से जितना करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा वो संसार को भी उसी तरह पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व जान सके। वे कहते हैं, जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज़ 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com.
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं। हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी के पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
3: आला आला आला,
4: अहो काय आला
3: आला आला, आवाज रेडियो चा

0: ही आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुन ही लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप उन्हें कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साथी, पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशिया बांटो।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे

दबाव और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर हम आपके साथ और एक बार फिर जीवन को नए नजरिए से देखने की कला सीख रहे हैं, जिसे हम लाइफ स्किल्स कह रहे हैं। इस पूरी श्रृंखला में बहुत कुछ नया सीखा अपने बारे में और देखा कि किस तरह से माइंड पावर, थॉट पावर जो है वो ना सिर्फ मेरे रिश्तों को, मेरे पूरे जीवन को, बल्कि मेरे बॉडी की जो एलिमेंट्स हैं उन्हें भी ठीक करने में हमारी बहुत मदद करता है। आज बात को आगे बढ़ाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो इश्यूज जो रिजॉल्व नहीं किए हैं हमने, जो हमारे बैकलॉग में चल रहे हैं, बार बार बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको सॉल्व कैसे करें। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बहुत सारी बातें तो आपने हमें हमारी बॉडी के बारे में अवेयर करके बताई, ये भी बताया कि एक एक थॉट, एक एक फीलिंग कैसे विजुलाइज करके हम उसको हील कर सकते हैं। बात करते हैं उन मुद्दों की जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमने पहले भी इसी श्रृंखला में बात की थी कि वो नहीं छूटती हैं, वो जो एक दर्द है, एक गुस्सा है, एक हर्ट है, मतलब वो थॉट आते ही, वो घटना सामने आते ही वो सब कुछ सामने आता है और बहुत मुश्किल होता है पास्ट से निकल पाना। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कम आउट?
1: सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि उसकी इफेक्ट कितनी पावरफुल हो रही है बॉडी पर। आज कई बार कोई इस प्रकार के इमोशंस हो, इमीडिएट हार्ट अटैक आ सकता है। हेंसेल के, जिन्होंने स्ट्रेस पर बहुत काम किया है, उनका कहना है कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं, उनका कारण है कि वह किसी को माफ नहीं कर पाते और वह जो फीलिंग है उसके कारण उनको इस प्रकार की बीमारी भी हुई। तो जब जब भी वह फाइल खुलती है तो सारी नेगेटिव इफेक्ट, न केवल मन पर, आपने जो कहा मन पर तो इफेक्ट हो ही रही है, कि बॉडी पर भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट हो रही है। यह भी एक पावरफुल रीज़न है कि इन इश्यूज़ को हमें रिजॉल्व करना चाहिए। जितना उससे ऊपर उठेंगे तब ही आप पूरे स्वास्थ्य को इंजॉय कर सकेंगे।
0: तो क्या करें, मतलब हर बार यही आ जाता है सवाल कि क्या करें, ये रिजॉल्व करें और कैसे करें, उस पर आते हैं। पहले ये बताएं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आई थिंक समवेयर वी नीड टू नो कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया था, मुझे धोखा दिया था, चीट किया था, बिजनेस में किया था, रिश्ते में किया था, वो मुझे याद आता है और मुझे सारा गुस्सा फिर आता है, लेकिन आता है, उसके थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद चला जाता है क्योंकि बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो मेरी बॉडी पर उसका असर क्या पड़ रहा है?
1: तब यही जो टॉक्सिक इमोशंस का हमने समझा था वो सारी इफेक्ट होती है, क्योंकि फिर से सिंपैथेटिक अराउजल होगा, बॉडी पर उसकी इफेक्ट होगी, एंडोक्राइन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम, दैट विल अफेक्ट यू। आपकी जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी भी सप्रेस्ड होगी, तो इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट होगा, वो ब्रेन के 900 केमिकल्स विल गेट डिस्टर्ब, दैट ऑल्सो विल हैव अ इफेक्ट।
0: शिवानी, विल इट इंस्पायर मी मोर कि जब मुझे पता चले कि ये सब कुछ हो रहा है कि मैं रिजॉल्व करूँ?
2: या आई वॉज जस्ट थिंकिंग, आजकल बहुत अवेयरनेस है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के बहुत सारा, यू नो, कुछ एक महीने या कुछ एक साल से हम ऐसा खाना खा रहे हैं, ऐसी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं जिससे शरीर में टॉक्सिन्स जम चुके हैं, तो हम एक अलग डाइट को लेते हैं, कुछ दिन अलग निकालते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। व्हाट अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन हियर? इतनी टॉक्सिक थॉट्स क्रिएट की हुई हैं इतने सालों से, कई बार तो जैसे बचपन से हमने पकड़ी हुई हैं वो बातें, उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे अगर, तो व्हाट मिरेकल्स इट कुड क्रिएट। क्योंकि जब भी कोई अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इमीडिएटली फील करता है कि मैं रिजुविनेट हो गया, इट्स लाइक अ न्यू बॉडी ऑल टुगेदर
0: हो जाता है, बिल्कुल
2: लाइट, क्योंकि इट्स लाइक पॉइजन, इट्स लाइक यू नो, ये सारा जो गंध था वो मेरे शरीर से निकल गया। अब इसी तरह जो सारा गंध मैंने यहाँ पकड़ कर रखा हुआ है, अक्यूमुलेट किया हुआ है, इसको अगर मैं क्लीन कर दूँ तो हमें, हम कितना हल्का महसूस करेंगे यहाँ, आई विल फील लाइट, और जितना पकड़ कर रखा है आई फील वेरी हैवी। So let's start detoxifying the mind, detoxifying the soul.
1: And this is no more necessary, क्योंकि वो जो toxins है वो तो मृत्यु के बाद चले जाएंगे, कि यहाँ जो toxins आपने भर के रखे हो दूसरे जन्म में भी आप carry on करने वाले।
0: फिर हम वो कहेंगे कि past life के कारण हो रहा है ये सब कुछ, because this is what we are carrying.
1: हाँ, और this can be a powerful motivation. अभी भी कुछ समय पहले मेरे पास एक patient था, वो करीब 25 साल का लड़का होगा, और father के प्रति उसको बड़ी hatred थी, क्योंकि फादर ने बचपन में उसको बाहर नहीं जाने देते थे, घर में ही रखते थे, लोअर मिडिल क्लास एरिया था कि भाई गलत संगत में आ जाएगा, और उसके कारण उसमें डर निर्माण हो गया। वो अभी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, लोगों को मिल नहीं पाता है, तो बड़ा हेट्रेड था फादर के प्रति। एक दो सेशन के बाद मैंने उसको कहा कि तुमने किया, उससे ऊपर कहते नहीं नहीं हो सकता है। फिर एक दिन बोलता है डॉक्टर साहब करना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि मैं सफ़र कर रहा हूँ। फिर और एक सेशन में मैंने कहा देखो अभी आपने नहीं किया ना, तो अगले जन्म में भी तुम इसको ले जाओगे। फिर नेक्स्ट सेशन कि हाँ हाँ नाउ आई एम फ्री, मुझे इससे मोटिवेशन मिल गया कि अगर अभी मैं फ्री नहीं हुआ तो अगले जन्म में भी इस हेट्रेट को, इस रिवेंज को मैं ले जाऊंगा, तो मैंने उसको पूरा छोड़ दिया।
0: तो एक्चुअली वो रिवेंज और हेट्रेट, उससे निकलने के लिए हम लोगों को छोड़ते हैं, व्यक्तियों को छोड़ देते हैं, जिंदगी मतलब किधर किधर किधर घूमते हैं।
2: सी हम लोगों को छोड़ सकते हैं, सपोज मेरा आपके साथ चीट आपने मुझे किया, मैंने आपको छोड़ दिया, चलो लेट मी से कि देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन, मुझे आपसे अलग होना है, मैंने आपको छोड़ दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, लेकिन क्या नफ़रत को छोड़ दिया? उस नफ़रत को तो फिर भी पकड़ के रखा ना, तो आपसे विड्रॉ हो गई। इट वॉज नॉट अबाउट विड्रॉइंग फ्रॉम पीपल, इट वॉज अबाउट विड्रॉइंग फ्रॉम द इमोशन, बट वी विड्रॉ फ्रॉम पीपल, होल्ड ऑन टू द इमोशन, सो द डैमेज इज मल्टीफोल्ड, कि मैं बार बार बार बार वही चिंतन कर रही हूँ। एंड फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे हम शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो शरीर का बेनिफिट है, लेकिन माइंड अगर टॉक्सिक है तो वो माइंड तो हर काम कर रहा है ना, हर रिश्ते में जा रहा है, हर प्रोफेशन में, मेरे हर फील्ड में वो टॉक्सिक माइंड वर्क कर रहा है। इसका मतलब मेरे जीवन का हर क्षेत्र है अफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज द माइंड इज डूइंग एवरीथिंग।
0: एक्चुअली हर चीज में रिजेंटमेंट, ट्रस्ट ना करना,
2: सो इट्स नॉट अबाउट वन एस्पेक्ट द माइंड। देखो सपोज माई बॉडी इज टॉक्सिक, चलो मेरा शरीर ठीक नहीं चलेगा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, मेरे रिश्ते तो ठीक हो जाएंगे क्योंकि मैं बॉडी डजंट डू एनीथिंग इनटू द रिलेशनशिप्स, मैं अपने करियर में तो फिर भी थोड़ा ठीक चल लूंगा, बट माय माइंड इज एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ, हर स्फीयर पे मन है, इस पे टॉक्सिन्स अगर है मीन्स देयर इज गोइंग टू बी डैमेज एवरीवेयर। फिर मैं हर एक से नाराज होता रहूंगा, घर में लोगों से, प्रोफेशन में अपने कोलीग से, हर एक से नाराज होता रहूंगा विदाउट रियलाइजिंग कि जहर तो यहाँ भरा हुआ है।
0: वो मतलब वो एक जहर की जो एक वो नहीं कैरी करते थे पुराने जमाने में कि अंगूठी में डाल के रखते थे, सी आई थिंक हर बार एक ड्रॉप उसका वो डाल देते हैं। डॉक्टर साहब डिटॉक्सिफिकेशन की बात की सचिव शिवानी ने, कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, उसकी तो टेक्निक्स हम समझ गए, ऐसी डाइट, अब इसको करें कैसे? नहीं होते रिजॉल्व, कितनी कोशिश करते हैं, इट जस्ट यू नो इट्स लाइक आई एम नॉट से इट कम्स, बट आई क्रिएट, कंटिन्यू टू क्रिएट इवन इफ आई डोंट वॉन्ट टू। It just comes.
2: It's because we don't want to forgive. Forgiving is not difficult. Forgiving is very easy.
0: We don't want to forgive.
2: अब मैं क्यों नहीं forgive करना चाहती? क्योंकि गलती उनकी इतनी बड़ी थी, दर्द मुझे इतना हुआ था, तो क्यों मैं फॉरगिव करूं? अगर मैं फॉरगिव करती हूं तो फिर वो और वो ही करेंगे, यू नो कितना ज्यादा
0: हम इस पर जस्टिफाई हो जाएंगे फिर।
2: अगर मैं ही बार बार माफ़ करती रहूँ तो वो तो फिर से, चलो कुछ होती हैं जीवन की बड़ी बातें जिसमें यू नो विच कैन बी लाइफ चेंजिंग, लेकिन छोटी छोटी बातों में ले लेते हैं, सारा दिन बातें हो रही हैं जो हम कहते हैं मैं अगर हर बार इसको बात को हल्का कर दूँ, माफ़ कर दूँ, तो ये तो हर बार करते जाएंगे, तो औरों को सुधारने के लिए अपना नुकसान, एंड फिर वो इतना संस्कार पक्का होता जाता है, इट बिकम्स माय नेचर टू होल्ड थिंग्स अगेंस्ट पीपल, नॉट बीइंग एबल टू फॉरगिव बिकॉज आई से उनकी गलती इतनी बड़ी थी। बहुत सारे भाई बहने हमें मिलते हैं हु आर कैरिंग बर्डेंड पास्ट, हुआ है जीवन में, इट कुड बी एनीथिंग। कुछ समय पहले एक बहन से मिलना हुआ जो ये टेलीविजन का प्रोग्राम काफ़ी समय से देख रहे हैं, और उन्होंने आकर अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब वो 11 वर्ष की थी तो उनके पेरेंट्स ने उनको एक दिन अपने किसी दोस्त के घर भेजा जो अकेला था, वो अबाउट 50-year-old पर्सन था जिसकी फैमिली किसी और सिटी में गई थी, तो पेरेंट्स ने कहा वो अंकल अकेले हैं, आप आज उनके घर चले जाओ। And that person, and this girl was 11 years old. That 50-year-old man physically abused this 11-year-old girl. Today, that lady is 40 plus. She's 40 plus. लेकिन ये 30 साल से ऊपर की जर्नी में उसने अपने पेरेंट्स के प्रति नफरत पकड़ के रखी है। She openly says, I hate my parents. I thought she'll say, I hate that person जिसने ये किया. She said, उससे मुझे कोई इतना लेना देना नहीं, गलती किसकी थी इसमें?
0: मेरे
2: पेरेंट्स की जिम्मेवारी थी मेरा ध्यान रखना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहां भेजा, तो पूरी गलती मेरे पेरेंट्स की. शी इज कैरीड दैट रिजेंटमेंट इन हर फॉर मोर देन 30 इयर्स नाउ. रिजल्ट, आज वो एडिक्शंस में है और वो एडिक्शन से बाहर नहीं निकल के आ रही, क्योंकि इतनी नफरत मेरे अंदर भरी है कि जब तक मैं ये नहीं लेती आई डोंट फील गुड एट ऑल. नहीं तो वो माइंड में मेरे वही थॉट्स चलती रहती है. मैरिज हुई, बेटी है, लेकिन डिवोर्स हो गया, हस्बैंड के साथ नहीं बनी. करियर वाइज कुछ भी नहीं कर पा रही, फिजिकली भी कुछ एक एलिमेंट्स लगी हुई है. पेरेंट्स के साथ रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं बना, ओनली बिकॉज 30 इयर्स से ऊपर वो नफरत पकड़ के रखी है. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ये रिजेंटमेंट नहीं कैरी कर सकते, इवन इफ द पास्ट एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी वेरी डैमेजिंग. चाहे कुछ भी हुआ हो, वी नीड टू फॉरगिव, क्योंकि उसी से हमारी हीलिंग होंगी. नहीं तो उस बहन को देखकर मुझे लगा, देखो पूरी जीवन इस नफरत को पकड़ने की वजह से इमोशनली, फिजिकली, रिलेशनशिप्स, प्रोफेशन, चारों एस्पेक्ट्स पर कहीं भी हेल्दी नहीं चला.
0: आई थिंक डॉक्टर पटेल, क्यों हम फॉरगिव नहीं करते? क्योंकि शायद हम उससे पहले, उस इंसिडेंट से पहले जैसा जीवन जी रहे थे वैसा जीवन चाहते हैं. तो अब वो तो आएगा नहीं, क्योंकि लगता है वो तो खत्म हो गया, तो इसीलिए अब वो प्राप्ति तो होने वाली है नहीं, इसलिए हम फॉरगिव नहीं करते हैं. हम उसको पकड़ के रखते हैं या रिजेंटमेंट या गुस्से में रहते हैं कि वो तो प्राप्त नहीं होगा, वो तो वापस नहीं मिल पाएगा जो था हमारा इतना सुंदर.
1: नहीं, हम अपने डैमेज तो सोचे ना. जैसे शिवानी बेन ने कहा, मुझे मेरे दो पेशेंट के एग्जाम्पल याद आए, भाई यहाँ तो डिप्रेशन सिर्फ हुआ है, वहां तो सिजोफ्रेनिया हुआ है. बोथ ऑफ देम वर फिजिकली अब्यूज्ड, आज दोनों सिजोफ्रेनिक है. तो देखो, उन्होंने इतना उसको दिल पर ले लिया कि पागलपन आ गया. तो अगर वहीं पर माफ कर देते जल्दी से, कोई टेक्निक को अच्छे से समझ लेते, तो बीमारी नहीं होती.
0: माफ करना क्यों जरूरी है?
2: क्योंकि माफ करने से मेरी कितनी सारी हीलिंग हो गई ना. देखो, जैसे गिरीश भाई ने कहा, एक एक थॉट हमारे सेल पर वर्क कर रही है, माइंड पर वर्क कर रही है, हमारे बॉडी के हर सेल पर वर्क कर रही है. तो हेट्रेड की थॉट है ना, आई एम कैरिंग अ होल बंच ऑफ थॉट्स ऑफ हेट्रेड, तो पूरे इफेक्ट नहीं आएगा. एनर्जी है, वाइब्रेशंस नहीं क्रिएट होंगी. जिनसे भी मैं मिलूंगी उनको मुझसे कौन सी वाइब्रेशंस मिलेंगी? इट्स लाइक द परफ्यूम यू आर यूजिंग, दैट इज़ योर एनर्जी. तो अगर आपने नफरत की परफ्यूम यूज़ की हुई है, आपके किसी के साथ भी रिश्ता नहीं जुड़ेगा. आई कम नियर यू एंड आई मूव अवे. कई लोगों से जब हम मिलते हैं, हमें लगता है नॉट वेरी कम्फर्टेबल इनसे मिलने से. कुछ हुआ नहीं, कहेंगे इनका ऑरा बहुत भारी है, इनकी वाइनो बहुत भारी भारी है ये. कुछ लोगों से आप मिलेंगे, आपको लगेगा इनसे मिलकर अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ वॉट पैकेट दे आर कैरिंग हियर. तो इसलिए आपका सिर्फ एक रिश्ता नहीं खराब होता, यू नो, जिसमें आपने वो एक्सपीरियंस किया. आप किसी भी रिश्ते को ब्यूटीफुली नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, क्योंकि आपकी अपनी ऑरा बहुत भारी है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जीवन, ठीक है, एक हादसा कितना भी पड़ा, एक हुआ है, देयर इज लॉट्स मोर टू हैपन. बहुत कुछ है जीवन में और, लेकिन अब आगे की डेस्टिनी, इसके बाद मुझे कैसी क्रिएट करनी है, दैट्स कंप्लीटली इन माई हैंड्स नाउ. नफरत पकड़ के रखो, दिस विल बी द डेस्टिनी. फॉरगिव, the world will be beautiful for me. There was another lady, she was abused when she was a child. Today she's 35 plus. I think she's one of the most sincere watchers I have seen of this program. Ek bhi episode shayad nahi miss kiya, notes banaye, study kiya. She had been physically abused and ek din wo program mein baithi thi, live program mein, and hum us pe commentary kar rahe the ki let go. Jinko bhi humne aaj din tak pakad kar rakha tha, aaj hum unko jaane dete hain. After the program, she got up and said, 30 years ke baad, aaj us vyakti ko jaane diya. Us ek incident ki wajah se, she did not get married, logon se wo dur ho gayi. She said, I hate people. Us ek experience ki wajah se. Lekin thodi der baithi, uske damage ko samjha. She said, I let him go today. Jeevan parivartan ho gayi. Today she's a different person. So, hum hi khud ko damage karte, हम ही खुद को हील कर सकते हैं. दिस इज ट्रेमेंडस पावर दैट वी हैव.
1: रियली, यू नो, दिस इज पावरफुल. बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है. और एक इम्पॉर्टेंट बात की भी, क्यों मैं माफ करना चाहता हूँ? क्योंकि जो तुम्हारे कारण मेरे पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुए, उससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ. मैं तुमको माफ नहीं करना चाहता हूँ, इट्स ओके. लेकिन मेरे पर जो नेगेटिव इफेक्ट हो रही है, एटलीस्ट आई वांट टू राइज अबाउट दैट,
0: तो मैं अपने आप को तो माफ करूं कम से कम,
1: नहीं उसको ही माफ कर, तभी वो इन्फ्लुएंस से आप ऊपर उठेंगे। तो मेरे फायदे के लिए मैं किसी को माफ कर रहा हूँ, तो करना ही चाहिए।
2: एंड माफ करना मतलब भी क्या, मतलब उस इंसिडेंट और उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद। It doesn't have to come back on my mind. That is माफ करना ना। माफ means वो बात बार बार बार बार मेरे mind में चलती रहती है, वो thoughts create होते रहते हैं। माफ करना need not mean कि मैं उनके साथ जाकर best of friends बन जाऊँ। माफ करना is not कि मैं उनसे रोज बातें। माफ करना just means वो मेरे चित पर अब नहीं है।
0: वो मेरे thoughts में ना आए, मैं उनके वो जो feelings थी वो ना। But is it possible? कैसे कर सकते हैं? मेरे हाथ में नहीं होता ना। See again when it okay, I create, but then वो जब create कर रही होती हूँ मैं, तो मैं उसके वश में हूँ।
2: तो अपने आप को फिर से समझाओ ना। See again awareness, ये thoughts आ रहे हैं, मैं फिर अपने आप को समझाऊँ। एक नुकसान उन्होंने मेरा किया, बाकी नुकसान मैं अपने कर रही हूँ। एक नुकसान उन्होंने मेरा किया, जो भी किया, बिजनेस में चीट किया, अब्यूज किया, जो एक नुकसान किया, yes that person has done what damage, बाकी नुकसान कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। टॉक टू योरसेल्फ, दिस इज चेंजिंग माई थॉट्स। और इसमें परमात्मा का प्यार और शक्ति हमें वो हील करने में मदद करता है। कोई मेरे साथ अगर ऐसा करता है, कोई भी प्रकार का धोखा, इट्स अ रिजेक्शन, मुझे एक रिजेक्शन मिलता है किसी रिश्ते में। परमात्मा से मुझे एक्सेप्टेंस मिलता है, प्यार मिलता है, तो वो मेरी हीलिंग को ईजी कर देता है। जस्ट बिकम्स वेरी सिंपल टू डू द प्रोसेस। बट ओनली इफ आई कीप टेलिंग माई सेल्फ डैमेज उन्होंने नहीं किया, ये रिपीटेड करने से डैमेज मैं कर रही हूँ। दिस आई हैव टू एक्सप्लेन टू माई सेल्फ। आपको बिजनेस में किसी ने चीट किया, क्या नुकसान किया? पैसे ले गए ना आपके, सारे पैसे ले गए लेट से, लेकिन आपकी मन का, शरीर का और आपके रिश्तों का अब नुकसान कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। किसी ने आपको फिजिकली अब्यूज किया, फिजिकली किया ना, लेकिन अब माइंड का, रिलेशनशिप्स का, प्रोफेशन का नुकसान मैं कर रही हूँ। दिस इज हाउ आई विल हैव टू कीप टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड कम आउट ऑफ इट।
1: और कुछ पावरफुल एग्जाम्पल्स भी याद करो। ग्राहम स्टेन का उदाहरण बहुत सारे लोगों ने सुना है कि जो उड़ीसा में एक फादर थे, उनको और उनके बच्चों को जिंदा जला दिया गया था। तो एक साल के बाद पत्रकारों ने उनकी पत्नी को यह प्रश्न पूछा कि आपके पति और बच्चों के हत्यारों के बारे में आपके दिल में कैसी भावनाएं? तो उस महिला ने बहुत ही पावरफुल उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये हत्या हुई थी उसी दिन मैंने उन्हें माफ कर दिया था। तो बताने में भी जबरदस्त शक्ति चाहिए।
0: तो उनका जो रख के भी क्या फायदा?
2: It's not about क्या फायदा? She changed her destiny. वो पूरा परिवार अपना देश छोड़ के इन लोगों की सेवा के लिए आए थे। इन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया। Now this lady, she's lost all her 3 family members. She could have lived the rest of her life in pain. She's working today with the same people. She's serving them, she's helping them. She's changed her destiny. आप वो situation को तो नहीं change कर सकते हो। You can't get those people back, but you can change how you are going to carry it forward. That's the power. Creating my present and my future, not only holding back my past. This is the power we have.
1: In fact, remember such example. और इसमें बहुत बड़ा healing power है। कहते हैं I forgive you। ये 3 शब्दों में बहुत जबरदस्त शक्ति है बस।
0: यहाँ एक मेरे को एक और भी aspect लेना है rejection का, जो आपने कहा कि ये तो situations वो थी कि लोग चले भी गए और लोगों से मैंने अपना नाता भी नहीं रखा because I was rejected या मुझे धोखा हुआ। There are times when I have been rejected, but I'm waiting. I know somebody जो एक relationship में break हुआ और उसके बाद वो लड़का कहीं गया, लड़की यही है, अब वो rejection है या जो भी, the girl is still waiting, you know, वो wait और उसके प्रति वो नफरत भी है कि मुझे reject किया, किस कारण किया, क्या, और वो जो वो wait, तो आज भी पूरा जीवन 2 साल बाद भी वो जीवन वैसा का वैसा है और आना वेट भी, और तो ये इसको कैसे हील करें, क्योंकि ये पूरी जिंदगी एक तरह के रिजेंटमेंट में चल रही है, बाकी सारे रिश्ते जो हैं वो और खराब होने शुरू हो गए क्योंकि वेट जो है वो बहुत पेनफुल है और अब्सेशन, उसको कैसे हैंडल करें?
1: भी अपोजिट है नहीं, यहाँ पर जो लेट गो करने की बात थी, हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में वो अटैचमेंट है। अटैचमेंट इतना पावरफुल है कि व्यक्ति डिटैच नहीं हो पाता है। तब अगर ये अच्छी तरह से मन को समझाए कि डिटैच होना ही मेरे लिए सॉल्यूशन है, मैंने अटैचमेंट रखा तो मेरी सुख शांति आनंद सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस कुछ भी हो जाए मुझे डिटैच होना है।
0: अच्छा, हम अगर ऑब्सेशन की बात करते हैं रिलेशनशिप में, कि वो व्यक्ति ऑब्सेस्ड हो गया और दूसरा व्यक्ति चला गया है,
2: कुछ नहीं है इसमें, एक ही थॉट है, आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस पर्सन, एक थॉट है, विच इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है ये थॉट। लेकिन ऐसे सिचुएशन में ये लोग अपने आप को वही थॉट देते जाते हैं। हमारे पास इतनी लंबी लंबी ईमेल आती है, आई जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट दिस पर्सन, सेज हु, सेज मी, चेंज व्हाट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके बिना हमारा जीना बंद हो जाएगा। लेकिन आई लव टू गिव माई सेल्फ दिस थिंकिंग कि मैं इसलिए दर्द में हूँ, मैं इनके बिना नहीं जी सकती। तो जब तक आप अपने आप को वो थॉट दोगे, आपको वही फीलिंग आएगी, आपकी वो वेट पीरियड चलती रहेगी। चेंज योर थॉट पैटर्न, आई एम अ पावरफुल सोल, मेरी लिविंग, मेरी हैप्पीनेस किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा था उनके साथ, यू नो, बात करना, रिश्ता, वो ठीक है, बट डिपेंडेंसी नहीं है। इमिजिएटली आई विल बी एबल टू गेट बैक माई सेल्फ टू दैट डिग्निटी। ये एक्चुअली अपनी डिग्निटी को बहुत नीचे कर देना है कि एक किसी की वजह से आई एम नॉट रेडी टू लिव, आई कांट डू विदाउट दिस पर्सन।
0: इनफैक्ट उसके बारे में हम बात भी नहीं कर पाते किसी और से, क्योंकि अंदर अंदर खुद को बहुत बुरा लग रहा होता
2: है। नहीं, और खुद पर बहुत गुस्सा आता है,
0: कि हम क्या कर रहे हैं।
2: खुद से नफरत होती है कि मैं कितनी कमजोर हूँ। इट्स लाइक एनी अदर एडिक्शन, कि मैं इस ड्रग के बिना नहीं रह सकती, मैं इस सिगरेट के बिना नहीं रह सकती, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती। तो जैसे बाकी एडिक्शन से हम अपने आप को ज़बरदस्ती हटाते हैं ना, सपोज आई वॉन्ट टू गिव अप सम एडिक्शन, मैं उसको ज़बरदस्ती छोड़ती हूँ, थोड़े दिन तकलीफ होगी, इट्स अ विड्रॉल सिम्टम। इसी तरह से रिश्ते में भी जो नहीं वर्कआउट कर रहा, आपको अपने आप को ज़बरदस्ती हटाना है, यू विल हैव टू ब्रेक अवे। थोड़े दिन तकलीफ होगी, लेकिन उस तकलीफ में अपनी काउंसलिंग खुद करते जाएंगे, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करते जाएंगे, धीरे धीरे एडिक्शन ओवरकम हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, थोड़े दिन करते हैं, फिर बीच में कहते हैं मैं एक बार फोन करके बात कर लूं, बस 2 मिनट के लिए बात कर लूं। तो इट्स लाइक 10 दिन मेहनत किया, 10 दिन मेहनत किया, सिगरेट छोड़ा, विड्रॉल सिम्टम हुए, थोड़ी सी विल पावर आई, फिर जाके एक सिगरेट ले ली, तो आपका वो पूरा 10 दिन का एफर्ट वेस्ट हुआ। यू हैव टू बिगिन ऑल ओवर अगेन। सोचे, डिसाइड करें, यू वॉन्ट टू मूव अवे, डू इट स्ट्रिक्टली, एवरी वन हैज द पावर टू डू इट, इट ओनली डिपेंड्स आप अपने आप को कौन सी थॉट्स देंगे। हम अपने आप को ही, यही अगर आपके आस पास किसी और को हो रहा होता, आप उनको क्या थॉट्स देते? कहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप उस पर डिपेंडेंट नहीं है। जो थॉट्स आप दूसरों को देते हैं, वही थॉट्स अपने आप को देने हैं।
1: और देयर टू पॉसिबिलिटीज, एक तो अपने आप को ये सोचो कि भी और क्या क्या संभावना है। ये एक व्यक्ति से मैं अटैच हूँ, उसको छोड़ नहीं पा, और कुछ संभावनाएं हैं, वो लिखो सचमुच, तो भी आपको मिल जाएगी कि भी और भी कई संभावनाएं हैं। आई कैन मेक फ्रेंडशिप विद अदर्स, मैं कोई अच्छा प्रोफेशन कर सकती हूँ, और कोई मेरे लिए अच्छी संभावनाएं हैं। और एक बात ये बहुत समझने की ज़रूरत है, ऐसे बहुत सारे केसेस में कि अगर वो अटैच ही रहे तो दुख में जीवन जिया, डिप्रेशन में जिया, बीमारियां आई, ख़त्म हो गए, और जो इससे बाहर निकल गए तो फिर उनका जीवन और बहुत अच्छा हो गया। इवन बाद में तो ये कहने लगे कि अच्छा हुआ कि हम इससे बाहर आ गए, अगर नहीं आते तो शायद हमारा जीवन बहुत दुखी होता। मेरे पास तो ऐसे कई प्रैक्टिकल केसेस है, नहीं, जहां भी लड़की को कहीं अटैचमेंट हो गया, वो सोचती थी मैं सुसाइड करूंगी, ये लड़के के अलावा कहीं नहीं जाऊंगी। थोड़ा अच्छे से उसका पीछा किया और बातें समझाई, ट्रीटमेंट की और से मुक्त हुई, आके तो बड़ा अच्छा हुआ वो। तो ये सब आप लोगों ने मेहनत की, एफर्ट
0: की पावर से, बिकॉज ये एक पावर है। ना सिर्फ यूथ इसमें फंस रहा है, आज मिडिल एज में जो लोग, हमने बहुत बार बात की है, ऑब्सेशन होके और खुद, जैसे आपने कहा, शर्म खुद से आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, काउंसलर के पास भी नहीं जा पा रहे। तो क्या मेरे थॉट्स पावरफुल थॉट्स या मेडिटेशन इज,
2: आई कैन जस्ट टेल यू के थ्रू दिस टेलीविजन प्रोग्राम लॉट्स ऑफ पीपल हैव डन इट, आई कांट शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। बहुत बहुत बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो यूथ हैं, चाहे वो मैरिड कपल्स हैं, जो आउट ऑफ मैरिज रिश्तों में जुड़ चुके थे, they have overcome it, and it's an inspiration. I feel very nice when I meet such people, ki look at the power every soul has. Jo atma decide kar leti hai ki mujhe ye karna hai, वो कर लेती है. एंड एवरी टाइम हम किसी से ऐसे मिलते हैं, इट री इन्फोर्सेस कि जो अपने ऊपर करेगा उसको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा.
0: डॉक्टर पटेल, सिस्टर शिवानी, आज फिर एक बार हम अपनी ही थॉट पावर को क्या मिरेकल देखते हैं. यू नो, ऐसे ऐसे सिचुएशंस जब लगता है कि लेट को किया ही नहीं जा सकता, हम छोड़ ही नहीं सकते, ये दर्द मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, हमने मतलब जीवन का एक सच मान लिया है.
2: दर्द को हम, दर्द हमें नहीं छोड़ेगा, हमें दर्द को छोड़ना है.
0: हम दर्द को छोड़ के इक्वेशंस चेंज करके स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. अभी तक तो ये चल रहा था कि बाहर दर्द है उस व्यक्ति के कारण, उस सिचुएशन के कारण मैं कंटिन्यूस पेन में हूँ. पूरा टाइम मेरे मन में एक बोझ रहता है, उस बोझ को लिए जाना ही, उसको ढोए जाना ही मेरी ज़िंदगी है. लेकिन जब अपने आप को पहचानते हैं और इस शक्ति को जानते हैं कि ये मुझ में ही है, क्योंकि पहले भी मैंने ही क्रिएट किया, या ऑब्सेशन भी उस व्यक्ति या सिचुएशन ने तो नहीं कहा था, या वो जो कुछ हुआ था वो उस वक्त का सच था, आज उस सच को बदले बहुत वक्त गुजर चुका है. आज का सच ये है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, शरीर के साथ हूँ, इसीलिए शरीर के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, अपने प्रति मेरी जिम्मेदारी है. बाकी सारी जिम्मेदारियों के साथ इस जिम्मेदारी को भी देखें, अपनी ही ताकत को पहचानें, बदलाव संभव है. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, फिर मिलेंगे. ओम शांति.

0: रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी। अहो ऐकलत का हो आमचा रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी।
1: नहीं तुम मुझसे बात करती हो

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ दर्शना सोनी जी भोपाल से जुड़ी हुई हैं। तो पिछली बार हमने विशेष मानसिक स्वास्थ्य पर उनसे बातें की थी, तो तब मुझे लगा कि आप करियर पे भी बात कर सकते हैं, हमारे युवा साथियों को अपना अनुभव सुनाकर उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि गांव में रहने वाले जो युवा साथी हैं उनको करियर काउंसलिंग की बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। कई बार युवा सोचते कुछ और, होता कुछ और कई बार तो बच्चे पढ़ते भी कम है गांव साइड में। 10th 12th होने के बाद वो कोई ना कोई जॉब या मजदूरी करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनका जो है उतनी बड़ी सोच नहीं रखते कि हमें आगे क्या करना है, तो ऐसे में थोड़ी मुश्किलें होती है। और कुछ कुछ बच्चे जो है एजुकेशन फील्ड में कई टीचर वगैरह बन जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो मजदूरी या फिर इधर उधर गांव के लोग जो है सेट हो जाते हैं। तो ऐसे में गांव वालों को या विद्यार्थी मित्रों को खास करके काउंसलिंग का थोड़ा सा हमें जो है पार्ट अगर उनको मिल जाता है, तो थोड़ी मेहनत करके वो भी अपना अच्छा जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं या अच्छा करियर बना सकते हैं। तो आइए इसी सिलसिले को ध्यान में रखते हुए दर्शना जी से बात करेंगे। दर्शना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत।
0: जी कैसे हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप बताइए।
0: जी जी जी, मैं भी अच्छा हूँ। और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए, आपने अपने करियर को कैसे चुना और करियर के लिए आपने किस तरह की पहल की?
1: जी बिल्कुल, मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखती हूँ।
0: जी जी।
1: और एक पिछड़ापन है वहाँ पर जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। हमारी भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, और राजधानी में एक छोटा जिला है हरदा, तो वहीं के ग्रामीण अंचल से मेरी शिक्षा जो है वहीं से शुरू हुई। तो कहना चाहूंगी कि वहाँ से आगे बढ़ते हुए जब मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, उसके पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी हूँ। मेरा 12th गवर्नमेंट स्कूल, 9th से लेकर 12th तक मेरा गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था। उसके बाद मेरा जो एडमिशन है वो मेडिकल कॉलेज में हुआ, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद मैंने सोशल वर्क एजुकेशन में अपना PG किया। तो अच्छा, ये बहुत बड़ा मेरा एक टारगेट रहा, बिकॉज अक्सर डॉक्टर्स MD करते हैं अपनी लाइफ में, कि उन्हें MD करना है, अच्छी जॉब पाना है, आगे जाना है। लेकिन मेरा जो चुनाव था वो सोशल वर्क काउंसलिंग की तरफ था। और उसके बाद मैंने PG डिप्लोमा भी किया मेंटल हेल्थ में। और इसके अलावा मेरा इंटरेस्ट योगा वगैरह में बहुत है, क्योंकि नेचुरोपैथी योगा भी हमारे जीवन का एक बेस है। तो कहना चाहूंगी कुल मिलाकर कि डॉक्टर बाय प्रोफेशन, बट बाय पैशन आई एम काउंसलर एंड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। तो डेफिनेटली करियर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड रहा है हम सबके जीवन में, तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे।
0: बिल्कुल सही बात कहा आपने। तो फिर आप आगे कैसे बढ़े, थोड़ा सा अपनी करियर काउंसलिंग या फिर करियर को लेकर आपके मन में क्या था, थोड़ा सा वो बताइए।
1: जी अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल पहले दूं, तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल दूंगी, करियर को मैंने कैसे देखा अपने जीवन में, तो देखिए शुरू से ही बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि इंटेलिजेंट वो होता है बंदा जो साइंस सब्जेक्ट लेता है। तो स्कूल से ही दिमाग में भर गया था कि अगर मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो मुझे डॉक्टर बनना है। तो बचपन से घर में, परिवार में, क्योंकि ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है ना इंसान को, तो इंसान के सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, दो ही ऑप्शन, कि डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पर ये बेस्ट होते हैं। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं हमारे पूरे बैकग्राउंड में, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, पूरे शहरी इलाका भी आसपास है, लेकिन फिर भी कोई करियर काउंसलिंग मुझे नहीं मिली थी मेरे बचपन में जिस तरह से मिलनी चाहिए थी। क्योंकि जब हमें ऑप्शंस पता चलते हैं ना कि डॉक्टर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो दवाई दे, बहुत सारे लोग PhD भी करते हैं, वो भी डॉक्टर होते हैं। तो मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मुझे तो बचपन से सुनने में आया था कि डॉक्टर बनना अच्छा होता है, तो ठान लिया था कि चलो डॉक्टर बनना है। और इंजेक्शन लगाने से डर लगता है पढ़ने में, एवरेज स्टूडेंट इंजेक्शन लगाने में डर लगता है, पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट थी। तो बहुत महंगी कोचिंग क्लास से भी मैंने एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि मैं अपनी क्षमताओं को जानती थी। सोशली काफी अवेयर थी शुरू से, स्कूल टाइम से ही सोशली अवेयर थी। कल्चरल बैकग्राउंड में मेरा काफी इंटरेस्ट था, डांसिंग स्किल्स को लेकर मेरा मन में बहुत रुझान था। और मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी तो मैंने अपनी गवर्नमेंट को एक लेटर भी लिखा था कि हमारी स्कूल में डांस टीचर क्यों नहीं है, क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में आर्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं है। अब ये बात तो सोचने वाली है कि स्कूल टाइम में ये बात मेरे दिमाग में आ गई थी, ये मेरा पहला सोशल एक्शन था करियर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे डांस सीखना है। तो बहुत ज्यादा एक तरह से ना एक इम्बेलेंस हो गया था मेरे माइंड में कि मुझे सीखना जरूरी है, मैं सीखना चाहती हूँ। अब वो करियर से संबंधित होता या नहीं होता, उसके लिए काउंसलिंग की जरूरत थी, है ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्कूल टाइम से ही शुरू हो जाती हैं। फिर मेडिकल कॉलेज में ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश वीक होने के कारण हमारा परफॉर्मेंस एवरेज से नीचे भी चला जाता है, हमारे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं। लेकिन अब मुद्दा इस बात का उठता है कि कौन प्रैक्टिस आगे जाकर अच्छा करेगा, ये मार्क्स से या नंबरों से डिसाइड नहीं होता, ये बात होती है। और मैंने होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के एक पार्ट को समझा कि जो मेंटेनिंग कॉज होता है, मतलब कि सिर्फ दवाई से ही जिंदगी नहीं सुलझती, दवाइयों के नॉलेज के साथ साथ आपको अपने जीवन में मेंटली, फिजिकली एंड सोशली एंड फाइनेंशियल लेवल पर ये नॉलेज होना चाहिए कि आपको लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो इस बात को समझाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, लोगों से बात करना जरूरी होता है। और मेरा चूंकि समाज सेवा से भी थोड़ा सा एक अटैचमेंट था, तो कॉलेज टाइम से ही जिन लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां थी, किडनी फेलियर था एक लड़की को, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, उसके लिए मैंने एक छोटा सा अभियान चलाया, कार्ड शीट पर मैंने उसका एड बना करके कॉलेज में लगाया कि बच्ची को पैसे की जरूरत है, उसका किडनी ट्रांसप्लांट होना है या जो भी है। हालांकि आजकल तो इतनी सारी टेक्निक्स आ गई हैं कि बिना ट्रांसप्लांट के भी किडनी की बीमारी को ठीक किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कॉलेज टाइम से ही मुझे सोसाइटी की तरफ ले गई, कम्युनिकेशन की तरफ ले गई, और सोशल वर्क

0: कंडीशन में जी। हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दर्शना जी, काफी अच्छा आपने इनसाइट दिया है हम सभी को कि आपने अपने जो जर्नी है उसके जरिए आपने बहुत अच्छी बातें बताया कि किस तरह का माइंडसेट हमारा होता है वो आपने बताया। और मोस्टली गांव से आने वाले बच्चे जो है जब पढ़ाई करते हैं 10th 12th में तो उनके लिए इंग्लिश का और फिर ये मेडिकल फील्ड की जो बातें आती हैं थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उन्हें, क्योंकि वो उस तरह के सोसाइटी में कभी पले पड़े नहीं, उनको कभी वो चीजें टच में नहीं आई तो उनके लिए वो सारी चीजें फिर से नई हो जाती है तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके अगर थोड़ा सा वहां पर एक पार्ट अगर मिल जाए बच्चों को, थोड़ा सा अपग्रेड होने का अगर मौका मिल जाए, कोई ऐसे कोच मिल जाए, कोई ऐसे ट्रेनर मिल जाए तो शायद बच्चों को बेहतर जिंदगी मिल सकती है, बेहतर करियर के बारे में सोच भी सकते हैं। जैसे आजकल बड़े बड़े स्कूलों में वगैरह जो है काउंसलर्स भी रखते हैं ताकि बच्चे अपने करियर को ठीक से फ्रेम कर पाए, और वो चीजें कहीं ना कहीं हमारी जो स्कूल लेवल पे है रेगुलर जो है उसमें कहीं ना कहीं, और गांव से साइड में होता है तो फिर ये चीजें लैकिंग हो जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं दर्शना सोनी जी से कि कैसे हम लोग अलग अलग करियर में जा सकते हैं और अपने करियर को फ्रेम आउट कर सकते हैं उसके बारे में उनसे बात करते हैं, लेकिन गीत के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर करियर ऑप्शन, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो मुस्कुराओ।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम की। बातें हो रही है खास दर्शना सोनी जी से, जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और युवाओं को साथ में ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए ये प्रोग्राम है जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं और अपने करियर को फ्रेम करने में कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी कमी रह जाती है। उस कमी को पूरा करने का उद्देश्य से इस कार्यक्रम को हम रेडियो पे प्ले करते हैं और बहुत सारे युवा साथियों को जो है अच्छा लगता है इस तरह का कार्यक्रम। वो फोन वगैरह नहीं करते हैं लेकिन सुनते हैं कार्यक्रम और सुनकर वो अपने आप को जो है काफी अच्छा महसूस करते हैं, उन्हें मोटिवेशन मिलता है। और पिछले बार हमने देखा कि जब हमने शुरू शुरू में रेडियो पर इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो एक हॉस्टल वाला लड़के ने फोन करके मुझे बताया था कि वो एकदम से डिप्रेशन में था हॉस्टल में, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छा नहीं लग रहा था उसको। लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से उसे काफी इंसाइट मिला और फिर उनको लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो फिर उन्होंने फोन करके, ऐसा लगा कि वो मेरे इस डिप्रेशन को इस प्रोग्राम ने एक सेकंड में चेंज कर दिया और मैं बिल्कुल हैप्पी फील करने लगा और मेरे अंदर एक जैसे कि ऊर्जा आ गई। ऐसा लगा मानो कोई रेडियो के माध्यम से कोई फरिश्ते मुझे जो है कुछ बातें बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम सभी को मोटिवेट करता है कि लोग बच्चे सुनते हैं तो उन्हें जो है एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो आइए दर्शना सोनी जी, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में और मैं चाहूंगा कि करियर को फ्रेम आउट कैसे करें, गांव में रहने वाले बच्चे अगर अपग्रेड होना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे?
1: देखिए, बच्चे चाहे गाँव के हों या शहर के हों, मैं तो ये कहूंगी कि शहरों में भी आज भी ऐसे स्कूल्स हैं जो करियर काउंसलर को या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को रखते नहीं है, या फिर मतलब बहुत सारे स्कूल्स रखते भी होंगे बड़े बड़े शहरों में, लेकिन सभी शहरों में ऐसा नहीं होता। मतलब छोटे शहरों की अगर मैं बात करूं तो छोटे शहरों में आज भी इसमें कमियां देखी जा सकती है, है ना। तो मैं सबसे पहले करियर को लेकर के, चूंकि हमारी भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है कि माता पिता पहले गुरु होते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो अगर माता पिता गुरु है तो सबसे पहला सजेशन जो है करियर के लिए वो मैं माता पिता से शुरू करूंगी कि माता पिता शुरू से ही, मतलब जब बच्चा छोटा होता है तब से ही उसकी मेंटल फिजिकल और सोशल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करें
0: जी,
1: कि वो कैसा है, और एक डायरी बनाए। मैं सभी पेरेंट्स को सजेशन देना चाहूंगी कि अभी तक अगर उन्होंने डायरी नहीं बनाई है तो वो अपनी एक डेली डायरी बनाए और उसमें मंथली रिपोर्ट अपने बच्चे की लिखें कि इस महीने हमने अपने बच्चे में, चाहे वो 10th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, 12th क्लास में, है ना, चाहे वो 10th 11th 12th में, या फिर वो कॉलेज पढ़ने वाला बंदा, राइट, क्योंकि कॉलेज में भी आजकल क्या होता है कि सिर्फ टाइम पास होता है कई जगहों पर, सीधे शब्दों में कहा जाए तो डिग्री लेने का काम हो रहा है लेकिन स्किल्स डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है कई जगहों पर। MBA में लोग एडमिशन ले लेते हैं और उन्हें MBA का क्या फुल फॉर्म होता है, उसका वर्ल्ड मीनिंग हमारी जिंदगी में क्या है, उनको सिखाया उस तरह से नहीं जाता है, कई लोगों को मैंने देखा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि उस डायरी में पूरे महीने की एक्टिविटीज लिखी जाए कि आज हमारे बच्चे ने, मतलब पूरे महीने में मेंटली फिजिकली और सोशली क्या इम्प्रूव किया है, उसने किस बात में इंटरेस्ट दिखाया, किस बात में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्या वो करना चाहता है, क्या वो करना नहीं चाहता है। तो जो चेंजेस होते हैं ना माइंड के, जो इम्बेलेंस होता है माइंड का बड़े बड़े बच्चों में भी, जो 20 साल से ऊपर के हैं, 25 साल के हैं, उनके अंदर भी, और जो छोटे हैं स्कूल में उनके अंदर भी, तो इससे क्या होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि माता पिता को बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में पूरी जानकारी होगी, मतलब कि पूरी महत्वपूर्ण जानकारी। पूरी पूरी जानकारी होना तो डिफिकल्ट होता है क्योंकि एवरी पर्सन इज यूनिक इन द वर्ल्ड, लेकिन बहुत कुछ जाना और पहचाना जा सकता है। फिर यहाँ से शुरू होती है एक न्यू जर्नी की, चलिए आप डायरी मेंटेन कर रहे हैं, आपको पता है। फिर ये बात आती है कि जब 10th होता है तो 10th में प्रोफेशनल काउंसलर से उसको ये काउंसलिंग दिलवाई जाए कि डिफरेंट सब्जेक्ट हैं पूरे इंडिया में, आर्ट्स है, मैथ्स है, साइंस है, तो उससे रिलेटेड करियर काउंसलिंग का एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो डिफरेंट क्वेश्चन का जब आंसर देता है ना इंसान, जैसे कि किसी को पेड़ काटना पसंद नहीं है, उसमें लिखा है कि क्या आप पेड़ काटेंगे, तो अगर वो यस पे निशान लगाता है तो इसका मतलब वो एक हमारे विजुअल डेवलपमेंट के बारे में या आर्किटेक्चर के बारे में या बिल्डिंग बनाने के बारे में सोच सकता है। लेकिन अगर वो बोलेगा नहीं मुझे पेड़ काटना बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ पर तो बिल्डिंग बननी चाहिए, है ना, इस एरिया में, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पेड़ काटना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग हम बनाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को ये लग रहा है कि नहीं बनाना चाहते, मतलब वो एनवायरनमेंट से संबंधित है, कहीं ना
0: जी
1: कहीं उसका लगाव है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग तरीके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हमें सुनने में बड़े अजीब लगे, लेकिन उसका महत्व ये होता है कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है हम पता करना चाह रहे हैं। हम मान लीजिए मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन उससे नहीं बन रहा है, लेकिन उसको अगर आर्ट से रिलेटेड या इतिहास से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर दिया गया तो उसका आंसर उसने बहुत अच्छे से दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास से संबंधित बातों में इंटरेस्टेड है।
0: जी
1: तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है करियर काउंसलिंग के लिए, जो कि करियर काउंसलर करवाता है। 10th क्लास में तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि सही सब्जेक्ट का चुनाव होगा तो 11th और 12th में प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चे को। और फिर दूसरी बात ये कि 11th और 12th पढ़ने के बाद भी कई लोगों का इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो ये भी एक फैक्टर है। तो 12th के बाद भी काउंसलिंग की फिर जरूरत पड़ती है, फिर से वही एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, फिर से वही क्वेश्चनरीज का टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद भी इंसान का इंटरेस्ट पता चल सकता है। कुछ लोग पढ़ने में भी अच्छे होते हैं, क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं और संगीत भी अच्छा गा लेते हैं। अब तीनों चीजें तो करियर के रूप में हो नहीं सकती हैं, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि अगर हमारी कोई हॉबी, जैसे गिटार बजाना किसी की हॉबी है, तो वो उसे हॉबी के प्रोफेशन के तौर पर प्रायोरिटी के तौर पर रखे कि हाँ मैं हॉबी के तौर पर गिटार बजाऊंगा या परफॉर्मेंस दूंगा, लेकिन मैं 8 घंटे का जॉब फाइनेंस डिपार्टमेंट में करूंगा। तो ये भी क्राइटेरिया होता है कि आपको अगर तीन चीजें आती हैं, मान लीजिए आप संगीत में भी अच्छे हैं, आप वॉलीबॉल या क्रिकेट भी खेल लेते हैं, अगर आप पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट है, तो फिर चुनाव तो 8 से 9 घंटे का आपको करना ही पड़ेगा ना, कि आपकी प्रायोरिटी पैसे कमाने को लेकर के क्या है। सीधा मुद्दा ये भी है कि आप करियर के रूप में, एजुकेशन के रूप में और पैसा कमाने के लिए कौन सी लाइन चूज करना चाहते हैं। जहां आपकी बेहतर पकड़ है वहां आप चूज करेंगे। और अब बाय हॉबी, हॉबी को देखते हुए आप संगीत अगर आप बहुत अच्छा गा लेते हैं और अगर आप उसे प्रोफेशनली परफॉर्म भी करना चाहते हैं, तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि महीने में मैं कितनी बार परफॉर्मेंस दे पाऊंगा और मैं कितनी बार अपनी कला का उपयोग कर पाऊंगा, क्योंकि करियर के रूप में दो नावों में सवार नहीं हुआ जा सकता है ना। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप मोटिवेशन के तौर पर आगे बढ़े, लोगों के लिए आप एक ऐसा मोटिवेशन बन जाए कि लोग आपको खुद से इनवाइट करने लगे। आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप देखेंगे कि योर स्टोरी करके और बेटर इंडिया करके एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक पर। तो इसपे क्या होता है कि योर स्टोरी और बेटर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको स्टार्टअप या बिजनेस से रिलेटेड स्टोरीज मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के जमाने में जॉब करते नहीं है बल्कि जॉब देते हैं। तो जॉब देने वाला अगर बनना है तो हमें योर स्टोरी और बेटर इंडिया की कहानियों को बहुत ही गहराई के साथ समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। अब पैसों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में है वो तो अपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे सकते हैं, लेकिन जिनकी हालत खराब है, जिनका लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, या तो पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा या फुल टाइम जॉब कहीं पर करना पड़ेगा। तो पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करके जो पैसा इकट्ठा होता है, या फिर लोन लेने की प्रक्रिया उनको समझनी होगी कि कहाँ से मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसा इनोवेशन करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट खुद देने के लिए तैयार हो जाए। आजकल तो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को लेकर कुछ योजनाएं भी चलाई हैं, अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट में तो वो कुछ सपोर्ट भी करती है, तो इसकी पूरी नियमावली को समझना होगा। तो आजकल के बच्चे क्या 12th के बाद से ही बिजनेस के बारे में सोचते हैं, और काफी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि से बिजनेस को होते हुए अपने घरों में देखते हैं कि बिजनेस कैसे होता है। अब बिजनेस की अगर बात करें तो बहुत ही पॉपुलर बिजनेस जो इंडिया में पॉपुलर हो सकता है, और हेल्थ बेनिफिट के लिए मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी एक प्रकार से ग्रो हो रही है धीरे धीरे, उसमें मैं नाम लेना चाहूंगी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का।
0: जी,
1: ऑर्गेनिक फील्ड में जो कल्चर हो रहा है उससे फूड जनरेट होता है। तो फूड जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। इंसान की बेसिक जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, ये सभी लोग जानते हैं। तो रोटी, कपड़ा और मकान में जो बिजनेस हो रहा है उसमें ऑर्गेनिक खेती काफी सारे युवा लोग कर रहे हैं, कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं और पैसा ही बहुत कमा रहे हैं। गुजरात में भी एक चिंतन दवे करके एक युवा है जिनका नाम है चिंतन दवे, उन्होंने भी लगभग 25 लाख का टर्नओवर किया है अपनी खेती में। एक छोटे से एरिया में उन्होंने घास उगाई है, एक ऐसी घास जो कि हमारे गाय भैंस खा सकते हैं, उससे दुग्ध उत्पादन बढ़ सकता है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, विदाउट एनी पेस्टिसाइड इस तरह से। और अगर आप इसके अलावा एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो भोपाल के पास में इंदौर भी है मध्य प्रदेश में
0: जी।
1: तो इंदौर जो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है इंदौर
0: जी, जी, जी।
1: इंदौर में शिवपुरी और इंदौर का एक लड़का है जिसका नाम है हरिओम और शिवपुरी का एक लड़का है जिसका नाम है सुपात्र उपाध्याय। ये दोनों मिलकर के एक रूट्स नाम का एक कंपनी चला रहे हैं रूट्स नाम की, जिसमें की सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि केमिकल फ्री हैं, मतलब फुली ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है। और ये एक ऑफलाइन शॉप है, ऑनलाइन भी वो लोग बेचते हैं, ऑफलाइन शॉप है। जबकि उनका एजुकेशन आप देखेंगे तो एजुकेशन वाइज उन लोगों ने फायर एंड सेफ्टी ब्रांच पे बीटेक किया हुआ है। अब आप ये सोचने वाली बात है कि जिन लोगों ने फायर एंड सेफ्टी ब्रांच पे अपने पेरेंट्स के कहने पर, किसी ने अपने पेरेंट्स के कहने पर बीटेक में 4.5 साल लगा दिए, उसके बाद उनको समझ में आया कि नहीं ये हमारी लाइन का हिस्सा नहीं है, ये हमारा मन नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है और हम बिजनेस करना चाहते हैं। तो उन लोगों ने 2-3 बिजनेस बदले, उनको फेलियर भी मिला, लेकिन फेलियर से वो लोग हारे नहीं, उन्होंने अंततः बिजनेस ही किया। तो कई बार ऐसा होता है कि जो डिसीजन है करियर का वो वाकई में गलत हो जाता है। कई लोग पीएससी फेस करते हैं, लोक सेवा आयोग की एग्जाम देते हैं 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, और कई लोग बीए करते हैं, है ना, फिर कई लोग बीए करके डायरेक्टली एग्जाम दे देते हैं। तो देखिए मुद्दा ये भी होता है कि इसके पीछे 2-3 कारण होते हैं। मान लीजिए किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बीए करने की सलाह दे दी, इंजीनियरिंग की सलाह दे दी, तो इसके पीछे कारण ये भी होता है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी एक होता है कि यार अच्छी खासी जॉब लग सकती है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी कई लोगों को फील होती है। दूसरा बिलीफ सिस्टम, कि बच्चों पर बिलीफ सिस्टम कमजोर होता है, कई बार पेरेंट्स बिलीव नहीं कर पाते कि यार ये आगे जाके पता नहीं क्या करेगा, डिग्री होना बहुत जरूरी है, बड़ी बड़ी डिग्री अगर पास में होंगी, एमबीए कर लेगा, बीटेक कर लेगा तो कहीं ना कहीं नौकरी अच्छी मिल सकती है। तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को सॉल्व करने के लिए वो लोग चूज करते हैं कि यार ये करियर हो सकता है, वरना ये रूट्स जो इंदौर में चला रहे हैं सुपात्र और हरिओम, तो ये रूट्स केमिकल फ्री प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में इसलिए बेच रहा है क्योंकि उनका सेल्फ इंटरेस्ट है। लेकिन ये बिलीफ सिस्टम और ये जो फेलियर को सहने की शक्ति है, ये होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि फेलियर को सहने की शक्ति नहीं होगी ना तो इंसान क्या करेगा, वो मजबूरन कोई ना कोई जॉब कर लेगा, फिर वो काम नहीं करेगा जो उसके इंटरेस्ट का है। तो ये होता है पेरेंट्स के साथ में कई बार। और जो लोग, मैं एक ऐसा एग्जांपल भी जानती हूँ जिसकी मम्मी प्यून है स्कूल में, एक चपरासी की पोस्ट पर है, एक लड़का जिसने आईआईटी से बीटेक किया और उसने जॉब नहीं किया, उसके बाद उसने खेती बाड़ी सीखी और शहद का बिजनेस उसने सीखा। लेकिन शहद का बिजनेस करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए उसको काफी टाइम लगा और उसने लोन लिया था इसके लिए, जबकि उसके घर की स्थिति लोअर मिडिल क्लास है। तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली की आप हालत समझ सकते हैं कि उन्हें क्या सोचना पड़ता होगा, क्या करना पड़ता होगा। लेकिन चूंकि बंदा पढ़ने में बहुत अच्छा था तो वो गेस्ट लेक्चरर के तौर पर अलग अलग कॉलेजेस में उसने सेशंस वगैरह लिए, उसने पैसों की कमाई भी करी, साथ में लोन भी उसने लिया और शहद की कंपनी उसने खोली और आज लाखों का टर्न ओवर है हम लोगों का, 25 लाख से शायद ऊपर का ही टर्न ओवर है। तो 4-5 साल लगते हैं ग्रो होने में, धीरे धीरे इंसान कमाता है पैसे, अपने घर को भी चलाता है ना। तो ये सब चीजें करियर के साथ में चलती रहती है और बहुत ही अच्छा होता है कि घर वाले अगर साथ हो जाए, मतलब माता पिता और घर वाले अगर बच्चों के साथ हो जाए ना, तो मुझे लगता है करियर ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
1: हाँ, मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है क्योंकि जिसका मन है जो करने का, उसमें अगर मेंटली सहयोग किया जाए। अभी होता क्या है इंडिया में, आज भी ये हो रहा है कि स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए लोगों की समझ नहीं है और मार्क्स के आधार पर तो सबको तोला भी नहीं जा सकता कि मार्कशीट बहुत अच्छी है, किसी ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया तो वो इंसान ईमानदार भी होगा अपने काम के लिए, जरूरी नहीं है। तमाम तरह के लोग हैं दुनिया में जिनकी मार्कशीट बहुत अच्छी, जिन्होंने MBA किया हुआ है, लेकिन अब आप देखिए कि उनका कामकाज क्या ईमानदारी के बेस पर है, क्या ईमानदारी के आधार पर है, क्या समाज के लिए बदलाव कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है।
0: जी तो दर्शना जी, काफी अच्छा आपने बताया। हाँ, बहुत ही सुंदर अलग अलग एग्जांपल देखे आपने, बहुत सारे उदाहरण दिए कि कैसे हम लोग अपना करियर को फ्रेम आउट कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो इसमें माता पिता और फैमिली का जो है बैकग्राउंड बच्चों के साथ अच्छा हो, फैमिली की बॉन्डिंग मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है, तो बच्चा बहुत कुछ करने के लिए सक्षम भी हो जाता है, उसको एक मेंटली सपोर्ट मिलता है। ये बात मुझे बड़ा अच्छा लगा। कई बार होता है ना, माता पिता बोलते ठीक है जो करेगा सो, नहीं तो हम तो है ही है, ऐसे करके उनको जो है डिपेंडेंट कर देते तो वो भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन बच्चे को करियर के बारे में उसको कुछ करने के लिए सपोर्ट करें, उसको बताएं कि क्या करना चाहते हैं, काउंसलिंग करें, उसके साथ बातचीत करें और उसको जहां भी लगता है वहां हेल्प करें। अगर पढ़ाई बीच में छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ रहा है भाई, क्या हो गया, तो थोड़ा सा उसको हेल्प करें कहीं ट्यूशन के लिए ताकि वो अच्छा ग्रो कर सके। या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं है तो फिर टेक्निकल चीजें उसको सिखाएं। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आपने स्टार्टअप की बात बताई, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कही है, तो इसमें भी केवीके करके संस्थान है गवर्नमेंट का, वो ट्रेनिंग देती रहती, तो उनके साथ कोई अच्छे मास्टर या कोई अच्छे ट्रेनर के साथ उनको अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग दे खेती करने का भी, तो उससे भी बच्चे जो है अपना कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आजकल जो हाइड्रोलिक फार्मिंग भी आ गई है तो वो घर के छत पे भी चीजों का प्रयोग करके कर सकते हैं, अपनी सब्जियां घर पे उगा सकते हैं, किचन गार्डनिंग का भी कॉन्सेप्ट आया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी हो गया है तो घर से भी कुछ चीजें कर सकते हैं, तो ये सारी चीजों के लिए माता पिता का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जब बच्चे को ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई हार्ड लग रहा है तो नेचुरली उसका कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक कला होगा, जैसे आपने कहा डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी चीजें भी है, तो इस फील्ड में भी वो अपना जो है करियर बना सकता है। बस इसमें वही है कि एक माता पिता का बॉन्डिंग बच्चों के प्रति चाहिए और वो अगर होता है तो चीजें आसान हो जाती। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं, उसके बाद फिर दर्शना जी से बात करेंगे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर करियर ऑप्शन, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और आज के हमारे खास मेहमान दर्शना सोनी जी भोपाल से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं। और आशा करूंगा अब हम लोग आखिरी मोड़ पे हैं कार्यक्रम के कंक्लूजन पे कि हम लोग एक मैसेज के साथ कुछ बातें आपको बताने वाले हैं। तो दर्शना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार। कैसे हैं आप?
1: जी हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ।
0: तो मैं चाहूंगा कि कंक्लूजन में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल तो बताए बच्चों के, और जाते जाते क्या बताना चाहेंगे एक प्रॉपर तरीके से वो अपने करियर को फ्रेम करे, इसके लिए कुछ सिंपल टिप्स उनको जरूर बताइए। जी
1: हाँ जी, एक कंक्लूजन मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, किसी भी करियर के लिए,
0: जी जी जी
1: हाँ, किसी भी करियर के लिए जो इको फ्रेंडली लाइफ होती है वो बहुत जरूरी होती है आज के समय में, क्योंकि करियर शब्द के पहले आती है हेल्थ। तो सबसे पहले हर एक इंसान को समझना पड़ेगा कि अगर हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में इको फ्रेंडली लाइफ अगर शामिल है, अगर हम प्रकृति के करीब हैं, तो हमारे दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज आएंगे जो दूसरों से हमें अलग बनाए। क्योंकि नौकरी भी अगर हम कहीं करते हैं और अगर हम नौकरी अपनी छोड़ देते हैं बाय चांस, और अगर हम अपना करियर चेंज कर लेते हैं, तो सामने वाला हमें याद करे, वहां पर हमारी स्पार्क होनी चाहिए कि सामने वाला हमें याद करे कि यार वो बंदा यहाँ पर था तो क्या इनोवेटिव थॉट थे उसके, क्या क्रिएटिव माइंड था उसका। तो ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जैसी लाइफ हमेशा रहे ये जरूरी नहीं होता है। काश मैंने एक ऐसे डॉक्टर को भी देखा है जो कि पुणे शहर में एक बहुत बड़ा सर्जन था, गोल्ड मेडलिस्ट सर्जन, लेकिन आज वो लोगों को कुछ सालों पहले, मतलब उनका माइंड सेट चेंज हुआ और उन्होंने हॉस्पिटल में ताला लगा दिया। उसके बाद उन्होंने उनका नाम है डॉक्टर प्रवीण चौड़िया, जो पूरे इंडिया में और विदेशों में भी शायद फेमस है। मेडिसिन फ्री लाइफ करके उनका ऑर्गेनाइजेशन है। वो एक बहुत बड़े एरिया में, एक बहुत बड़े लैंड में उन्होंने काफी सारे पेड़ लगाए। उन्होंने लोगों को इको फ्रेंडली नेचर में रहना सिखाया, और आज वो योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग एंड ऑर्गेनिक फूड को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से काउंसलिंग कर रहे हैं। लोगों को 4 दिन जंगल में रखते हैं अपने साथ में, एक प्राकृतिक वातावरण में। तो आप सोच सकते हैं कि लाइफ हमें क्या सिखा रही है। लाइफ हमें यही सिखा रही है कि हमारा प्रोफेशन चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, चाहे कोई से भी डिपार्टमेंट में हो, लेकिन हमें प्रकृति के करीब रहना है, तभी हमारा माइंड इनोवेटिव या क्रिएटिव सोच पाएगा लाइफ में। और परोपकार भी हमेशा साथ में रखना है, क्योंकि बिना परोपकार के तो कोई भी करियर हमें संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता है। बस यही मैसेज है मेरा।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को आपकी बातें क्लियर है कि कैसे हम अपने करियर को फ्रेम कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। बहुत सारी आपने आउटलाइन जो है बच्चों को दिया है और बहुत सारी चीजें जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इस विषय पर आपने बहुत अच्छी बातें बताई। चलिए दर्शना जी, जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप सभी को।
1: हाँ जी, मैसेज तो अभी फिलहाल जैसे कि मैंने अभी कहा ही है तुरंत
0: जी
1: कि इको फ्रेंडली लाइफ से जुड़ना बहुत जरूरी है। और लास्ट मैसेज यही है कि करियर का कोई भी कैप्शन मायने रखता है कि हमारा पद क्या है, हमारी प्रतिष्ठा क्या है, हमारा समाज में ओहदा क्या है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। तो किसी भी
0: बिल्कुल
1: करियर के
0: बिल्कुल
1: लिए ह्यूमैनिटी का रिलीजन हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र का विजन हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। हम जो भी वर्कआउट कर रहे हैं अपने करियर में प्रोफेशनल लेवल पर, उस टेबल पर हमारा हाथ अगर रखा जाता है तो उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट होना चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। जी बस यही मैसेज है मेरा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दर्शना सोनी जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी बातें आपने शेयर किया अपने अनुभव के, और हमारे युवा साथियों के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो इनसाइट है आज उनको मिल गया है। और जिस तरह से आपने छोटी छोटी बातें उनको बताया है, एक काउंसलिंग वाला जो पार्ट है वो भी आपने पूरा किया, और एक संदेश के माध्यम से इको फ्रेंडली होने के लिए आपने कहा, तो बहुत सारी
1: जी
0: चीजें हैं जो आज हम लोग कर सकते हैं। और एक रेवोल्यूशन एक तरफ जो है हम देख रहे हैं, जहां पर हम जो एक बीच में जो है कुछ चीजें हम लोग टेक्निकल चीजों को या फिर पढ़ाई को लेकर काफी सजाग थे, लेकिन अब वही चीजें जो है नेचर के साथ जुड़ रहे हैं हम लोग। जैसे आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया और स्टार्टअप्स के बारे में बताया, तो ये सारी चीजें हम सभी लोगों के लिए बहुत ही एक वरदान साबित हो सकता है, अगर हम आपका जो मैसेज है एक अच्छा इंसान बन के अगर हम लोग काम करना शुरू कर दें तो। थोड़ी सी जरूर मुश्किलें होती हैं लेकिन बाद में वो सेट हो जाता है और आप एक अच्छा व्यक्ति भी बनते हैं और एक अच्छा करियर भी आपका बन जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगा दर्शना जी, थैंक यू सो मच फिर से एक बार
1: जी,
0: आपको।
1: आपका भी धन्यवाद।
0: जी जी जी शुक्रिया। तो मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और विद्यार्थी मित्रों को मैं कहूंगा कि आप आराम से टाइम लीजिए करियर फ्रेम करने के लिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, किसी की मत सुनिए ऐसा नहीं कहूंगा मैं, सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की, जो आपके मन को अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप कंफर्ट है उसी क्षेत्र में आप काम करें। ऐसे शुभ आशा के साथ अपने फ्यूचर को, अपने करियर को ब्राइट बनाए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, हमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति,
1: जय हिंद, जय
0: सुनते
1: भारत।
0: रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे, वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद
2: पुणेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडिओ स्टेशन खुश रहो खुशियां बांटो।
3: स्वागत है ज्ञान चिंतन में। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं नीतू जैन हमेशा की तरह आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आ रही हूँ, जिसका नाम है मोबाइल का बढ़ता प्रभाव और इसके दुष्परिणाम। आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन एक आवश्यकता बन चुका है, लेकिन यह धीरे धीरे मनुष्य को अपने शिकंजे में ले रहा है। लोग बिना किसी कारण घंटों मोबाइल पर समय बिताते हैं, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, क्या वाकई हम मोबाइल के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो आइए जाने किन बिंदुओं पर अब हमें अपना ध्यान खींचना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म पर क्या हमारा अनावश्यक समय बीत रहा है? मोबाइल गेम्स बच्चों को और युवाओं को क्या खास तौर पर अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं? क्या रात में देर तक मोबाइल चलाने से नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है? आवश्यक वीडियो रील्स में हमारा क्या समय नष्ट हो रहा है? क्या लगातार स्क्रीन पर देखने से आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, सिर दर्द, पीठ दर्द और मोटापा बढ़ रहा है? क्या सोशल मीडिया पर दिखाए गए दिखावटी जीवन को देखकर लोग असंतोष और तनाव महसूस करने लगे हैं? क्या मोबाइल की वजह से लोग अपने परिवार और दोस्तों से दूर होते जा रहे हैं? अगर इन सब प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो दोस्तों चलिए जाने हम अपने आप को मोबाइल के शिकंजे से कैसे बचा सकते हैं। मोबाइल का सीमित उपयोग करें, केवल जरूरी कामों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें और स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करें। हफ्ते में एक दिन या कुछ घंटे मोबाइल से पूरी तरह दूर रहें। अनावश्यक स्क्रॉलिंग से बचें और केवल उपयोगी जानकारी तक सीमित रहें। खेल, योग, व्यायाम, वॉक को अपना दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सोने से एक घंटे पहले मोबाइल का इस्तेमाल बंद करें, ताकि नींद की गुणवत्ता बेहतर हो। मोबाइल की जगह असली बातचीत को प्राथमिकता दें, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। पढ़ाई, ऑफिस का काम और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। अनावश्यक वीडियो और गेम्स की बजाय ज्ञानवर्धक चीजें देखें। खाने के समय, पढ़ाई के समय और परिवार के साथ रहते समय मोबाइल से दूर रहें। आज के इस चिंतन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मोबाइल आज की जरूरत है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो यह एक गंभीर लत बन जाती है। हमें स्मार्ट तरीके से मोबाइल का उपयोग करना चाहिए, ताकि यह हमारे जीवन को आसान भी बनाए और इसे जटिल और तनावपूर्ण ना बनाए। तो दोस्तों, आज के चिंतन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। धन्यवाद।
3: ज्ञान चिंतन के आज के एपिसोड में बस इतना ही। प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यानपिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन.
2: थैंक यू.
1: हम बात कर रहे थे संस्कारों की, आदतों की, थॉट लेवल से लेके फिर कहां से कहां तक पहुंचे. तो संस्कार जिनको मैं समझ रहा था कि संस्कार तो बाय बर्थ है. जैसे कहते हैं ना गाड़ी में या कोई इक्विपमेंट में, इफ देयर इज एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो हम वापस ले लेंगे. वैसे मैं इन चीजों को एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी समझता था. मैं कभी नहीं सोचा था कि ये एक्वायर

0: नॉलेज नहीं थी तो ये समझा ये नेचर है, जीवन भर उसके साथ चलते और आगे भी कैरी फॉरवर्ड करते। एक नॉलेज मिली कि दीज आर अक्वायर्ड संस्कार्स, आई ऑल्सो हैव ब्यूटिफुल संस्कार्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन क्रिएट अ न्यू संस्कार।
1: नॉलेज के साथ साथ पहले मैं डर गया। मैंने कहा अगले जन्म में मुझे ऐसे नहीं बनना है, अगले जन्म में मुझे वैसे भी नहीं बनना है, अगले जन्म में मैंने क्या बनना है मैंने डिसाइड किया।
0: तो अगले जन्म में हमें कैसा चाहिए?
1: मुझे नाइस मैन चाहिए।
0: नहीं, नाइस तो अभी भी हैं सब लोग, हम सब नाइस हैं, लेकिन अगले जन्म में एग्जैक्टली कैसा चाहिए?
1: एग्जैक्टली अच्छी, मतलब सोचना, बोलना और करना, तीनों मुझे परफेक्ट, क्लोजेस्ट टू परफेक्शन चाहिए।
0: हाँ, नहीं परफेक्ट भी बोल सकते हैं।
1: अच्छा, हाँ, प्यार से,
0: हाँ,
1: लव, पीस,
0: एवरी सोल नोज,
1: हार्मनी, एंड जहां मैं बैठूं चारों तरफ मैं सबको प्यार फैलाऊं, आई शुड वाइब्रेट हैप्पीनेस, वाइब्रेट लव।
0: तो ये सब कुछ अगले जन्म में क्यों चाहिए?
1: अभी से प्रैक्टिस करूंगा तो अभी मिलता तो रहेगा।
0: तो एम ये रखना है कि इस जीवन में मुझे ऐसा बनना है बहुत जल्दी।
1: ऐसा बनूंगा तो ही कैरी फॉरवर्ड होगा ना?
0: कैरी फॉरवर्ड तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस जीवन में मुझे ऐसा बनना है बिकॉज दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज व्हाट फील्स लाइक।
1: आज मैं पैसे बैंक में डाल के ओल्ड एज के लिए रखूंगा तो आज मैं रिच हूँ, उसको पैसे आज हैं, लेकिन काम तो मेरे अगले ओल्ड एज में भी आएंगे ना?
0: काम तो अभी भी आएंगे ना, लेकिन
1: हाँ जरूरत पड़ती है।
0: जरूरत क्यों? जो आज आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, संस्कारों पे वर्क करेंगे, उसका इमीडिएट बेनिफिट तो अभी मिलने वाला है।
1: तो फिर नया जन्म अभी हो रहा है,
0: नया जन्म अभी हो रहा है,
1: फिर अगला जन्म क्या हो, यही जन्म में दूसरा जन्म।
0: जब संस्कार परिवर्तन होते हैं तो उसको नया जीवन ही कहते हैं, जब अज्ञान से ज्ञान में आते हैं उसको भी नया जीवन ही कहते हैं। न्यू बर्थ, व्हाई न्यू वे ऑफ लिविंग, न्यू कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ही चेंज हो गई है मैं कौन, तो नया जीवन ही हो गया। एंड फिर जैसे आपने कहा कि जो अभी हम करेंगे वो संस्कार मुझ आत्मा के साथ यात्रा पर जाएंगे।
1: डबल बेनिफिट हो गया ना,
0: परमानेंट बेनिफिट हो गया,
1: परमानेंट
0: परमानेंट हो गई ना वो रिकॉर्डिंग, आज की हुई मेहनत परमानेंट चलने वाली है वो रिजल्ट। ये याद रखना कि आत्मा है, शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, ये हमें कितनी सारी चीजों पर ध्यान रखना सिखाती है। जैसे आप देखो जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं बुरा नहीं बोलना उसके बारे में, चला गया ना, फिर उसके लिए बुरा नहीं बोलना। क्यों कहते हैं इस तरह से कि बुरा नहीं बोलना?
1: क्यों?
0: क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ती है उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है।
1: ओके,
0: उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है क्योंकि अब वो 100% सोल कॉन्शियस है आत्मा। जब हम मेडिटेशन,
1: बॉडी नहीं है ना,
0: बॉडी नहीं है ना, बॉडीलेस है ना, तो कैचिंग पावर हाईएस्ट है, 100% सोल कॉन्शियस आत्मा हर एक की थॉट्स कैच कर सकती है। इसीलिए जब हम मेडिटेशन भी करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे भी सोल कॉन्शियस की तरफ चलते हैं, वी आर एबल टू कैच पीपल्स वाइब्रेशंस। संत महात्माओं के पास जाते हैं हम, देखते हैं हम दादियों के पास जाते हैं, उनके पास जाकर बैठते हैं, मन में कोई बात है पहले ही आंसर मिल जाता है।
1: उनको पता भी तो चल जाता है।
0: पता कैसे चल जाता है?
1: कि कम्युनिकेट कर दिया सोल टू सोल।
0: हाँ, क्योंकि वो सोल कॉन्शियस स्टेट में बैठे हैं तो वो सामने वाली आत्मा की वाइब्रेशंस को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। तो ऐसे ही आत्मा जब शरीर से न्यारी है, शरीर छोड़ दिया है, तो उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है। इसीलिए कहते हैं कि जहां पर सब इकट्ठे होते हैं उस आत्मा के प्रति शांति का दान देने के लिए, पूजा के लिए, कहते हैं यहाँ की वाइब्रेशंस में उस आत्मा के लिए कुछ नहीं कहो क्योंकि वो आत्मा यही है, वो सुन लेगी क्योंकि वो कैच कर सकती है सबकी थॉट्स। अब अगर हमें ये बात याद रहे तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा वो आत्मा जो हमारे घर से गई है अभी वो दूसरे घर जाकर एक नए शरीर में जन्म लिया, राइट? लेकिन अभी वो नए शरीर से अटैच नहीं हुई है, वो नए स्थान पर जाके माँ के गर्भ में प्रवेश किया है, उसका अभी अपने नए शरीर से अटैचमेंट नहीं है, नए परिवार से, जगह से तो कोई अटैचमेंट नहीं है। तो माँ के गर्भ में आत्मा बिल्कुल डिटैच्ड सोल कॉन्शियस होती है।

0: उस सोल कॉन्शियस स्थिति में आत्मा अपने पीछे छोड़े हुए परिवार के सब थॉट्स और वाइब्रेशंस कैच कर सकते हैं। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम कहते हैं रोना तो नेचुरल है, उदास रहना नेचुरल है, उनको मिस करते हैं, हम कहते हैं उनके बिना हम जी नहीं सकते हैं। कई लोग पीछे ऐसे सोचना शुरू करते हैं, अब मुझे जीना ही नहीं है ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। ये कांस्टेंट एक थिंकिंग चलती है उस फैमिली मेंबर्स के अंदर जो पीछे हैं। अब हमें सोचना है ये सारी थॉट्स जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो आत्मा कैच कर रही है, अपने आप को उस जगह पर रखते हैं।
1: मैं पता क्या इमेजिन कर रहा हूँ एज एन एक्टर, कि मेरे पिता ने या माता ने एक बहुत सुंदर सा एक महल जैसा ब्यूटीफुल घर नया बनाया और मैं देख देख के रो रहा हूँ कि क्यों इनको मिल गया, क्यों अच्छा घर मिल गया, मतलब आई एम नॉट लाइकिंग इट। अरे भाई, उनको नया शरीर, नया सुंदर महल मिला है, नया घर मिला है, तो उनको मुबारक देना चाहिए कि उनके बारे में, अब मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मुझे छोड़ के वहां क्यों गए,
0: क्यों गए।
1: You've done, that means have they done any mistake?
0: Yes. And most important is, वो जहाँ गए वो यहाँ वहाँ हर thought ये catch कर रहे हैं। अपने आप को देखें कि हम यहाँ हैं, ये हमारा परिवार है, ये हमारी जिम्मेवारियां हैं। इस क्षण शरीर छोड़ा, सब कुछ एक क्षण में पीछे रह जाता है, अधूरे काम रह जाते हैं, फैमिली मेंबर्स रह जाते हैं जो शायद हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कभी छोटे बच्चे रह जाते हैं, कभी ओल्ड पेरेंट्स रह जाते हैं, ये सब पीछे रह गए हैं। ये मैं आत्मा यहाँ से निकली, माँ के गर्भ में प्रवेश किया, बोल नहीं सकती लेकिन कैच सब कुछ कर सकते हो वहां पे। वहां पे मुझे कंटिन्यूसली ये मैसेज मिल रहा है, क्यों गए, क्यों गए, वापस आ जाओ, हमें कैसे छोड़ के चले गए, हमारा ध्यान कौन रखेगा, हमारे बारे में नहीं सोचा क्या। एक एक थॉट जो वो आत्मा वहाँ कैच करती है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी।
1: यू मेक दैट आत्मा फील गिल्टी, है ना,
0: गिल्टी एंड सो मच पेन
1: कि मैंने कौन सा बड़ा नुकसान, बहुत सी बड़ी गलती कर दी,
0: पेन कि आई हैव फेल्ड इन माय ड्यूटी फॉर माय फैमिली, मैं उनका ध्यान नहीं रख पाया। अब ये सारे मैसेजेस वहाँ जा रहे हैं, वो आत्मा वापस भी नहीं आ सकती, वापस भी नहीं आ सकती, लेकिन मैसेजेस उसको कंटिन्यूसली मिल रहे हैं। तो आत्मा जब गर्भ में होती है तो काफी दर्द अनुभव करती है। आत्मा जब गर्भ में होती है अपने पिछले जीवन के किए हुए सारे कर्म उसके सामने उसको याद आते हैं। सोल कॉन्शियस स्टेज में सब कुछ दिखाई देता है, लाइक अ मूवी रील, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। बहुत सारे लोग जो अभी भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ क्षणों के लिए ही ऑपरेशन टेबल पे या एक एक्सीडेंट में कुछ क्षणों के लिए शरीर से निकल जाते हैं, उनको उन कुछ क्षणों में ही जीवन का सब कुछ दिखाई दे देता है। तो आत्मा जब गर्भ में होती है उसको अपने पिछले जीवन में की हुई सारी बातें दिखाई देती हैं। उस बात का भी दर्द होता है कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये गलती हो गई, वो भी दर्द। और फैमिली भी यहाँ से क्या भेजती है, वो भी इतना
1: तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा।
0: तो हमें याद रखना है वो मर गए नहीं, वो वहां गए हैं, वो सब कुछ कैच कर रहे हैं। तो जब हमें ये याद रहेगा हम अपनी सोच पर अटेंशन रखेंगे। हाँ, हम उनको याद करते हैं, हम उनको मिस करते हैं, लेकिन ऐसी कोई थॉट ना क्रिएट करें जो वहां पहुंचे और उनको दर्द मिले। अगर हम कहते हैं हम उस आत्मा की शांति के लिए पाठ कर रहे हैं, क्यों आत्मा की शांति के लिए पाठ कर रहे हैं, क्योंकि मानते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो थोड़ी अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि वो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़कर आई है। तो आत्मा जब गर्भ में होती है वो अपने आने वाले जीवन के लिए बहुत सारी बातें सोचती है कि इस बार मैं ऐसे करूंगा, इस बार मैं ऐसे करूंगा, क्योंकि डिटैच स्टेज में, दैट इज वाई डिटैचमेंट इज सो इम्पोर्टेंट। शरीर से, शरीर के भान से, आसपास की चीजों से कुछ क्षणों के लिए भी डिटैच होते हैं तो ट्रुथ दिखाई देता है। जब ईगो में होते हैं, अटैचमेंट में होते हैं, तो हम कहते हैं नो आई वॉज राइट, ऑफकोर्स आई वॉज राइट, दे वर रॉन्ग। जैसे थोड़ा सा डिटैच हुए, नहीं दिस इज नॉट द वे आई कुड हैव डन। तो जब आत्मा गर्भ में होती है उसको वो सब दिखाई देता है, कि व्हाट ऑल आई कुड हैव डन अनदर वे, एंड उस टाइम आत्मा अपने आप से संकल्प करती है इस बार आई विल डू थिंग्स अनदर वे. लेकिन जब वापस शरीर में जाती है, जन्म लेती है, बाहर आती है, बड़े होती है, वापस सेम वे करना शुरू करती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग चेंज नहीं की, संस्कार नहीं बदले. दैट इज वाई सो इम्पोर्टेंट कि हम क्या संस्कार कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. आज हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे घर से, फैमिली एंड फ्रेंड से कोई आत्मा अपनी जर्नी पर आगे गई है, याद करें प्यार वाली याद, दर्द वाली याद नहीं, दुख वाली याद नहीं, एंड डेफिनेटली ऐसी थॉट्स नहीं कि अब तो मुझे जीना ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं चली जाती, यू नो, ये वाली थॉट्स नहीं. कोई ऐसी थॉट नहीं जो उस आत्मा को सुनकर वहां तकलीफ हो.
1: मेरी मदर की डेथ हुई थी, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. आराम से नर्स डे एंड नाइट के रखी और बहुत प्यार दिया उन्होंने, पूरा अपना अपने वही सुना पाठ पूजा अपना जो जो करते थे वो. आराम से बोले वो मुझे लेने आएगा और उन्होंने बोला भी आ गया,
0: आ गया सी,
1: एंड वो चले गए. जैसे टूटा फूटा बंगला है उसके बदले में कोई नया बना रहे हैं. आई सेड अच्छा हो माँ, चले गई, अच्छा घर मिलेगा, अच्छे नए लोग मिलेंगे, नए वहां खुशियां मनाएंगे लोग.
0: जहां भी आत्मा गई है विजुअलाइज करें कि जहां आत्मा गई है उस घर में तो कितनी खुशी है.
1: नहीं, लेकिन मैंने भगवान का भी थैंक्स किया कि भाई इनको एक दुख और दर्द ज्यादा नहीं दी ना.
0: कुछ बार ऐसे होता है आजकल कोई यंग एज में भी शरीर छोड़ता है,
1: हाँ,
0: है ना, तो वो जो पीछे रह जाएगा परिवार उसको बहुत ज्यादा मिस करेंगे, याद,
1: हाँ,
0: बहुत आएगी,
1: मुश्किल है,
0: है ना, हर स्टेप पर आएगी, हर कदम पर आएगी याद. लेकिन सिर्फ इतना अटेंशन कि थॉट कैसी वाली क्रिएट कर रहे हैं याद में भी, याद में भी ये थॉट क्रिएट करें, वो हमारे साथ थे, हमने ऐसा किया, हमें बहुत अच्छा लगा, जितना समय हमने उनके साथ बिताया वो बहुत प्यारा था, उनकी ये विशेषताएं थी, अब वो जहां आगे हैं वहां उस यात्रा को बहुत प्यार से निभाएं. ऐसी वाली दुआएं भेजना है. याद तो हर आपके घर से कोई यंग चला जाए, कोई बच्चा चला जाए, किसी का स्पाउस चला जाए, किसी का यंग एज में पेरेंट चला जाए, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट सीन इन आवर लाइफ दैट वी हैव टू क्रॉस.
1: मेरे साथ कितने हुए, फादर्स डेड, भाभी डेड, माय ब्रदर डाइड इन माय आर्म्स 40 इयर्स ओल्ड.
0: एक एक थॉट, लेकिन यहाँ हम थॉट की पावर की बात कर रहे हैं कि वो हमारा एक एक संकल्प उस आत्मा तक पहुंच रहा है. हम जब सोच रहे होते हैं तो हमें लगता है हम सोच रहे हैं, हमने कभी ये अटेंशन नहीं रखा कि ये हमारी सारी एनर्जी उस आत्मा तक पहुंच रही है माँ के गर्भ में दूसरी जगह पर, और वो आत्मा को वहां तकलीफ होगी, वो आत्मा का नया शरीर बनने लगा है, आत्मा का नया शरीर बन रहा है वहां पे. जैसी आत्मा की स्थिति, उसका प्रभाव उसके नए शरीर जो बन रहा है उस पर पड़ेगा. कैसे वाइब्रेशन भेजे, रोज उसके लिए शांति का दान दे, रोज दुआएं भेजे, रोज प्यार से याद करें, सारा दिन भी याद करें, लेकिन दर्द वाली थॉट नहीं क्रिएट करें. ये हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट कहें, दुआ कहें, ब्लेसिंग कहें, जो हम कर सकते हैं उन आत्माओं के लिए जो आगे अपनी जर्नी पर चल गए हैं. लेकिन वो तभी होगा जब हमें याद रहेगा कि आत्मा है, आगे गई है. लेकिन अगर हम कहेंगे मर गए, देन वी फील दे आर फिनिश्ड नाउ, वी कैन थिंक वट एवर वी वॉन्ट. दैट्स वाई एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, नोइंग दैट दिस इज सोल, आई एम सोल, चेंजेस एवरीथिंग.
1: शरीर ले ना ले, आत्मा तो आत्मा है.
0: शरीर ले लिया ना, लेकिन
1: ना भी ले तब भी
0: आत्मा एक शरीर छोड़ती है, उसका नया चोला रेडी होता है. आत्मा शरीर ही तब छोड़ेगी, आत्मा शरीर नहीं छोड़ेगी तब तक, वो शरीर तब छोड़ेगी जब उसका नया कॉस्ट्यूम
1: रेडी, घर रेडी हो जाए,
0: नया घर रेडी है, तब वो एक कॉस्ट्यूम से निकलेगी, दूसरे कॉस्ट्यूम में जाएगी. ये भी बहुत परिवारों में डर रहता है, वो गए तो कहां गए, उन्होंने शरीर लिया क्या नया, वो खुश होंगे क्या. हर आत्मा शरीर छोड़ेगी, उसका नया कॉस्ट्यूम रेडी है, जहां वो जाएगी परिवार खुशियां मना रहा है।
1: क्वेश्चन क्यों करें हम, ये होंगे क्या? हमको तो बोलना चाहिए कि भगवान उसे खुश रहे, जहाँ है तुम खुश रहो,
0: और उसको परमात्मा से कनेक्ट करके पावरफुल वाइब्रेशन भेजें रोज, ताकि वो आत्मा, क्योंकि वो आत्मा दर्द में है, क्योंकि वो भी सबको छोड़कर आई है ना, वो भी सबको छोड़कर आई है, तो वो भी दर्द में है, तो विशेष उनके लिए योग करें, विशेष उनको वाइब्रेशंस भेजें और ये मैसेज भेजें, आप आगे अपना ध्यान रखें, हम यहाँ ठीक है। इट्स लाइक समवन गोइंग टू अनदर कंट्री और अनदर सिटी, तो हम उनको क्या कहते हैं, हम यहाँ ठीक है, आप अपना ध्यान रखो काम पे वहां पे, आप अपना पढ़ाई करो, हम यहाँ ठीक है। सेम,
1: हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे यहाँ, आप अपना काम,
0: लुक एट दिस लाइन, हम अपना यहाँ सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब अवेयरनेस नहीं है तो हम कहते हैं हमारा क्या होगा अब, दोनों बातों में कितना फर्क,
1: ऑपोजिट,
0: ये ऑपोजिट एनर्जी उस आत्मा के लिए कितनी बड़ी चीज हो सकती है। प्योर एनर्जी भेजिए, आत्मा भी हील्ड, उसका नया शरीर भी अच्छा बनेगा, गर्भ में जो आत्मा की स्टे है, जो पीरियड है, बी वेरी पीसफुल। एवरी मदर नोज दिस एक्सपीरियंस कि कई बार कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है, बिकॉज आत्मा अंदर कितने दर्द में है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट फिजिकल, दे आर बिकॉज ऑफ व्हाट द सोल इज गोइंग थ्रू इन दैट फिजिकल कॉस्ट्यूम। उतना दर्द, उतनी तकलीफ, उतना रेस्टलेसनेस, आत्मा अंदर रेस्टलेसनेस होगी तो मदर कैसे कंफर्टेबल हो सकती है। तो अगर ये स्थिति है तो हमें कंटिन्यूसली वो वाइब्रेशन देनी है। अब जहां वो आत्मा गई है आगे, तो वहां वो जाके माँ के गर्भ में प्रवेश किया, उस आत्मा ने यहां से संस्कार कैरी किए, ये सीढ़ी है संस्कारों के साथ गई है। अब आत्मा डिटैच स्टेज में है गर्भ में, तो वो पास्ट की फैमिली के वाइब्रेशंस तो कैच कर ही रही है, साथ साथ वो कौन से वाइब्रेशंस कैच कर रहे हैं,
1: प्रेजेंट के,
0: प्रेजेंट के। वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मा डिटैच्ड है, हाईएस्ट कैचिंग पावर है, हर चीज जो हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आत्मा कैच कर रही है। प्रेजेंट फैमिली जहां वो आत्मा आई है, उनको कितना अटेंशन रखना है। जब हम कहते हैं कि ये बच्चे के ये संस्कार पेरेंट्स जैसे हैं, ये आदतें उसको पेरेंट्स से मिली, कब मिली, तो हम कहते थे जीन में, आत्मा ने आत्मा से कैच की, वाइब्रेशन कैच किया।
1: किसकी आत्मा ने किसकी आत्मा से कैच?
0: जो बच्चा है, जैसे आप उस दिन कह रहे थे कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मुझे देखकर सेम करने लग जाते हैं।
1: हाँ, जैसे मैं जूते उतारते, एग्जैक्टली वो स्टाइल भी वही करते हैं,
0: सेम कर रहे हैं। अब ये 2 साल के शरीर में है, लेकिन जब ये गर्भ में थे, ये तब से कैच कर रहे हैं, ये तब से कैच कर रहे हैं। इसीलिए शब्द बना गर्भ संस्कार, कि गर्भ में बने हुए संस्कार। आज साइंस ने इसके ऊपर पूरी स्टडी की है, इट इज कॉल्ड बर्थिंग साइकोलॉजी, इट इज कॉल्ड फीटल साइकोलॉजी, कि जो फीटस है इसकी साइकोलॉजी किस आधार से बनती है। तो एक साइंटिस्ट ने बहुत ब्यूटीफुल कहा, एज इज द माइंड ऑफ द मदर, सेम इज द माइंड ऑफ द चाइल्ड। उसने ये भी नहीं कहा द माइंड ऑफ द मदर विल इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ द चाइल्ड, नहीं, एज इज द माइंड ऑफ द मदर सो इज द माइंड ऑफ द चाइल्ड, मतलब डायरेक्ट प्रभाव है। जब हम कहते हैं एक आत्मा की वाइब्रेशन दूसरे तक जा रही है, और जो गर्भ में आत्मा है उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है, तो जब ऐसी स्थिति है तो पेरेंट्स को कितना ध्यान रखना चाहिए,
1: सोचना, खाना पीना, बोलना, उठना बैठना, सब कुछ, कौन सी पिक्चर आप देख रहे हैं,
0: वो तो बाह्य चीजें, कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या आप मूवी देख रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, कहाँ आपके स्थानों पर जा रहे हैं ना, ऐसे समय पर कितना ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसे स्थान पर ना जाएं जहां वाइब्रेशन प्योर नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक आत्मा बैठी है जिसकी कैचिंग पावर इस टाइम हाईएस्ट है, तो आप उसको कैसी वाइब्रेशन में लेके जाना पसंद करेंगे, कौन सी एनर्जी उसको फीड करना चाहेंगे। कभी ऐसे समय पर सिनेमा थिएटर जाना,
1: खाना पीना, खाना पीना, तो पार्टियों में जाना,
0: अब सिर्फ खाना पीना, पढ़ना देखना नहीं, लेकिन सोचना, सोचना। एक दिन एक हॉस्पिटल में मैं बैठी थी बाहर, तो मेरे साथ एक लेडी बैठी थी, वो 4 months प्रेग्नेंट। तो बिकॉज वी आर डूइंग दिस एज अ प्रोजेक्ट के बेबीज के ऊपर कितना असर होता है मदर की वाइब्रेशन का, मैं ऐसे ही बैठे बैठे उससे बात की और मैंने कहा ये 5-6 महीने ना ध्यान रखना, गुस्सा मत करना। तो शी जस्ट लुक्ड एट मी, शी सेड कितनी देर, आई सेड 5-6 महीने एटलीस्ट। शी स्माइल्ड, शी थॉट आई वाज लाइक डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग। शी सेड 5 मिनट कहते तो ठीक था, 5 घंटे भी बोलते तो भी, 5 महीने गुस्सा नहीं करना। आई सेड आप गुस्सा करेंगे ना, आपके अंदर जो बेबी है वो गुस्से की वाइब्रेशन अब्सॉर्ब करेगा, उसका गुस्से का संस्कार बनेगा। इट्स नॉट पॉसिबल 5 महीना। सो आई देन क्लोज द टॉपिक बिकॉज रिसेप्टिव नहीं थे उस बात के लिए। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, वो अपने 4 साल के बेटे को लेकर आई है एंड वो कहते हैं सिस्टर प्लीज प्लीज टेल माई सन समथिंग, ये बहुत गुस्सा करता है। एंड आई जस्ट लुक्ड एट हर, कि अभी भी समझ में नहीं आया कि ये कहां से गुस्सा आया उसके अंदर। हम इतने अनअवेयर हैं। अब हम चाहते हैं कि वो बच्चे का संस्कार ठीक हो जाए। गर्भ में वो समय था जब वो बच्चे को वो संस्कार दिया जा सकता था। दे हैव द पावर टू प्लांट विच एवर संस्कार दे वॉन्ट इन देयर चाइल्ड।
1: जो औरतें ये खाती पीती हैं, वो तो 9-9 महीने नहीं लेते हैं। और कई डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि आप हिल नहीं सकते बेड से, अगर आपको बच्चा चाहिए तो उनको तो हिलना भी मना है।
0: ये सब चीजें ना हम फिर भी कर लेते हैं।
1: नहीं, वही तो मैं कह रहा था,
0: केयर है ना, वी आर डेफिनेटली,
1: इतना सब कर रहे तो ये 5 महीने गुस्से के लिए, तो
0: थॉट लेवल पे वर्क करना है ना, थॉट लेवल पे वर्क करना है। अगर मदर या पेरेंट्स पे या फैमिली के वातावरण में किसी भी तरह की एंग्जाइटी है, फियर है, स्ट्रेस है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कोई ऐसी स्थिति है, लेट अस रिमेम्बर वो आत्मा सारी वाइब्रेशन कैच कर रही है और ये वाइब्रेशन उस आत्मा के व्यक्तित्व का हिस्सा बनेगी।
1: और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लड़का आए कि लड़की आए, एक बोलेगा आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ सन एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ डॉटर।
0: आत्मा शरीर में बैठे है और सपोज शरीर बेटे का बन रहा है, लड़के का बन रहा है, पेरेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, पहला बेटा है ना, अब बेटी होनी चाहिए, बेटी होगी तो हम उसका ये नाम रखेंगे, हम उसके लिए ये कमरे में लगाएंगे, यू नो स्वीट कॉन्वर्सेशंस। लेकिन जस्ट थिंक अंदर बैठ के वो सुन रहा है
1: क्या, अनवांटेड,
0: या
1: इनको तो बेटी चाहिए,
0: मैं तो लड़का हूँ, इनको तो बेटी चाहिए। हमें लगता है कि ये बहुत नॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्सेशंस हैं।
1: छोटी सी बात, एक आदमी मेरे घर पे आया था, बहुत रिक्वेस्ट किया कि फलाने फलाने दिन विवेक ओबरॉय को चीफ गेस्ट हमको चाहिए, बहुत तकलीफ है, आप कैसे भी करिए। तो मैंने बोला वो नहीं है, आउट ऑफ इंडिया है, नहीं आ पाए। अच्छा, उसके बदले में आप आ जाइए ना। मुझे इतना हर्ट हुआ, मैं क्या मैंने बोला फालतू हूँ, आप आए उसके लिए, मैं क्या उसका सब्स्टिट्यूट हूँ, उसके बदले में आ जाओ, मतलब ये चाहिए। तो
0: उतनी
1: छोटी सी बात में, बाप बेटे में मुझे तब फील हुआ
0: रिजेक्शन।
1: हाँ, तो वहाँ क्या होता होगा,
0: 9 months दैट सोल इज कैचिंग दैट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उस स्थिति में वो ये वाइब्रेशन कैच कर रही है आत्मा, जब वो डिटैच्ड है और वो हर थॉट कैच कर सकती है। ऐसी स्थिति में ऐसी वाइब्रेशंस कैच करके कई केसेस ऐसे मिलते हैं जो बच्चे बड़े होने के बाद भी रिजेक्शन का संस्कार कैरी करते हैं।
1: सही,
0: ना बच्चे को पता है कि ये संस्कार क्यों है, ना पेरेंट्स को पता है कि उसके अंदर ये संस्कार कब डला, लेकिन ये रिजेक्शन का संस्कार फिर क्या होता है, थोड़ा भी कहीं भी कभी भी कुछ भी बात होती है वो बहुत जल्दी रिजेक्टेड फील करते हैं। पेरेंट दूसरे बच्चे से थोड़ा सा ज्यादा कर ले, ये बच्चा रिजेक्टेड फील करेगा, क्योंकि वो तब से रिजेक्टेड की जो रिकॉर्डिंग है वो ग्रूव क्रिएट करके फिर आया है। इसलिए अटेंशन, आत्मा जब शरीर छोड़ती है, वी नीड टू रिमेम्बर डिटैच स्टेट में कैचिंग पावर हाईएस्ट है। जिस परिवार से गई है उनको भी कोई दर्द वाली वाइब्रेशन नहीं भेजनी, और जिस परिवार में आई है उनको भी कोई ऐसी थॉट या वाइब्रेशन नहीं क्रिएट करनी जिससे उस आत्मा को दर्द हो, एंड विच मीन्स खुद दर्द में नहीं जाना है।
1: मेरे एक्सपीरियंस में छोटे छोटे बच्चे स्कूल में मतलब जब खेलते हैं ना और दो कैप्टन बनते हैं तेरी टीम मेरी टीम और इसके मन में रहता है मैं इसकी टीम आई सेलेक्ट यू आई वॉज नॉट सेलेक्टेड बाय दिस एंड आई वॉज सेलेक्टेड बाय दिस वहां भी रिजेक्शन छोटी सी छोटी बात में
0: क्योंकि वो ग्रूव लेकर आएंगे तो वो गाना तो प्ले होता जाएगा
1: वहां से पता चल जाता है कि कैसे कहां से
0: वो संस्कार लेकर पैदा हुआ है वो बच्चा इसीलिए वो बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों में वो गाना प्ले होना शुरू हो जाता है बट देन व्हेन वी अंडरस्टैंड दीज संस्कार्स इट इज कंपैशन फॉर द सोल
1: थैंक यू सो मच सिस्टर
0: ओम शांति
1: ओम शांति ओम शांति
2: व्हेन वी डू नॉट हैव नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ आवर संस्कार्स वी बिलीव आवर एक्वायर्ड हैबिट्स आर नेचुरल and will permanently be a part of who we are. Spirituality reveals our true nature to us and also gives us the power to change any acquired sanskar. When we are soul conscious, our mind is silent and pure, we are able to catch the vibrations of other people. When a person dies, the soul leaves the body and in this detached state is able to catch the thoughts and feelings of family and friends. We will miss our family and friends when they leave the body. But if we keep crying and creating thoughts, like why did you leave? How can we live without you? Please come back. All these thoughts will radiate pain to the soul and not allow them to carry on their journey peacefully. When the soul is in the womb of the mother, soul is detached and can catch the thoughts and feelings of parents and people around. Preference for a girl or boy can send vibrations of being unwanted or rejected to the soul, and they can carry that sanskar throughout their life.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in. Or call us on 0999 559 660.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। This is my checking for today।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कोयल फड़क के मस्त करे जब अलाप से दिल के वलवले दब जाएंगे तबले की थाप।
1: शामे पुर्क

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore cells है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore cells, एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore cells आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 more cells इन द बॉडी, 10,000 crore cells इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore cells कनेक्टेड टू 10,000 cells, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 cells इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर, तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा।
3: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आज ज्ञान से रूबरू इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है कुछ सुनहरे पल, जिसे ज्ञान के पिंजरों से छुड़ा कर लाई हूँ। तो क्यों ना आज ज्ञान की कुछ ऐसी बातें की जाए जिसकी परख शायद ही किसे होती है, किसी को नहीं होती है। तो आज का हमारा विषय है बुद्धि की परख शक्ति को बढ़ाए। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। ऐसे तो भारत देश एक महान तीर्थ स्थान भी कहते हैं है, क्योंकि भारत में ही देवी देवताओं का स्थान रहा है शुरू से, और आज अंत तक देवी देवताओं की पूजा इस भारत की धरा पे ही होती आ रही है, सदियों से होती आ रही। इस परंपरा को आज भी सभी भक्तगण बहुत श्रद्धा से निभा रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में देवियों का जो स्थान होता है, वो देवियों को अष्टभुजाएं दिखाई गई है। अष्टभुजाएं अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अष्ट शक्तियों की जरूरत पड़ती है। वे शक्तियां हैं परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सहन शक्ति और संभालने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। इन सभी शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति परखने की है। परखने की शक्ति जो है वो आती है पवित्रता की धारणा से। जितना मनसा वाचा कर्मणा, अगर आप और स्वप्न में भी अगर आप पवित्रता को धारण करते हैं और उसकी धारणा को अपनाते हैं, तो उतना सहज ही परखने की शक्ति आती जाती है। बुद्धि की स्वच्छता ही दिव्यता को बढ़ाता है और व्यर्थ विचार, संशय या संदेह की भावना बुद्धि को मलिन बना देती है। जितना पारदर्शी बनेंगे उतना बुद्धि का दिव्यकरण होगा। इससे किसी भी समय कैसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को परख कर निर्णय दे सकते हैं, धोखे से बच सकते हैं। अगर बार बार धोखा मिल रहा है, दुख की महसूसता हो रही है, तो बुद्धि को स्वच्छ करें। जितना बुद्धि शुद्ध होगी उतना कदम कदम पर सफलता को प्राप्त करेंगे। एक होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि परख शक्ति बढ़ाने के कुछ उपाय भी होते हैं, जैसे मनसा की पवित्रता। मन में अगर पवित्र भावना है, मन में किसी भी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थों के प्रति नकारात्मक भावना है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना है, तो मन को पवित्र नहीं कहा जाता है। मन में सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना का विचार हो, समस्याएं कहीं से भी किसी भी रूप में आए, चाहे व्यक्ति निमित्त बने या प्राकृतिक आपदाएं, कैसी भी परिस्थिति में मन में अशुभ भाव उत्पन्न ना हो, तभी मन पवित्र हो सकता है। मन में शुद्ध विचारों की जो तरंगे प्रवाहित होती है, उनसे वातावरण भी और आत्माएं भी सकारात्मक हो जाती है। इसलिए विचारों की शक्ति को समझना और प्रयोग में लाना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है। जो कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य होंगे, उनके मन में सबके प्रति सुखदायी शुभ भावना व शुभ कामना से भी के ही विचार चलते रहेंगे। तो अपने को यहाँ पर चेक करें कि मेरे मन में किसी भी प्रकार के विचार आते हैं। विचार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। विचार जो है एक सूक्ष्म क्रिया है, इसलिए कहा जाता है कि विचार भावना और दृष्टिकोण को कोई व्यक्ति छुपा नहीं सकता। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: नमस्कार दोस्तों,
1: तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है बुद्धि की परख, शक्ति को बढ़ाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर लोग बोलने से पहले आज के युग में सोचते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं, जबकि मनुष्य को चाहिए कि वो कुछ भी बोलने के पहले सोचे जरूर कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वाचा की भी पवित्रता होनी चाहिए। स्लोगन है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोच समझ कर बोलो। जो मानव अपने मुख की मुख को वो मधुर बनाता है, वह सहज ही सबके दिलों में स्थान बना लेता है। सत्यवादी बनने के लिए अपने शब्दों पर लगाम दें। जो जितना शब्दों पर लगाम रखता है, उसके शब्द उतने ही प्रभावशाली होते हैं। कर्म भी हमें करने वक्त ध्यान रखना है कि हमारे कर्म सुकर्म है या विकर्म है, तो कर्मों में भी पवित्रता हो जाएगी। तो हमें अपने कर्मों पर, अर्थात कर्म अर्थात क्या होता है, संबंध, संबंध संपर्क में सादगी, शालीनता हो, मान शान की इच्छा और आकांक्षाएं संबंध संपर्क में भिन्नता लाती है। व्यक्तित्व को ऊंचा बनाने के लिए नम्रता, निर्माणता के साथ संपर्क में आए तो संतुष्टता जीवन में स्वतः आ जाएगी और सबके माननीय व प्रशंसनीय बन जाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि लोग स्वप्न में भी कभी कभी कुछ बुरे स्वप्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है स्वप्न में भी पवित्रता हो। स्वप्न की पवित्रता के लिए स्वप्न ही प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक पहचान होती है। जीवन को पारदर्शी बनाने की परख है स्वप्न। सत्व प्रधान, रजू प्रधान और तमो प्रधान, इन तीनों स्टेज में स्वयं को चेक करना है कि किस स्टेज का स्वप्न आता है। कर्मों की ध्वनि ही स्वप्न का रूप लेती है। मनसा, वाचा और कर्मणा, किस प्रकार के कर्म करते हैं, चाहे कॉन्शियस या अनकॉन्शियस स्थिति में, जागृत अथवा सुषुप्त अवस्था में, यह स्वप्न से ही मालूम पड़ता है। यदि डरावने या बुरे स्वप्न आते हैं तो अवश्य ही दुखदायी कर्म किए हुए हैं, भले ही व्यक्त रूप में न किए होंगे, परंतु विचार ही आधार है कर्म के। दो नेत्रों से हम पूरी दुनिया को नहीं देख सकते, परंतु मोबाइल हाथ में है तो कभी भी किसी भी समय पूरी दुनिया को देख सकते हैं। अच्छाई और बुराई सब चीजें इसमें है। हम जो भी देखते हैं सीधा मन और चित्त को प्रभावित करता है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि दृष्टि के माध्यम से मन और बुद्धि को किस प्रकार का भोजन दे रहे हैं। जैसे खराब भोजन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे ही जो देखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उससे मन और बुद्धि का पोषण होता है और वही स्वप्न संस्कार स्वभाव कर्म व्यवहार द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो यही है हमारे मन वचन कर्म की जो गहराई है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूं और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है बुद्धि की परख, शक्ति को बढ़ाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन में इंसान को इंसान के शरीर के लिए उसे भोजन की अति आवश्यकता है। तो भोजन कैसा होना चाहिए? जीवन का मूलभूत आधार है भोजन। अगर भोजन संतुलित न हो तो जीवन भी संतुलित नहीं हो सकता। अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक गर्म प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध जाता है। यदि खाद्य पदार्थ में आसक्ति से है तो उसमें दुख मिलता है। दुखों से बचना चाहते हैं तो क्षण भंगुर जीवा को उसके स्वाद रस के पीछे न जाकर जीवन जीने के लिए उपयुक्त आहार का उपयोग करें। योगी के लिए कहा गया है कि इंद्रियां रसों से मुक्त तभी आध्यात्मिक लक्ष्य में उत्तीर्ण हो सकेंगे। व्यक्ति को आसक्तियां से मुक्त होना चाहिए। ये जो आसक्तियां हैं, किसी भी प्रकार की आकर्षण ही प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं और तत्परता से अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होना है ताकि समय से पूर्व मंजिल के करीब पहुंच सके। परख शक्ति को बढ़ाने के लिए बुद्धि को अंतर्मुखी बनाए। अंतर्मुखी सदा सुखी। जो अंतर्मुखी बनकर स्वचिंतन में व्यस्त रहता है वही बाह्य आकर्षणों से बचा रहता है। बाह्य जो आकर्षण बुद्धि को शक्ति की जो उसकी होती है उसको नष्ट कर देते हैं। कभी कभी बुद्धि में धुंधलापन आ जाता है जिससे राइट रॉन्ग की यथार्थता को समझ नहीं सकते हैं। अगर बुद्धि को आत्मचिंतन परमात्मा के साथ परमात्म चिंतन और अपने श्रेष्ठ भाग्य के चिंतन में व्यस्त करें तो दैनिक जीवन में आने वाली हर रुकावट को सहज ही समाधान में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मनसा वाचा और कर्मणा मन वचन कर्म से हमें कैसा बनना है। भोजन के प्रति भी हमारी पवित्रता होनी चाहिए, स्वप्न के प्रति भी पवित्रता, हमारी सोच में भी पवित्रता। तो पवित्रता ही जीवन की एक परख बन जाती है। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखो

ओ खई के पाहन बनाओ रसबाला, खुली जाए बंद अकल का ताला।

की चोरी मिली छोरी तो मिली छोरी तो हुआ निहाल छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे।

0: ए, क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मेरी नजर।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुनेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांटो।
3: मस्ती की पाठशाला वेदांत पंकज आकाश यश आदित्य सैंडी वरदान आदित्य प्रकाश उन्नति लेखिका सुधापुरी।
4: ओए क्या हो गया है सबको आज? हैं?
5: क्यों क्या हुआ?
6: कुछ जल्दी से सोचो ना क्या खेलें? टाइम वेस्ट कर रहे हो सब।
7: टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? हंस नहीं रहे क्या? चलो इसको पकड़कर इसे गुदगुदी करके हंसाते हैं।
6: ओह नहीं नहीं। अच्छा बस बस अब नहीं कहूँगा ऐसे।
4: घर घर खेले जैसे हम बहुत पहले खेला करते थे, अब थोड़ा बड़ों की तरह खेलेंगे। झूठी मोटी रॉब जमा कर या दादा दादी की एक्टिंग करके या कुछ भी पड़ोसी के साथ पंगा या जैसे पिकनिक।
6: मतलब जैसे कोई कॉमेडी शो करेंगे।
7: बस बस जब देखो घर घर या स्कूल स्कूल।
5: स्कूल स्कूल कब खेला?
6: उस दिन खेला नहीं था जब हमने टीचर बन के मेक इन इंडिया को समझाया था, क्लास ली थी।
8: ओह वो तो हमारी मस्ती की पाठशाला थी।
9: पर कुछ भी हो मजा बड़ा आया था। दीदी ने खेल खेल में मजे करा दिए थे।
10: खेल खेल में मजे या खेल खेल में ज्ञान?
4: दोनों ही।
7: चलो एक रैप सॉन्ग गाते हैं ताली बजा बजा कर।
5: पहले लिख तो ले लिरिक्स क्या होंगे।
6: साथ साथ बनाएंगे मजा आ जाएगा।
11: ठीक है शुरू करो।
8: क्या शुरू करो अंताक्षरी?
9: ये सब रैप सॉन्ग वगैरह हमारे अंताक्षरी का ही तो दूसरा रूप है।
10: हाँ हाँ बिल्कुल ठीक।
4: ये चांद सा रोशन चेहरा,
7: नदियों का रूप सुनहरा,
5: ये झील सी नीली आँखें,
6: आँखों पर ज्ञान का पहरा।
8: इन आँखों को समझाओ जी,
9: इन्हें हंसना सिखाओ जी,
10: हर पल सीरियस न रहकर
12: खिलखिलाकर हंसना बताओ जी।
11: चलो एक बार और, बड़ा मजा आया। ठीक है।
4: वाह भाई वाह।
7: क्या भाई क्या?
5: एक चीज मिलेगी।
6: क्या भाई क्या?
8: बहुत सारे पटाखे और फुलझड़ियाँ।
9: क्यों भाई क्यों?
10: त्योहारों के लिए और भाई क्यों?
4: पर पटाखों से होता है
11: प्रदूषण।
7: बस भाई बस।
5: क्या भाई क्या?
6: ज्ञान की बातें और क्या।
12: आज बहुत मस्ती में हो सब। चलो एक गेम खिलाती हूँ सबको। इसमें कोई गहरा ज्ञान तो नहीं पर एक मजेदार एक्सरसाइज है।
11: हाँ दीदी हाँ ठीक है।
12: देखो हम सब एक ही अक्षर से शुरू करके अधिक से अधिक सही मीनिंग वाली बातें बोलने की कोशिश करेंगे।
4: वो कैसे?
12: जैसे चंदू की चाची ने।
4: समझ गए। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाने का निश्चय किया।
12: समझ गए ना? एक ही अक्षर से जो जितनी देर तक सही मीनिंग वाली बात बोलेगा वही जीत जाएगा।
4: ठीक है। जैसे बंदर बैलून बदल बदल कर बुलबुले बनाते बनाते बोला बड़ बड़ बड़ बड़ बड़ बड़ी बना रहे हो बड़ हवास, बैठे बैठे बेहूदी बातें बना बना बल खा रहे हो।
7: अच्छा अब मेरी बारी। ट्विंकल ट्विंकल टमाटर टाल टोमी टाटा कर टेम्पो और टू व्हीलर पर टकलू टिम्पी के साथ टेटे टमटम करता।
5: जी नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारी बात का कोई मतलब नहीं बनता।
7: क्यों बनता तो है?
11: जी नहीं नहीं भाई नहीं ऐसे नहीं होता।
6: अच्छा अब मैं करके दिखाता हूँ।
11: ठीक है चलो चलो।
3: सीमा सामने से सतर्क हो समझ सारसों से स्नेह स्वर से सहलाते हुए सी सी स्वर समेत सरकती सरकती सारथी को बुला लाई।
12: ठीक है अच्छी कोशिश कर रहे हो तुम सब।
8: अब मैं।
11: ठीक है।
8: मटकती मैना मिली मुझे मटक मटक के मन से बोली मीना और मेमने मचल मचल कर मन मारते नहीं मान मर्यादा मनन मन को समझाते मम मम।
9: रुक रुक रुक रेलगाड़ी रुक रमैया रमती हुई रहना रेन।
10: ये देखो मैं क्या लाया हूँ।
11: क्या है क्या है? आहा, गोलगप्पे।
10: हाँ, मेरी मम्मी ने इसका पानी बनाया है।
7: पानी घर में बनाया है?
10: बिल्कुल, उन्हें हमेशा से मेरा बाहर से गोलगप्पा खाना पसंद नहीं था। कहती थी पता नहीं पानी साफ भी है या नहीं।
4: मेरी मम्मी भी खाने नहीं देती थी, पर इसके लिए शायद मान जाए, क्योंकि ये तुम्हारी मम्मी ने हम सब के लिए साफ पानी से बनाए होंगे।
10: और क्या, बल्कि मैंने भी सीख लिया है पानी बनाना। आज तुम सबको मैं सिखाऊंगा भी।
11: वाव, ग्रेट, मजा आ जाएगा। हम तो रोज बनाकर पिया करेंगे भाई।
10: बहुत आसान है। पहले कुछ पुदीने के पत्ते लो, जैसे एक छोटी गड्डी के।
11: ठीक है।
10: स्वाद अनुसार हरी मिर्ची लो, जैसे ज्यादा तीखा चाहते हो तो 3 या 4, नहीं तो 1 या 2।
11: अच्छा।
10: इनको अच्छी तरह से धोकर मिक्सी में पीस लो। फिर खटाई के लिए आमचूर पाउडर या कच्ची अम्बी डालकर पीस लो मिक्सी में। फिर इस मिक्सचर को ठंडे पानी में घोल लो। नमक अपने स्वाद अनुसार चख के ठीक कर लो। बस।
5: और क्या मसाले पड़ेंगे इसमें?
10: मम्मी ने इसमें 1/2 चम्मच हींग डाली है और 1 चम्मच काला नमक। ये सब हाजमे के लिए बहुत अच्छे हैं। बाद में 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पीस के डाला है।
12: अब इसे देखते ही रहोगे या खाओगे भी? आओ मैं खिलाती हूँ सबको। लाओ ये गोलगप्पों का पैकेट, मुझे दे दो। ये भी मम्मी ने बनाया है क्या?
10: नहीं दीदी, ये बाजार से ऐसे ही मिल जाते हैं पैकेट में।
12: कई लोग तो इन्हें भी घर पर ही बना लेते हैं, सूजी या आटे के।
10: देखो दीदी, मैं पत्ते के 2 भी लाया हूँ। सबको 1-1 बांट देता हूँ, सब मिलकर खाते हैं।
6: आ, तुम्हारी मम्मी ने तो आलू और चटनी भी मिक्स करके दिए हैं।
8: लाओ मैं मदद करता हूँ। सब गोलगप्पे मैं थोड़ा थोड़ा भर देता हूँ, फिर दीदी इसमें पानी भर भर के 1-1 को देती जाएंगी।
11: ठीक है, पर दीदी तुम भी तो खाओ ना।
12: खा लूंगी, पहले तुम सब खा लो।
11: नहीं, आप भी साथ साथ लो।
12: अच्छा, लेती हूँ। देखो ध्यान से, ये वाला गोलगप्पा बहुत बड़ा है।
4: हाँ, कितना बड़ा मुंह खोलना पड़ रहा है।
7: अरे, फूट गया सारा पानी।
6: आधा हाथ में ही आ गया।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सब बकवास, सब बकवास है सब बकवास। बालू मेहता का जिसकी चलती है हुकूमत उसकी है दुनिया का दस्तूर यही सब गलत, यहाँ ताकत ही सही सब बकवास। किसने की प्रेम की बात उसे हमारे सामने लाया जाए, हम उसे सख्त से सख्त सजा देंगे।

0: आगे हमें सिखाता है, बातें बनाता है, लाओ से हमारे सामने वो नसब का खात्मा हुआ जाता है।
1: तेरी खुशी जंगल के राजा, खाना है तो मुझको खा जा।

0: हमने कहा था ना कि बाजू में है ताकत जिसकी, चलती है हुकूमत उसकी।
1: नमस्कार, मी मृणाली सावगत, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वो ही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: दादाजी और साक्षरता, पात्र परिचय। दादाजी के रूप में तरुण, भैया आदित्य, रिया के रूप में रुचि, नरेटर शशिकांत। रिया और राहुल पोस्टर बना रहे थे तभी वहाँ दादाजी आ गए।
3: दादाजी ये देखिए, हम दोनों पोस्टर बना रहे हैं।
4: जी दादाजी, कल हम सब स्कूल से एक जुलूस निकालेंगे जिसके द्वारा लोगों को शिक्षा के महत्व को समझाएंगे।
5: वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आशा है कि इससे लोगों में जागृति आएगी।
3: दादाजी क्या भारत में आज भी लोग शिक्षा के महत्व को नहीं समझते?
5: सही कहा, यही कारण है कि आज दुनिया के हर 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति निरक्षर है।
4: लेकिन दादाजी हमारे स्कूल में तो हर कोई पढ़ लिख लेता है।
5: अरे जो लोग स्कूल में आते हैं वे तो पढ़ लिख लेंगे ही, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल का मुंह भी नहीं देख पाते।
3: ऐसा क्यों दादाजी?
5: कुछ साधनों की कमी और सुविधाओं के अभाव के कारण, तो कुछ माता पिता की अज्ञानता के कारण।
4: माता पिता की अज्ञानता के कारण?
5: गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इसलिए भी नहीं भेजते क्योंकि उन्हें लगता है कि पढ़ने लिखने में वक्त बर्बाद करने के बजाय यदि वे कामकाज में उनका हाथ बटाएंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि थोड़े से रुपए के लिए वे अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, जो पढ़ लिख कर आगे चलकर बड़े व अमीर आदमी बन सकते हैं और अधिक रुपए कमा सकते हैं।
3: सच दादाजी, पता नहीं लोग इस बात को क्यों नहीं समझते।
5: इसीलिए तो भारत और दुनिया के अनेक देशों में सरकार व यूनेस्को आदि द्वारा साक्षरता मिशन चलाए जाने के बाद भी दुनिया से निरक्षरता दूर होने का नाम नहीं ले रही है।
4: दादाजी सबसे अधिक निरक्षर लोग दुनिया के किस देश में है?
5: बुर्किना फासो में, जहां केवल 21.8% साक्षरता है।
3: और सबसे अधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है दादाजी?
5: उत्तरी कोरिया, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड आदि देशों में सबसे अधिक साक्षरता है, जहां के सभी लोग साक्षर हैं।
4: पता नहीं भारत के सभी लोग साक्षर कब होंगे?
5: होंगे राहुल, लेकिन इसके लिए आवश्यकता है लोगों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता पैदा करने की और लोगों को यह विश्वास दिलाने की कि पढ़ने से न केवल बच्चों का बल्कि उनका अपना भविष्य भी सुधरेगा।
2: इस तरह से साक्षरता का महत्व दादाजी बच्चों को समझाते हैं।
0: पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार पुणे, मैं हूँ आपकी दोस्त और आप सुन रहे हैं पुणे का अपना फेवरेट स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद ही खास गेस्ट है, डॉक्टर श्रद्धा कामपारिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पिंपरी चिंचवड साइंस पार्क एंड प्लेनेटेरियम। शी इज अ डॉक्टरेट इन वाटर ट्रीटमेंट फ्रॉम सिम्बायसिस यूनिवर्सिटी पुणे, MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम नीम्स मुंबई। शी इज अ रिसर्चर, साइंस कम्युनिकेटर एज वेल एक्सपीरियंस एकेडेमिशियन। शी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम एशिया पैसिफिक रीजन। तो आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। डॉक्टर श्रद्धा जी, सबसे पहले हम आपकी एक अमेजिंग जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। साइंस के फील्ड में आने और आज पिंपरी चिंचवड़ साइंस पार्क की कमान संभालने तक का आपका सफर कैसा रहा, आप क्या बताना चाहेंगे श्रोताओं को?
2: सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी जो आज मुझे सुन रहे हैं। और रही बात आपके प्रश्न की, सो ये जो साइंस की जर्नी है वो सीधे मेरे फादर से स्टार्ट हुई थी, जो एजुकेशन फील्ड में थे, और वहीं से मुझे बुक्स के थ्रू काफी रुचि आई। देन मैंने अपना केमिस्ट्री का जर्नी चालू किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर से, फिर मेरा आना हुआ पुणे, और उसके बाद मेरी जर्नी चालू हुई विद इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स। एंड देन मेरा ख्याल था कि क्यों ना हम रिसर्च किया जाए, कुछ नई चीजें खोजी जाए और जो सोसाइटी को हेल्प की जाए। इस तरीके से मेरी जर्नी PhD में चालू हुई, जो सिम्बायसिस से हुई। उसके आगे मेरा था कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इट शुड रीच टू सोसाइटी, इट शुड बी रियली लिंक्ड विद इट, सो दैट वाज मेन एम। एंड उसमें एक बहुत बड़ी अड़चन थी कि उसको मार्केट कैसे किया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे MBA भी करना चाहिए, और इस बीच लगातार मैं बच्चों के संपर्क में रही हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, ये सभी जो है मैं उनके साथ काम करती आई हूँ। इसके अलावा मेरी रुचि थी कि मैं कुछ ना कुछ हैंड्स ऑन करती रहूं, सांस्कृतिक, कल्चरल और हैंड्स ऑन जो है वो मेरा काफी फोटे था। तो मुझे मौका मिला पिंपरी चिंचवड़ साइंस पार्क में ज्वाइन करने का, और आज जो जितने तमाम बच्चे, बड़े बूढ़े सब आते हैं, वो एक क्यूरियोसिटी लेके आते हैं साइंस पार्क में, और हम सभी कोशिश करते हैं कि उनकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई किया जाए और साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप किया जाए। सो एक छोटी सी जर्नी है और कुछ कोशिश है जो सोसाइटी तक पहुंच सके, और इस जिंदगी जो काफी उलझनों से भरी हुई है, डिस्ट्रैक्शंस है, उसमें हम साइंस का उपयोग करके कुछ ना कुछ नया और अपनी जिंदगी आसान कर सके।
1: बहुत खूब मैम, आपकी जर्नी तो काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब छोटे से लेके बड़ों तक, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। जब हम साइंस का समाज में योगदान की बात करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग साइंस ने एक नॉर्मल इंसान की डेली लाइफ को सबसे ज्यादा कैसे चेंज किया है, क्या कहना चाहेंगे आप?
2: ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज सभी के दिमाग में, कि जो टेक्नोलॉजी आ गई है उससे हमारी जिंदगी में चेंज क्या आया है। आज हम बैठ के आपसे बात कर रहे हैं और मेरी आवाज शायद मीलों तक पहुंचेगी, सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी सुनी जाएगी, तो ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। साइंस हैज ट्रांसफॉर्म्ड द ऑर्डिनरी इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई वुड से, एंड हमारी जिंदगी को उसने बेहतर, फास्ट और सुरक्षित बनाया है, और हम एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़ चुके हैं, वी आर मोर कनेक्टेड। सो फ्रॉम स्मार्टफोन्स इन अवर हैंड्स और टू द मेडिसिंस दैट सेव्स अवर लाइफ, आज हम ब्लिंकिट करते हैं, जेप्टो करते हैं, हमारी चीजें हमारे साथ में होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे नॉर्मल सी जिंदगी को काफी टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाती है। प्लस ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट टेक्नोलॉजी बट इट्स ह्यूमन पॉसिबिलिटी, जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो आज हम करने की क्षमता रखते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। सो साइंस हैज ब्रोकन बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड नॉलेज, सो गिवन एन ऑर्डिनरी पर्सन एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज दैट वॉज अनइमेजिनेबल, हम सोच भी नहीं सकते थे, इट वॉज अनइमेजिनेबल, वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। सो इट डज नॉट चेंज हाउ वी लिव, हम कैसे जी रहे हैं वो चेंज नहीं करती, बट हम ये सोच सकते हैं कि हम जो चाहते थे, करना सोचते थे, जो नहीं भी हो सकता वो भी हम आज कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ इट हैज बीन चेंज्ड द ऑर्डिनरी लाइफ बेसिकली।
1: मतलब कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि साइंस की वजह से हमारा लाइफ काफी इजी भी हो चुका है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यस, बहुत खूब मैम। तो वक्त हो चला है एक प्यारे से गीत का, तो डॉक्टर श्रद्धा जी आप इस अवसर पर कौन सा एक गीत सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
2: सिंस हम बच्चों के बारे में बात करें, स्पेशली साइंस पार्क में हमारे काफी बच्चे आते हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक, तो उन्हीं के लिए डेडिकेट करना चाहूंगी मैं ये, सभी ने सुना होगा ये गाना, बच्चे

0: इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ते हुए हमारा अगला क्वेश्चन है, आज के टाइम में साइंस और मेडिकल सेक्टर में साइंस और टेक्नोलॉजी ने जो प्रोग्रेस की है, जो काफी क्षेत्र में भी है, उस पर आपका क्या विचार है?
1: When we talk about health care and medical sector, काफी लोगों ने सुना होगा कि हम जो बीमारियों से लड़ते हैं, स्पेशली कैंसर जो आज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है विमेन्स में भी, उसका सोल्यूशन नहीं था। उसका सोल्यूशंस के लिए भी हम बाहर देश के लिए राह तकते थे, बाहर देश में जो डॉक्टर्स हैं उनको हम इंडिया में बुलाते थे। तो आज की जो दुनिया है, आज का टाइम जो है, हम वीडियो कॉल पे भी हम कंसल्टेशन लेते हैं और एक्सेसिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये हेल्थ सेक्टर जो हमारा इंडिया में है अभी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, भले ही वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। आज काफी ज्यादा सुविधाएं हमको पहुंचाई जा चुकी हैं, प्लस मेडिकल सेक्टर और स्पेशली वुमेन्स के बारे में बात करूंगी मैं, जो काफी ज्यादा पीछे होती थी और काफी ज्यादा आगे भी नहीं आती थी, उनको समस्याएं भी होती थी। आज काफी ज्यादा कंसल्टेशन अवेयरनेस के कारण जो हम घर तक पहुंच रहे हैं, वो खुल के बात कर रहे हैं अपनी तकलीफों के बारे में, और मुझे इसी हिसाब से लगता है कि काफी तरक्की की हमने और आगे भी हम करते जाएंगे कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो काफी बड़ी हो जाती है बाद में जाके, राइट फ्रॉम हाइजीन, राइट फ्रॉम व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियड्स, सो इट वाज अ ट्रॉमा थिंग जो आज की डेट पे नहीं है, इट्स कॉमन थिंग।
0: कैसे बताया जाए,
1: बिल्कुल कैसे बताया जाए, छुपाते थे लोग, बात करने की जरूरत नहीं होती थी। तो दिस इज फ्रॉम वुमेन्स पर्सपेक्टिव। सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट एडिक्शंस आल्सो नाउ, पहले जो है वो एडिक्शन की बात नहीं होती थी, लोग सोचते थे कि अरे बताएंगे हमको सोल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, लोग क्या सोचेंगे। तीसरी चीज हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, पहले मेंटल हेल्थ के बारे में भी लोग बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो सोचते थे कि या तो हमको कोई समझेगा कि पागल हो गया है, या तो कोई सोचेगा कुछ गंभीर बीमारी होगी, तो एक ट्रॉमा था वो। बट आज की डेट में मेरे ख्याल से मेडिकल सेक्टर ने

0: तरक्की कर ली है कि वो इस सारे डिलेमास को लोगों के माइंड से हटा सकता है और हटा चुका है, और लोग संपर्क कर रहे हैं हमारे मेडिकल प्रोफेशनल से इन सब चीजों के लिए।
1: तो कहीं ना कहीं वो सामने आके अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहे हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं।
0: यस, वेरी ट्रू,
1: वेरी नाइस मैम। पिंपरी चिंचवड साइंस बाग बच्चों में प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा देता है, जैसे ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशंस को दूर करके सोसाइटी में एक साइंटिफिक डिपार्टमेंट क्रिएट करने में ऐसे साइंस पार्क का क्या रोल रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे?
0: जब हम बात करते हैं साइंस की, विज्ञान की, तो जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस और विज्ञान, हम हिंदी में कहते हैं, बात करता है तथ्यों की, बात करता है फैक्ट्स की, और वो बिना किसी प्रूफ के कोई बात नहीं कहता। तो साइंस पार्क का मेजर रोल हमारे जो बच्चे हैं, बड़े हैं, स्कॉलर्स हैं, उनमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मिथ्स जो हैं सोसाइटीज में या जो हम जो भी चीज़ें करते हैं वो मिथ्स दूर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम बहुत ही अच्छा एक अमेजिंग सा शो लेते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का शो।
1: ओके,
0: तो उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री है, टेम्परेचर का खेल है, कुछ दो कॉम्बिनेशंस किया तो एक नया प्रोडक्ट बन गया। उस तरीके से हम बताते हैं कि कुछ मैजिक नहीं होता है, देयर इज नो मैजिक काइंड ऑफ वर्ड, देयर इज एवरीथिंग साइंस बिहाइंड इट। कोई ऊपर से चीज नीचे गिर रही है, अचानक से पानी यू नो मीठा हो गया, या कुछ भी चीजें हैं कि फॉग बन रहा है तो किस तरीके से बन रहा है, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट, दैट देयर इज अ साइंस, देयर इज ऑलमोस्ट टेम्परेचर, यू नो वी सी की मटीरियल्स कैसे होते हैं, अलग अलग मटीरियल्स के साथ खेल सकते हैं और कुछ नया बना सकते हैं। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो हमारे साइंस पार्क में हम देते हैं वो बताता है कि इट इज ऑल साइंस, नथिंग इज देयर विदाउट अ रीजन, कुछ भी एग्जिस्टेंस जो है वो ऐसे ही नहीं है, मैजिक नहीं है, कोई भी जो हम ब्लाइंड फेस या सुपरस्टिशंस की बात करते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। सब कुछ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर हम बात करें टेक्नोलॉजी, वो सब कुछ उसी से एनेबल्ड हुआ है,
1: फैक्ट के ऊपर ही डिपेंड, और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में उसमें इंटरेस्ट भी आता होगा।
0: बिल्कुल, और दे डेवलप सम न्यू कॉन्सेप्ट्स आल्सो कि हम ये बना के दिखाते हैं। तो इन आवर साइंस फेयर्स आल्सो वी डू सो मेनी थिंग्स, तो 3D शोज हो गए तो टेक्नोलॉजी हम बताते हैं कि 2D और 3D में क्या फर्क है, ये कुछ मैजिक नहीं है अगेन।
1: करेक्ट।
0: तो ये सारी चीजें हम साइंस पार्क, इवन एनर्जी हो गया, फन साइंस गैलरी हो गया, ऑटोमोबाइल, सो मेनी थिंग्स आर देयर जिसमें हम बताते हैं कि साइंस इज देयर, देयर इज नथिंग कि सुपरस्टिशन या ब्लाइंड फेथ करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ एक्सपेरिमेंट कीजिए और आपको अपने आंसर्स मिलेंगे।
1: तो इससे कहीं ना कहीं हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बच्चों को ट्रूथ क्या है और ब्लाइंड फेथ किस पे करना है, कि इसमें डिफरेंस बच्चों के पास ऑब्वियसली पहुंचता होगा कि हम किस पे फेथ करें और किस पे ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं।
0: दे अंडरस्टैंड कि हमको क्वेश्चन करना जरूरी है, हम हमारे सामने कुछ चीजें रखी हैं उसके ऊपर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सब्सटेंस बीइंग हॉट और कोल्ड।
1: करेक्ट।
0: So that needs to be done, and therefore Science Park plays a vital role in the field of education, especially the students. They are rightly made to think that what is right, what is wrong, and how to analyze, how to evaluate things. That is very important.
1: Because कहीं ना कहीं जैसा हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वैसे ही वो कैच करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स आर द लर्निंग प्रोसेस, दे कम्स इन द लर्नर, सो हम जैसा उनको बताएंगे वैसा वो अडॉप्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो टीम है और आपका जो साइंस पार्क है वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो चलते हैं दूसरे सॉन्ग की ओर, तो आपकी एक सुरीली आवाज में मैम दूसरा गाना हो जाए, हमारे श्रोता आपसे सुनना चाहेंगे दूसरा गाना।
0: सिंस हम बात कर रहे हैं कि हम सब साथ में काम कर रहे हैं, और एक और बात करना चाहूंगी कि सिंस साइंस पार्क की बात कर रहे थे तो स्ट्रीम हम बोलते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, रीडिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, ये हमने साइंस पार्क में अडॉप्ट किया हुआ है, तो सारी चीजें हम साथ में लेके चलते हैं। तो उसी के ऊपर एक गाना है।

0: तो जैसे कि हमने अभी अभी बात की कि लर्निंग प्रोसेस, जो स्टूडेंट है लर्निंग प्रोसेस में, सो इसी से ही जुड़कर हम आगे का क्वेश्चन कहना चाहेंगे कि एजुकेशन में फील्ड में स्पेशली रूरल और जो अंडर प्रिविलेज एरिया के बच्चों हैं, तो उस बच्चों तक में साइंस के वंडर्स को आसानी से पहुंचाने तक के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए? आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से स्टेप्स हम उठा सकते हैं, जो कि ये साइंस की भाषा है और साइंस के वंडर्स है, जो हम रूरल और अंडर प्रिविलेज बच्चों तक पहुँचा सके?
1: करेक्ट, ये एक सोसाइटी को बांधता है साइंस। तो जब हम बात करते हैं रूरल एरियाज का या अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स का या जो एरियाज हैं, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ साइंस पार्क इटसेल्फ, सिंस हम वो कर रहे हैं। सो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स ऑल द रूरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो। एंड सबसे बड़ी बात जो हम सबके सामने आई कि वो जो बच्चे हैं वो काफ़ी शाय हैं, वो अपनी बात आराम से कह नहीं पाते, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। तो उस गैप को फिल करने की जो जवाबदारी है वो हमने लेके रखी है कि रूरल बच्चों तक हम भी पहुँचे। तो एक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आउटरीच प्रोग्राम्स का होता है, जिसमें हम और हमारी टीम जो है एग्जिबिट्स लेके, कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस लेके, एक्सपेरिमेंट्स लेके, इनफ्लैटेबल डोम है, हमने बात की है दिन में तारे, तो क्या दिन में तारे देखे जा सकते हैं? तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है अगेन इनफ्लैटेबल डोम, कि वो नहीं आ सकते तो हम उन तक पहुँचते हैं और हम रूरल एरिया तक जाते हैं, बच्चों को समझते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पढ़ाते कैसे हैं उन बच्चों को।
0: करेक्ट, वेरी ट्रू,
1: क्योंकि हर बच्चे की समझने की जो क्षमता है वो अलग है।
0: right.
1: और स्पेशली जब हम रूरल एरियाज और अंडर प्रिविलेज्ड की बात करते हैं तो उनके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, जो वो कह नहीं पाते, वो बता नहीं पाते। तो उस समय हमारा कर्तव्य है और हमारा एक पर्पस है, विजन है कि उनसे फ्रेंडली होके उनको समझ के कि वो किस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है उनकी, उनके लेवल पे जाके हम उनको एक्सपेरिमेंट, उनकी स्टोरी टेल करते हैं ताकि वो याद रखे, इंस्पायर करते हैं कि वो कुछ बन सके। और सिमिलरली जब वो हमारे यहाँ आते हैं साइंस पार्क में स्पेशली, तो हम एक एनवायरमेंट से उनको अवगत कराते हैं कि ऐसा भी एनवायरमेंट होता है, इतनी टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं, तो जो क्यूरियोसिटी है उनकी, मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूँगी। अभी हाल ही फिलहाल में हमारे यहाँ कुछ रूरल एरियाज के बच्चे आए हुए थे, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे आए हुए थे, वो जानने के बहुत इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, बट उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उन बच्चों के लिए हम स्पेशल प्रोग्राम्स क्यूरेट करते हैं जो कि उन बच्चों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल इन द सेंस कि जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, जिनके टीचर्स हैं, सब कुछ है, उनको पढ़ाने का तरीका अलग है और इन बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग है। तो हम उनके तरीके से एडजस्ट होके अपग्रेड हो सके बोलना चाहिए, अपग्रेड होते हैं, अपडेट होते हैं और उनके लेवल से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्लस उनको लिंक करते हैं आज की नई टेक्नोलॉजी से, ताकि वो भी कहीं पीछे ना रह जाएं और इंस्पायर हो के वो कुछ आगे और नया कुछ कर सके। हाल एक अभी जो नेशनल साइंस डे हुआ था हमारा 2026 में, काफी बच्चे आए थे, हमने प्रोजेक्ट्स किए थे, वेदर यूनिट्स बनाए हुए थे यहाँ पे, वेदर मॉनिटरिंग यूनिट्स कल्पक घर के थ्रू एंड साइंस पार्क। सो वहाँ पे हमने काफ़ी अमाउंट में, आई वुड से काफ़ी मात्रा में क्यूरियस माइंड्स को देखा है, इनोवेटिव माइंड्स को देखा है, और ये जो प्लेटफॉर्म है हम ऑफर करते हैं सारे रूरल एंड अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को भी, जो हम चाहते हैं कि वो भी एक साथ कॉम्पीट करें, एक साथ पढ़ें और हेल्दी कॉम्पिटिशन में आ जाए। तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से,
0: मतलब कहीं ना कहीं जैसे इन अंडर प्रिविलेज बच्चों को है तो उनको उन्हीं की भाषा से अगर समझा जाए तो हो सकता है इसमें से ही साइंटिस्ट निकले।
1: बिल्कुल निकलेंगे, मुझे आशा है कि इंडिया में ऐसे कई साइंटिस्ट आने वाले हैं, और आजकल के स्पेशली जेन अल्फा और जेन जी जब हम बोलते हैं, दे आर वेरी फास्ट।
0: यस, वेरी ट्रू।
1: तो उनको हमको ज्यादा जरूरत नहीं है नर्चर करने की, बस उनको सही डायरेक्शन, सही एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है, जो शायद हम कोशिश कर रहे हैं।
0: या जरूर जरूर पूरा होगा आपका सपना भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिजिटल रिवॉल्यूशन और एआई, जैसा का आज का जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एआई के इस इरा में सोसाइटी की सेफ्टी और प्राइवेसी को मेंटेन रखना कितना बड़ा चैलेंज है, आपको क्या लगता है?
1: एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन वी से डिजिटल रेवोल्यूशन, AI in our hands. आज की डेट में हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, ChatGPT, OpenAI, Gemini, Claude, various options आते हैं। और स्पेशली जब हम बात करते हैं सोसाइटी की सेफ्टी की, तो सबसे पहले तो हाउ

0: इंस्टीट्यूशंस हैं, साइंस पार्क्स हैं, साइंस सेंटर्स हैं, आई विल टेक अगेन अवर एग्जांपल पिंपरी चिंचवड साइंस पार्क, तो हमने पीसीसीआई टीम जो है अंडर गाइडेंस ऑफ अवर फाउंडर डायरेक्टर श्री प्रवीण तुपे जी, उनके साथ उनका विजन था कि ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो बच्चों तक तो पहुंच गई है, उनके मोबाइल सेट्स में है, बट उनको सही तरीके से सिखाना जरूरी है,
1: इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये उनका नॉलेज देना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ दे आर यूजिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एज वेल,
0: राइट, और उनके पास इन्फॉर्मेशन की भंडार है, कहीं से भी फेच कर सकते हैं, बट उसमें उनकी डेटा प्राइवेसी लीक होती है, तो हमने कुछ मॉड्यूल्स डेवलप किए हुए हैं बेस्ड ऑन एआई, छोटे बच्चों के लिए भी और कुछ बड़े बच्चों के लिए, तो हम सिखाते हैं कि एआई यूज करना है आपको, एआई को हेल्पिंग हैंड की तरह लीजिए,
1: करेक्ट,
0: एआई हमसे सीखता है,
1: करेक्ट,
0: तो हम उसके टीचर बने ना कि वो हमारा टीचर बने, तो ये हम सिखाते हैं कि कैसे सही तरीके से एआई का यूसेज किया जाए,
1: कहीं ना कहीं हमें एआई को हमें खुद भी ट्रेन करना पड़ता है तब जाके वो आंसर देता है,
0: बिल्कुल, जो एआई में आज की डेट में आप शॉपिंग करते हैं, आप कुछ परचेज करते हैं, वो सारा एआई ले रहा है, तो जब भी नेक्स्ट आपको कोई सजेशंस आते हैं तो वो आपके फीडबैक से ही आए हैं, तो वो अपने आप को ट्रेन करता जा रहा है, अपग्रेड करता जा रहा है, बट वो हमारे दिमाग से कर रहा है, तो हमको उससे दो लेवल आगे चलना होगा, तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपने खुद के जो पर्सनल डेटा है वो कभी भी हमको एंटर नहीं करना चाहिए, सारी चीजें हम बताते हैं, तो दैट इज हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट इन इट, एआई इज चेंजिंग द होल वर्ल्ड एरा, बट एट द सेम टाइम AI should be cautiously and wisely used.
1: Yes, yes, very true. We need to be very aware about it.
0: Right.
1: थैंक यू सो मच. तो चलिए श्रोतागणों, वक्त हो चला है एक और सॉन्ग का, तो सुनते हैं हम आपकी सुरीली आवाज में.

0: अभी हम आगे बढ़ते हैं और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें साइंस किस तरह हमारी हेल्प कर रहा है?
1: एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हेन वी से साइंस इज प्लेइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन एनवायरमेंट एंड साइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चाहे हवा हो, हम एक कहावत बोलते हैं, भूजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बने शरीरा. सो इट्स लाइक अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ फाइव एलिमेंट्स, जो वेरी इट्स वेरी वाइटल कॉम्पोनेंट. तो जो भी एलिमेंट्स है, एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें ही हमारे आगे जो लाइफ है उसके लिए हेल्पफुल होने वाली है, एनर्जी है. सो साइंस जो है, इट इज बिकॉज ऑफ, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी, पहले तो बिजली भी नहीं हुआ करती थी, फिर धीरे बिजली आई, देन वी आर अगेन स्ट्रगलिंग कि हमारे तो रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, तो वी आर कमिंग विद डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स. वी केम टू सोलर एनर्जी, वी केम टू विंड एनर्जी, वी आर कमिंग टू वेव एनर्जी. तो देयर आर सो मेनी डेवलपमेंट्स व्हिच इज हैपनिंग थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सिमिलरली व्हेन वी से, यू नो, मोबाइल फोन्स कनेक्टिविटी, सो इनिशियली अगर आप देखेंगे कि मैं सिंपल एग्जांपल लेती हूँ एक फोन का, सबसे पहले हम एसटीडी बूथ्स में, उसके पहले भी हम तार करते थे. उसके पहले हम चिट्ठी लिखते थे. तार आया, देन फिर पेजर आया आपका. मैं कुछ हो सकता है बूच में भूल भी रही होंगी, रेडियो आए, फिर हम एक दूसरे संपर्क करने के लिए एसटीडी बूथ्स आए. किसी के पास मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, घर में ट्रंक कॉल्स होते थे. तो ये सारे डेवलपमेंट हुए, रेवोल्यूशन हुआ है, एंड इन एवरी फील्ड, राइट फ्रॉम मेडिकल सेक्टर, राइट फ्रॉम ऑटोमोबाइल सेक्टर, राइट फ्रॉम, यू नो, एनर्जी सेक्टर. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो दीज डेवलपमेंट्स कैन बी सीन इन साइंस पार्क आल्सो. तो वो हम बच्चों को बताते हैं वहाँ पे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, स्पेशली 17th जो है एसडीजी 17, जिसमें हम बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर गोल्स. सो सोसाइटी शुड कम टुगेदर. It's not only about an individual, it's not only about the institution, it's about society working together, right from the, all the stakeholders, like students, teachers, parents, community, industries, government, non-government sectors, NGOs. So all these are very important to work together, and we are very fortunate, I would say, ki aise kuch centers hain, jaise ki maine science center ki baat ki, Pimpri-Chinchwad mein science park ki bhi baat ki, yahan pe hum sab miljul ke kaam karte hain. So kabhi koi ek sochta hai ki is direction mein jana hai, ho sakta hai wo direction galat ho, but char log ek hi jagah sochte hain, brainstorming hoti hai, to usse kuch na kuch acha milta hai. To abhi humne ek community engagement program chalu kiya hai, उसमें भी हम वही बात करते हैं कि हम जो आज के बच्चे हैं उनसे ही फीडबैक लेते हैं कि क्या चाहिए, और उनका फीडबैक बेस होता है विजिटर्स से. तो विजिटर्स से वो बात करते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसा लगता है. वी फाइंड आउट प्रोज एंड कॉन्स एंड वी ट्राई टू डेवलप इट. सो मुझे लगता है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, राइट फ्रॉम वाटर, सो वी हैव अ डेडिकेटेड गैलरी ऑन माई रिवर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उस पर भी हमने काफी फोकस किया है कि आसपास की नदियों को इंसान भूल जाता है. जब आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल नाउ, हमारे घरों में पानी आता है, जिस दिन पानी नहीं आता सुबह, सबको फिक्र होने लगती है. सबसे पहले हम मोबाइल उठा के सोसाइटी के ग्रुप में डालते हैं, पानी क्यों नहीं आया.
0: राइट.
1: प्लम्बर की बात करते हैं, सोसाइटी मैनेजर की बात करते हैं, और फिर हो हल्ला मचता है. फिर पानी आ जाता है थोड़ी देर बाद, और हम फिर भूल जाते हैं. वही टैप खुला रहता है, वही हम अनकॉशियसली पानी यूज करते हैं. फिर जब एक आध दो हफ्ते बाद फिर वही सेम चीजें होती हैं, तो फिर हमको याद आ जाती है. तो ये रिकॉल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट. एंड जब हमको कुछ नहीं मिलेगा, तभी आपको याद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन है, दे आर गोइंग टू सफर बिकॉज ऑफ अस.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: तो आज की डेट में हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है कि आज जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो एक्चुअली में आज की डेट में हमने प्रैक्टिस करना है.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: सिमिलरली प्लास्टिक ड्रिवन कैंपस बोलते हैं, प्लास्टिक फ्री कैंपस ड्राइव बोलते हैं जिसको हम. तो पहले तो बहुत सारे प्लास्टिक्स यूज हुआ था, जिसमें अगर आप मानेंगे नहीं, जो जमीन की लेयर्स होती हैं, उसमें से एक लेयर प्लास्टिक की लेयर होती जा रही है, क्योंकि इतना कचरा हम जो है वो डिस्कार्ड करते हैं, जमा कर चुके हैं. तो इस टाइप की ड्राइव्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो यहाँ पे भी हमने हमारे यहाँ पिंपरी-चिंचवड़ साइंस पार्क में एक प्लास्टिक फ्री कैंपस ड्राइव करके रखा हुआ है शुरू, जिसमें हम कोशिश करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं लोगों को कि प्लास्टिक ना कम से कम यूज करें, ना यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ हमारी अर्थ को ही नहीं डिस्ट्रॉय कर रही बट हमारे में लाइफ को भी हार्म कर रही है. माइक्रो प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं. इट्स वेरी मच अफेक्टिंग. वेरियस रिसर्चेस हैज बीन शोन. सो इस तरीके से एनवायरमेंट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ साइंस. साइंस एंड एनवायरमेंट इज लाइक लिंक्ड.
0: देयर इज अ कोरिलेशन.
1: यस, हेविली इट इज देयर. एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम सारे एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स जो है वो कर सकते हैं. प्लस अवेयरनेस. तो पब्लिक पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट in achieving our goals. 2050 का goal हम बात करते हैं विकसित भारत का, तो उसके लिए ये सब चीजें काफी जरूरी हैं. 2047 की बात करते हैं especially, तो 2050 तक पहुंचने तक ये goal जो है permanent हो जाना चाहिए हमारा कि
0: correct.
1: बिल्कुल अपने अचीव कर लिया है सारे टारगेट्स. कार्बन फुटप्रिंट हो, वाटर फुटप्रिंट हो, तो यूजिंग अवर ओन रिसोर्सेस की जो हमारे आस पास के रिसोर्सेज है उसी का यूज करके हम कैसे रीयूज रिसाइकल. सो जो पूरी जो साइकल्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे कंप्लीट करेंगे तो शायद हम बिल्कुल पहुंच सकेंगे.
0: यस, वेरी ट्रू. तो बहुत अच्छा आपने बताया कि हम इस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं. तो फिर से एक बार वक्त हो चला है एक सुंदर से आपकी सुरीली आवाज में सॉन्ग गाने का. तो मैम प्लीज.
1: ओके, सो सिंस इट इज वेरी स्ट्रेसफुल एंड यू नो नाउअडेज इट्स लाइक लॉट ऑफ पोल्यूशन स्ट्रेस इज देयर एंड सो एक गाना उसी में डेडिकेटेड कर लेते हैं हम लोग. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द

0: जैसे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम 2050 तक हमारा गोल अचीव कर रहे तो जीना इसी का नाम है, हम ऑब्वियसली कह सकते हैं
1: बिल्कुल
0: तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की है कि यंगस्टर, हमारे लर्नर स्टूडेंट जिसके बारे में हमने बात की है, तो अक्सर यंगस्टर में कहीं ना कहीं साइंस के बारे में एक डर सा रहता है, एक फोबिया सा रहता है। जो आप अपनी संस्था के बारे में किस तरीके से थॉट आप देना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स को, जो ये डर कैसे दूर कर सके या फोबिया कैसे दूर कर सके?
1: अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन लेने के लिए आई वुड लाइक टू थैंक यू। हमारा जो टैग है पिंपरी चिंचवड़ साइंस पार्क का, लर्निंग साइंस इज फन। तो जब कोई बच्चा या विजिटर या पार्टिसिपेंट, अभी मैं एक और चीज बात करूं, हम विजिटर नहीं बोलना चाहते, हम कहना चाहते हैं वो पार्टिसिपेंट है।
0: Yes.
1: कि जैसे ही वो हमारे गेट से आते हैं तो उनको एक अलग अनुभव होता है कि ये हम एक कोई क्लासरूम में नहीं आए कि मुझे कुछ यू नो टाइम रिस्ट्रिक्टेड है कि मुझे यही पढ़ना होगा, ये खेलना होगा, यही होमवर्क करना होगा। नहीं, इट्स अ फ्री ओपन प्ले ग्राउंड। वी मेक श्योर कि जो बच्चा आ रहा है, पार्टिसिपेंट आ रहा है, स्कूल के बच्चे आते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आते हैं, काफ़ी कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग आते हैं, दे ट्रेनर्स आते हैं, उनको एक फ्री ग्राउंड मिले। और सबसे पहले हम यही ब्रीफिंग के दौरान हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ क्या गैलरीज हैं, क्या है, उनसे ज़रूर पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। और सबके डर में मन में ये रहता है कि मैथ्स वेरी टफ, फिजिक्स वेरी टफ, केमिस्ट्री माइट बी वेरी टफ। तो ये फोबिया हम हटाने की कोशिश करते हैं कि टफ कुछ नहीं है, आपका इंटरेस्ट किस में है वो आपको खोजने की देर है। तो ये जो प्लेग्राउंड आपको मिला है साइंस पार्क का, उसमें आप आइए, खोजिए, खुद को खोजिए कि आपको क्या इंस्पायर करता है, आपको क्या इंटरेस्ट करता है। तो जब कोई बच्चा आता है हमारे यहाँ, तो हम उसको छोड़ते हैं कि ओके ऑटोमोबाइल में जा सकते हो आप, कोई भी गैलरी आप चुनिए, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा कुछ भी स्ट्रिक्टेड टाइम नहीं है कि आपको एक घंटा ऑटोमोबाइल में रहना है, एक घंटा क्लाइमेट चेंज में रहना है, या एक घंटा फन साइंस में रहना है। तो फन साइंस की बात कर लेती हूँ, फन साइंस हमने नाम ही इसलिए रखा हुआ है कि साइंस इज फन। जो हम बड़े बड़े फॉर्मूलेस लिखते हैं,
0: करेक्ट,
1: याद करना पड़ता है,
0: रटना पड़ता है,
1: तो वो रटने की जरूरत नहीं है। आप एक बहुत ही प्यारा सा हमारे पास एग्जिबिट है जो हमने रिसेप्शन एरिया में रखा हुआ है, न्यूटन्स लॉ पे है। पांच बॉल हमने लगाई हुई है, उसको जस्ट ब्लो करना है। वो बच्चों को हम स्टोरी टेल के माध्यम से बताते हैं और बच्चे काफी आसानी समझ जाते हैं। इल्यूजन का भी हमारे पास ऐसा ही एग्जिबिट्स हैं जिसके बारे में हम बताते हैं बच्चों को, वो काफी आसानी से समझते हैं और वो हमेशा याद रखते हैं। तो ये जो फोबिया है, इट इज ओनली बिकॉज क्योंकि हम रटते हैं।
0: यस,
1: हम समझना नहीं चाहते।
0: क्षणिक भी होता है मैम, कहीं
1: बिल्कुल
0: क्षणिक, मतलब वो भूल जाते हैं
1: बिल्कुल। तो वो क्यों? क्योंकि वो क्रैम करते हैं, याद करते हैं। अगर आप कोई भी चीज समझेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि थ्रू आवर एग्जिबिट्स, जो हमारे मोर देन 325 एग्जिबिट्स हैं हमारे पास, जो कि इंडोर एंड आउटडोर में है, उसमें सारे एग्जिबिट्स में एक स्टोरी टेल होता है, उसमें एक्टिविटी बेस्ड होता है, एंगेजिंग होता है, जिसमें वो खुद टच करके करके देखता है और फिर समझता है कि अच्छा ये तो इसके कारण हो रहा है। तो काफी सारे ऐसे एग्जिबिट्स हैं जो बच्चों को काफी पसंद आते हैं और वो रिलेट करते हैं, अरे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये तो हमने इतना बड़ा इक्वेशन पढ़ लिया, हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, हमको समझ ही नहीं है। वो एक उंगली पे एक बैलेंस करने का हमारे पास एक छोटा सा हैंडमेड एग्जिबिट है, वुड से उनको वैसे ही समझ में आता था कि उनके वेट्स डिवाइड करो तो कैसे होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जिबिट्स हैं जिसमें हम चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि फोबिया निकल जाए। और हम लिंक करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से, ताकि आपने जो सही कहा कि क्षणिक होता है,
0: क्षणिक होता है,
1: भूल जाते हैं हम। तो वो जब रियल लाइफ से जुड़ जाता है तब वो भूला
0: नहीं जाता। कहीं ना कहीं हम ऐसा भी देखते हैं कि जो बच्चों को हम स्टोरी टेलिंग से जो सिखाते हैं ना, दैट इज लॉन्ग टर्म लर्निंग होता है वो। और अभी एनएपी 2020 ने भी वही निकाला है ना, फन विथ लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल थ्रू लर्निंग। सो ऐसे करने से क्या होता है ना, स्टूडेंट का फोबिया है, जो हमारी इस जनरेशन के बच्चे हैं जो एआई में जी रहे हैं, तो उनको ये अगर करेंगे इससे सीखेंगे तो उनको इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो टीम है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान दे रही है, ऐसा मैं कहना चाहूंगी।
1: नहीं नहीं, हमारी कोशिश वही है कि बच्चों को यहाँ पे आए, एक फ्री प्लेग्राउंड मिले, कोई बैरियर ना हो वॉल्स का, कोई बैरियर ना हो टाइम का, और वो अपनी पसंद का सब्जेक्ट जो है वो चुन सके, समझ सके, टाइम दे सके। और उससे फोबिया निकलेगा, जरूर निकलेगा,
0: डेफिनेटली निकलेगा, क्योंकि वो उसमें वो इंटरेस्ट आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो फोबिया ऑटोमेटिक निकल जाएगा उसका. वेरी नाइस मैम. देन हमारा अब हम लास्ट मोमेंट पे पहुंच चुके हैं, तो हमारा एक लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैम. जैसे कि हम बात करते हैं समाज में साइंस स्पिरिचुअलिटी, तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी में क्या योगदान है? क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के अपोजिट है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या कहना चाहेंगे आप?
1: ये एक काफी कठिन प्रश्न है, मैं ऐसा कहना चाहूंगी, और जिसका मेरे ख्याल से आंसर सरल है. समझना थोड़ा मुश्किल लोगों के लिए होता है कि यू नो डिफरेंट है या सेम है, सप्लीमेंट है या कॉम्प्लीमेंट है. तो बेसिकली अगर हम साइंस की बात करते हैं, तो साइंस सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स. हमारा जो यूनिवर्स है, उसके फिनोमेनास है, वो कैसे वर्क करता है. बट कैसे समझता है साइंस? थ्रू फैक्ट्स, एविडेंसेस, एक्सपेरिमेंट्स एंड रीजन. तो साइंस सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, एविडेंस बेस्ड होता है. वेयर एज अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो वो एक्सप्लोर करता है कि हम कौन है, हु आर वी एंड हाउ शुड वी लिव. बेसिकली इट टॉक्स अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ. रिफ्लेक्शन की बात करता है, योग का की बात करता है, जो हमारे प्राचीन कला से चलती आ रही है, प्राचीन काल से, आई वुड से, एंड मेडिटेशन की बात करता है. सो आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड से कि बोथ कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ बैलेंस लाइफ. बोथ, साइंस सपोर्ट्स फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग थ्रू एविडेंस बेस्ड नॉलेज बेसिकली. वाइल्ड प्रैक्टिसेस जो हम स्पिरिचुअलिटी में भी कम करते हैं, सच एज मेडिटेशन, देन योगा कैन स्ट्रेंथन फोकस, हमारा फोकस जो है वो काफी बढ़ जाता है, काम हो जाते हैं हम, डिस्ट्रैक्शन कम होता है, एंड वी आर मोर सेल्फ अवेयर्ड. तो दैट इज वॉट, एंड आई फील टूगेदर दे कैन इंस्पायर अस टू रिस्पेक्ट नेचर. क्योंकि जब हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आसपास की जो चीजें हैं, नेचर है, उसको हम रिस्पेक्ट करना चालू कर देते हैं. हम रिसोर्सेज को वाइसली यूज करना चालू कर देते हैं. हम अपनी लाइफ को केयर करना चालू कर देते हैं. एंड वी कल्टिवेट अ हेल्दियर माइंड, हेल्दी आई वुड से. सो साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर सेल्फ. सो अ बैलेंस्ड लाइफ कैन बी लर्न फ्रॉम बोथ थिंग्स. तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से.
0: यस यस, वेरी ट्रू मैम. जैसे कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी अगर दोनों अगर हमारे लाइफ में है, तो फिर क्या कहना.
1: यस यस, इट्स अ चॉइस. इट्स अबाउट लर्निंग आवर सेल्फ्स. साइंस इज लर्निंग अबाउट ऑल सराउंडिंग ऑफ अस एंड इट्स यू नो मेंटल हेल्थ की बात करते हैं सारी चीजें. इट्स साइंस,
0: राइट राइट,
1: एंड इट कैन बी अचीव थ्रू प्रैक्टिसेस.
0: यस, बोथ द थिंग्स कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिसेस.
1: यस यस, एब्सोल्युटली.
0: वेरी वेरी वेरी नाइस मैम, आपने बहुत बहुत हमें वैल्यूएबल नॉलेज भी बताया. तो हमने सुना है कि आप शायरी भी बहुत अच्छा करते हैं सॉन्ग के साथ साथ, तो इस सारी सिचुएशन को मैच करते हुए या सिचुएशन को देखते हुए आप हमें, हमारी श्रोताओं को एक सुंदर सी शायरी सुनाएंगे.
1: सबसे पहले तो काफी मुझे अच्छा लगा ये सारे क्वेश्चंस जो हमारी वार्तालाप हुई हैं उसमें एंगेज होके, और आपके श्रोताओं से मिलके भी, और जो मुझे सुनेंगे, सो उनके लिए सब, जैसा आपने कहा कि आज की जो सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से कि डिस्ट्रैक्शन होता है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, फिर हम डर जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम रुक जाते हैं. तो ऐसा नहीं करना है, बिकॉज लाइफ गोज ऑन एंड देर इज ह्यूज पॉसिबिलिटीज.
0: यस,
1: वन डोर विल क्लोज, अनदर विल ओपन.
0: ओपन, यस.
1: तो इसके लिए एक बोलना चाहूंगी, जो थक कर भी ना रुके, जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है. सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है.
0: वेरी गुड मैम, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर श्रद्धा जी. मुझे विश्वास है कि साइंस, सोसाइटी और स्पिरिचुअलिटी के इस ब्यूटीफुल बैलेंस को आपने जितने सिंपल वर्ड में समझाया, और हमारे, जाहिर सी बात है, हमारे श्रोताओं को वो समझा भी होगा, उससे हमारे श्रोता साथियों को साइंस के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई होंगी. पिंपरी चिंचवड़ साइंस पार्क के जरिए आप और आपकी टीम जो काम कर रही है वो सच में बहुत इंस्पायरिंग है. आपको इस आगे की जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां भी है हमारे रेडियो पुनेरी आवाज की तरफ से. और आपने इस रेडियो पुनेरी आवाज में आने के लिए जो अपना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू भी है. तो दोस्तों, आज के इस विशेष एक मुलाकात शो में अब समय हो गया रुकने का. तो सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, और भूलिएगा मत, खुश रहो, खुशियां बांटो. नमस्कार.
1: नमस्कार.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पे असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, वेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: उड़ेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्र अभिमान का पवित्र स्फुरण जब देश के क्रांतिकारियों में संचरित हुआ तो उस प्रचंड हलचल की हवा ने देश की ग्रामीण जनता को भी झकझोर दिया। तब ग्रामीण जनता के कंठ से ऐतिहासिक वीर गाथाएं लोकगीतों में भी व्यक्त हुईं। बाबू कुंवर सिंह तिगवा बहादुर, होली खेले ले जंग मैदान, तण बंगला में उड़े ला गुलाल, या फिर बाबू कुंवर सिंह तोहरे राज बिनु हम न रंगाइब केसरिया। जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह की वीरता का ये लाल रंग आज भी भोजपुर क्षेत्र में गाए जाने वाले फाग गीतों में शामिल है। बाबू कुंवर सिंह तात्या टोपे की ही तरह एक ऐसे जननायक थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का बहुत लंबे क्षेत्र तक प्रतिनिधित्व किया था। उनकी छापामार युद्ध शैली से अंग्रेज लगातार परेशान होते रहे। ब्रिटिश कंपनी सरकार की 34वीं पलटन, जो कि बैरकपुर में थी, उसमें पहला सैनिक विद्रोह 29 मार्च सन 1857 को मंगल पांडे और उनके साथियों ने किया था, जिसमें मंगल पांडे को सार्जेंट मेजर ह्यूसन की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा दी गई थी और इस तरह इस सैनिक विद्रोह को दबा दिया गया। 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया और 11 मई को वे दिल्ली पहुंचे। तब से छुटपुट विद्रोह की लहर देश के अलग अलग क्षेत्रों में उठने लगी थी। बिहार भी इनसे अछूता नहीं था। दानापुर की पलटन ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबू कुंवर सिंह आरा के पास जगदीशपुर के बड़े सामंत थे और वहां के किसानों, मजदूरों और आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उनकी उदारता और सदाशयता के किस्से बिहार के लोक आख्यानों में आज भी सुने सुनाए जाते हैं। 1841-42 में पटना में जो षड्यंत्रकारी घटनाएं हुई थीं, उसमें बाबू कुंवर सिंह भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे और आसपास के जिलों के विद्रोहियों की सहायता कर रहे थे। एक अंग्रेज अधिकारी J.S. डेविस ने छोटा नागपुर के कमिश्नर को लिखित पत्र में कहा था कि वे सभी जिन्होंने बिहार के छोटा नागपुर, मानभूम, सिंहभूम और पलामू में विद्रोह किया था, कुंवर सिंह के नेतृत्व में काम करना चाहते थे। बाबू कुंवर सिंह के 3 भाई थे, जिसमें अमर सिंह ने उस विद्रोह में कंधे से कंधा मिलाकर कुंवर सिंह का साथ दिया। लोक गाथाकार उनके इस अवदान को भूलते नहीं हैं और कुंवर सिंह की बहादुरी के किस्सों के साथ अमर सिंह का नाम भी सहज रूप से इसमें शामिल हो जाता है। 1857 के 10 साल पूर्व ही कुंवर सिंह ने अपने आसपास के तमाम जमींदारों, सामंतों और राजाओं को पत्र लिखकर अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया था। इसका जिक्र लोक इतिहास में आज भी है और अलग अलग कंठों, अलग अलग स्वरों से समय समय पर प्रस्फुटित होता रहता है।

दानापुर सेना की 3 रेजिमेंटों 7, 8 और 40 के सैनिकों ने 25 जुलाई सन 1857 को बगावत कर दी। ये सभी सैनिक किसान परिवारों के थे जो कंपनी की नीतियों से बहुत परेशान थे। उन्हें कम वेतन मिलता था, पदोन्नति न के बराबर थी और बात बात पर देसी सैनिकों को अंग्रेज अफसर परेशान करते थे। विद्रोह करने के बाद दानापुर के सैनिक आरा की ओर चल पड़े। जिस समय कुंवर सिंह को आरा में विद्रोहियों के आगमन की सूचना मिली, वे जितौरा के जंगलों में थे। आरा में विद्रोही सैनिकों ने पहले खजाने पर कब्जा किया, जेल के कैदियों को मुक्त कराया और आरा स्थित सभी सरकारी कार्यालयों को ध्वस्त और ठप्प कर दिया। विद्रोही सेना के जगदीशपुर पहुंचते ही बाबू कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व संभाल लिया। उन्होंने आरा हाउस को घेर लिया और घिरे हुए अंग्रेज और सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा। 29 जुलाई 1857 को आरा के निकट कायम नगर में निर्णायक युद्ध हुआ। अंग्रेजी कमान का नेतृत्व कैप्टन डेनवर कर रहे थे। कुंवर सिंह के सैनिक दल ने छापामार लड़ाई लड़ी, जिसमें अंग्रेजी सेना की पराजय हुई और कैप्टन डेनवर मारा गया। इस जीत के बाद कुंवर सिंह का आरा पर पूरा कब्जा हो गया और उन्होंने स्थानीय शासन व्यवस्था जमा ली। इस पराजय से तिलमिलाए अंग्रेजों ने अगस्त 1857 के पहले सप्ताह में बड़ी सेना के साथ आरा पर फिर हमला किया। आरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर बीवीगंज में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर के सैकड़ों लोग हताहत हुए और कुंवर सिंह अपने बचे हुए साथियों को लेकर जगदीशपुर चले गए। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने युद्ध के साजो सामान तथा बंदूकें और तोप बनाने के कारखाने स्थापित कर रखे थे, पर उनकी लकड़ी से बनी हुई तोप, जिसमें तांबे की नली लगी रहती थी, ज्यादा दूर तक मार नहीं कर पाती थी। अब आगे बढ़कर अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। कुंवर सिंह की सेना हारी जरूर, किंतु उनके साहस, युद्ध नीति और रणकौशल के प्रदर्शन के बारे में मेजर विंसेंट आयर ने लिखा, बाबू कुंवर सिंह युद्ध कला के जादूगर हैं। हम लोग वीर कुंवर सिंह के सामने असहाय हैं। अब कुंवर सिंह ने अपना कार्यक्षेत्र बदलकर कैमूर और रोहतास के घने जंगलों में शरण ली, जहां से उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। उनके छोटे भाई और युद्ध में उनके परम सहयोगी अमर सिंह ने बड़ा उत्तरदायित्व संभाला। उन्होंने जंगलों में रहकर सैन्य संगठन को मजबूत करना शुरू किया और सहयोगियों से सहायता लेना आरंभ किया। बाबू कुंवर सिंह सासाराम में गतिशील थे। वहां अंग्रेजी संचार व्यवस्था को तहस नहस करके वे मिर्जापुर की ओर बढ़े। मन में संकल्प था तो अंग्रेजों को खदेड़ देने का, स्वातंत्र देवी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करने का।

अब बाबू कुंवर सिंह का कार्यक्षेत्र विस्तृत होने लगा। अगस्त सितंबर 1857 में मुजफ्फरपुर के विद्रोहियों ने घोषणा कर दी कि हम कुंवर सिंह का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। पकड़े गए कई विद्रोहियों ने कोर्ट में गवाही के दौरान कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्ति की ओर है, अब कुंवर सिंह का राज है। अंग्रेज अधिकारियों में इस घटना से काफी डर पैदा हो गया और विद्रोहियों की धरपकड़ के लिए कार्यवाही तेज हो गई। कुंवर सिंह की रियासत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देते हुए समानांतर सरकार, दस्तावेज, न्यायालय के आदेश, मुहर आदि सहित बना ली गई थी। इसके मुख्य कर्ता धर्ता उनके भाई हरे कृष्ण सिंह थे। कुंवर सिंह की लड़ाई का दायरा बिहार तक सीमित न होकर पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। सासाराम से आगे बढ़कर वे बघेलखंड में रीवा तक पहुंचे। रीवा से नागौद पन्ना होते हुए बांदा की ओर निकल आए। बांदा से कालपी, कालपी से कानपुर, फिर लखनऊ होते हुए वे गंगा के किनारे किनारे आजमगढ़ होते हुए भोजपुर पहुंच गए। इस सारी यात्रा के दौरान कुंवर सिंह छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। 21 अप्रैल सन 1858 को कुंवर सिंह की ब्रिगेडियर डोगलस के सैनिकों से तीसरी लड़ाई हुई। इस युद्ध में कुंवर सिंह घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के साथ शिवपुर घाट बलिया से उसी रात गंगा पार करने की कोशिश की। नदी पार करते हुए डोगलस ने गोली चलाई जो उनकी दाहिनी कलाई पर लगी। कुंवर सिंह ने तुरंत तलवार से अपना दायां हाथ कोहिनी के पास से काटकर गंगा में बहा दिया और सफलतापूर्वक गंगा पार कर जगदीशपुर पहुंच गए। 23 अप्रैल सन 1858 को कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना से कुंवर सिंह की अंतिम और निर्णायक लड़ाई हुई, जिसमें कुंवर सिंह को विजयश्री मिली। अंग्रेजी सेना के 300 में से केवल 30 सैनिक और 7 अधिकारी ही बच पाए। उनकी सारी तोपों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, किंतु इस लंबे युद्ध में विजय का उल्लास 3 दिन बाद ही समाप्त हो गया। कुंवर सिंह 80 वर्ष के हो चुके थे। अनवरत युद्ध करते करते थकने और घायल होने के कारण उनका अंतिम समय निकट आ रहा था। 26 अप्रैल सन 1858 को भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देखते देखते वे चिर निद्रा में लीन हो गए और जनमानस उनकी वीरता की गाथा गुनगुनाता रहा। लुटा दिहिल परान जे, मिटा दिहिल निशान जे, चढ़ा के सीस देश के, बना दिहिल महान जे, पहाड़ तोड़ी तोड़ी के, नदी के धारी मोड़ी के, सुघर डहरी बना गईल जे कांट कूस कोड़ी के, कराल क्रांति ला गईल ब्रिटेन के हिला गईल, बिहस के देश के धजा गगन में जे खिला गईल, अमर समर में सो गईल कलंक पंक धो गईल, लहू के बूंद बूंद में विजय के बीज बो गईल, उ बीज मुस्कुरा उठल पनप के गह गहा उठल, विनाश क विकास में बसंत लहलहा उठल, कली कली फुला गईल गली गली सुहा गईल, शहीद क समाधि पर स्वतंत्रता लुभा गईल, चुनल सुमन समारी के स्नेह दीप बारी के, चली उतारे आरती शहीद क मजारी के।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने, इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर हम आपके साथ और एक बार फिर जीवन को नए नज़रिए से देखने की कला सीख रहे हैं, जिसे हम लाइफ स्किल्स कह रहे हैं। इस पूरी श्रृंखला में बहुत कुछ नया सीखा अपने बारे में और देखा कि किस तरह से माइंड पावर, थॉट पावर जो है वो ना सिर्फ मेरे रिश्तों को, मेरे पूरे जीवन को, बल्कि मेरे बॉडी की जो एलिमेंट्स हैं उन्हें भी ठीक करने में हमारी बहुत मदद करता है। आज बात को आगे बढ़ाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो इश्यूज़ जो रिजॉल्व नहीं किए हैं हमने, जो हमारे बैकलॉग में चल रहे हैं, बार बार बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको सॉल्व कैसे करें। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बहुत सारी बातें तो आपने हमें हमारी बॉडी के बारे में अवेयर करके बताई, ये भी बताया कि एक एक थॉट, एक एक फीलिंग कैसे विजुअलाइज करके हम उसको हील कर सकते हैं। बात करते हैं उन मुद्दों की जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमने पहले भी इसी श्रृंखला में बात की थी कि वो नहीं छूटती हैं, वो जो एक दर्द है, एक गुस्सा है, एक हर्ट है, मतलब वो थॉट आते ही, वो घटना सामने आते ही वो सब कुछ सामने आता है और बहुत मुश्किल होता है पास्ट से निकल पाना। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कम आउट?
1: सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि उसकी इफेक्ट कितनी पावरफुल हो रही है बॉडी पर। आज कई बार कोई इस प्रकार के इमोशंस हो, इमीडिएट हार्ट अटैक आ सकता है। हेंसेल की, जिन्होंने स्ट्रेस पर बहुत काम किया है, उनका कहना है कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं, उनका कारण है कि वह किसी को माफ नहीं कर पाते और वह जो फीलिंग है उसके कारण उनको इस प्रकार की बीमारी भी हुई। तो जब जब भी वह फाइल खुलती है तो सारी नेगेटिव इफेक्ट, न केवल मन पर, आपने जो कहा मन पर तो इफेक्ट हो ही रही है, कि बॉडी पर भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट हो रही है। यह भी एक पावरफुल रीज़न है कि इन इश्यूज को हमें रिजॉल्व करना चाहिए। जितना उससे ऊपर उठेंगे तब ही आप पूरे स्वास्थ्य को इंजॉय कर सकेंगे।
0: तो क्या करें, मतलब हर बार यही आ जाता है सवाल कि क्या करें, ये रिजॉल्व करें और कैसे करें, उस पर आते हैं। पहले ये बताएं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आई थिंक समवेयर वी नीड टू नो कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया था, मुझे धोखा दिया था, चीट किया था, बिजनेस में किया था, रिश्ते में किया था, वो मुझे याद आता है और मुझे सारा गुस्सा फिर आता है, लेकिन आता है, उसके थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद चला जाता है क्योंकि बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो मेरी बॉडी पर उसका असर क्या पड़ रहा है?
1: तब यही जो टॉक्सिक इमोशंस का हमने समझा था, वो सारी इफेक्ट होती है, क्योंकि फिर से सिंपैथेटिक अराउजल होगा, बॉडी पर उसकी इफेक्ट होगी, एंडोक्राइन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम, दैट विल अफेक्ट यू। आपकी जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी भी सप्रेस्ड होगी, तो इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट होगा, वो ब्रेन के 900 केमिकल्स विल गेट डिस्टर्ब, दैट ऑल्सो विल हैव अ इफेक्ट।
0: जैसे शिवानी, विल इट इंस्पायर मी मोर कि जब मुझे पता चले कि ये सब कुछ हो रहा है कि मैं रिजॉल्व करूँ?
2: या आई वाज जस्ट थिंकिंग, आजकल बहुत अवेयरनेस है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की, कि बहुत सारे कुछ एक महीने या कुछ एक साल से हम ऐसा खाना खा रहे हैं, ऐसे लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं जिससे शरीर में टॉक्सिन्स जम चुके हैं, तो हम एक अलग डाइट को लेते हैं, कुछ दिन अलग निकालते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। व्हाट अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन हियर? इतनी टॉक्सिक थॉट्स क्रिएट की हुई हैं इतने सालों से, कई बार तो जैसे बचपन से हमने पकड़ी हुई हैं वो बातें, उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे अगर, तो व्हाट मिरेकल्स इट कुड क्रिएट। क्योंकि जब भी कोई अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इमीडिएटली फील करता है कि मैं रिजुविनेट हो गया, इट्स लाइक अ न्यू बॉडी ऑलटुगेदर
0: हो जाता है, बिल्कुल
2: लाइट। क्योंकि इट्स लाइक पॉइजन, इट्स लाइक ये सारा जो गंध था वो मेरे शरीर से निकल गया, अब इसी तरह जो सारा गंध मैंने यहाँ पकड़ कर रखा हुआ है, एक्यूमुलेट किया हुआ है, इसको अगर मैं क्लीन कर दूँ तो हमें हम कितना हल्का महसूस करेंगे यहाँ, आई विल फील लाइट, और जितना पकड़ कर रखा है आई फील वेरी हैवी। So let's start detoxifying the mind, detoxifying the soul.
1: And this is no more necessary, क्योंकि वो जो toxins है वो तो मृत्यु के बाद चले जाएंगे, कि यहाँ जो toxins आपने भर के रखे हो दूसरे जन्म में भी आप carry on करने वाले।
0: फिर हम वो कहेंगे कि past life के कारण हो रहा है ये सब कुछ, because this is what we are carrying.
1: हाँ, और this can be a powerful motivation. अभी भी कुछ समय पहले मेरे पास एक patient था, वो करीब 25 साल का लड़का होगा, और father के प्रति उसको बड़ी hatred थी, क्योंकि फादर ने बचपन में उसको बाहर नहीं जाने देते थे, घर में ही रखते थे, लोअर मिडिल क्लास एरिया था कि भाई गलत संगत में आ जाएगा, और उसके कारण उसमें डर निर्माण हो गया। वो अभी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, लोगों को मिल नहीं पाता है, तो बड़ा हेट्रेड था फादर के प्रति। एक दो सेशन के बाद मैंने उसको कहा कि तुमने किया, उससे ऊपर कहते नहीं नहीं हो सकता है। फिर एक दिन बोलता है डॉक्टर साहब करना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि मैं सफ़र कर रहा हूँ। फिर और एक सेशन में मैंने कहा देखो अभी आपने नहीं किया ना, तो अगले जन्म में भी तुम इसको ले जाओगे। फिर नेक्स्ट सेशन हाँ हाँ नाउ आई एम फ्री, मुझे इससे मोटिवेशन मिल गया कि अगर अभी मैं फ्री नहीं हुआ तो अगले जन्म में भी इस हेट्रेट को, इस रिवेंज को मैं ले जाऊंगा, तो मैंने उसको पूरा छोड़ दिया।
0: तो वंडरफुल थिंग, रिवेंज और हेट्रेट उससे निकलने के लिए हम लोगों को छोड़ते हैं, व्यक्तियों को छोड़ देते हैं, जिंदगी मतलब किधर किधर किधर घूमते हैं।
2: सी हम लोगों को छोड़ सकते हैं, सपोज मेरा आपके साथ चीट आपने मुझे किया, मैंने आपको छोड़ दिया, चलो लेट मी से कि देयर इज नो अदर सॉल्यूशन, मुझे आपसे अलग होना है, मैंने आपको छोड़ दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, लेकिन क्या नफरत को छोड़ दिया? उस नफरत को तो फिर भी पकड़ के रखा ना, तो आपसे विड्रॉ हो गई। इट वॉज नॉट अबाउट विड्रॉइंग फ्रॉम पीपल, इट वॉज अबाउट विड्रॉइंग फ्रॉम द इमोशन, बट वी विड्रॉ फ्रॉम पीपल, होल्ड ऑन टू द इमोशन, सो द डैमेज इज मल्टीफोल्ड, कि मैं बार बार बार बार वही चिंतन कर रही हूँ। एंड फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे हम शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो शरीर का बेनिफिट है, लेकिन माइंड अगर टॉक्सिक है तो वो माइंड तो हर काम कर रहा है ना, हर रिश्ते में जा रहा है, हर प्रोफेशन में, मेरे हर फील्ड में वो टॉक्सिक माइंड वर्क कर रहा है। इसका मतलब मेरे जीवन का हर क्षेत्र ही अफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज द माइंड इज डूइंग एवरीथिंग,
0: एक्चुअली हर चीज में रिजेंटमेंट, ट्रस्ट ना करना,
2: सो इट्स नॉट अबाउट वन एस्पेक्ट द माइंड। देखो सपोज माई बॉडी इज टॉक्सिक, चलो मेरा शरीर ठीक नहीं चलेगा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, मेरे रिश्ते तो ठीक हो जाएंगे क्योंकि मैं बॉडी डजंट डू एनीथिंग इनटू द रिलेशनशिप्स, मैं अपने करियर में तो फिर भी थोड़ा ठीक चल लूंगा, बट माय माइंड इज एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ, हर स्फीयर पे मन है, इस पे टॉक्सिन्स अगर है मीन्स देयर इज गोइंग टू बी डैमेज एवरीवेयर। फिर मैं हर एक से नाराज होता रहूंगा, घर में लोगों से, प्रोफेशन में अपने कोलीग से, हर एक से नाराज होता रहूंगा विदाउट रियलाइजिंग कि जहर तो यहाँ भरा हुआ है।
0: वो मतलब वो एक जहर की जो एक वो नहीं कैरी करते थे पुराने जमाने में कि अंगूठी में डाल के रखते थे, सी आई थिंक हर बार एक ड्रॉप उसका वो डाल देते हैं। डॉक्टर साहब डिटॉक्सिफिकेशन की बात की सचिव शिवानी ने कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, उसकी तो टेक्निक्स हम समझ गए, ऐसी डाइट, अब इसको करें कैसे? नहीं होते रिजॉल्व, कितनी कोशिश करते हैं, इट जस्ट यू नो इट्स लाइक आई एम नॉट से इट कम्स, बट आई क्रिएट, कंटिन्यू टू क्रिएट इवन इफ आई डोंट वॉन्ट टू। It just comes.
2: It's because we don't want to forgive. Forgiving is not difficult. Forgiving is very easy.
0: We don't want to forgive.
2: अब मैं क्यों नहीं forgive करना चाहती? क्योंकि गलती उनकी इतनी बड़ी थी, दर्द मुझे इतना हुआ था, तो क्यों मैं फॉरगिव करूं? अगर मैं फॉरगिव करती हूं तो फिर वो और वो ही करेंगे, यू नो कितना ज्यादा
0: हम इस पर हो जाएंगे फिर।
2: अगर मैं ही बार बार माफ़ करती रहूँ तो वो तो फिर से, चलो कुछ होती हैं जीवन की बड़ी बातें जिसमें यू नो विच कैन बी लाइफ चेंजिंग, लेकिन छोटी छोटी बातों में ले लेते हैं, सारा दिन बातें हो रही हैं जो हम कहते हैं मैं अगर हर बार इसको बात को हल्का कर दूँ, माफ़ कर दूँ, तो ये तो हर बार करते जाएंगे, तो औरों को सुधारने के लिए अपना नुकसान, एंड फिर वो इतना संस्कार पक्का होता जाता है, इट बिकम्स माय नेचर टू होल्ड थिंग्स अगेंस्ट पीपल, नॉट बीइंग एबल टू फॉरगिव बिकॉज आई से उनकी गलती इतनी बड़ी थी। बहुत सारे भाई बहने हमें मिलते हैं हु आर कैरिंग बर्डेंड पास्ट, हुआ है जीवन में, इट कुड बी एनीथिंग। कुछ समय पहले एक बहन से मिलना हुआ जो ये टेलीविजन का प्रोग्राम काफ़ी समय से देख रहे हैं, और उन्होंने आकर अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब वो 11 वर्ष की थी तो उनके पेरेंट्स ने उनको एक दिन अपने किसी दोस्त के घर भेजा जो अकेला था, वो अबाउट 50-year-old पर्सन था जिसकी फैमिली किसी और सिटी में गई थी, तो पेरेंट्स ने कहा वो अंकल अकेले हैं, आप आज उनके घर चले जाओ। And that person, and this girl was 11 years old. That 50-year-old man physically abused this 11-year-old girl. Today, that lady is 40 plus. She's 40 plus. लेकिन ये 30 साल से ऊपर की जर्नी में उसने अपने पेरेंट्स के प्रति नफरत पकड़ के रखी है। She openly says, I hate my parents. I thought she'll say, I hate that person जिसने ये किया। She said, उससे मुझे कोई इतना लेना देना नहीं, गलती किसकी थी इसमें?
0: मेरे
2: पेरेंट्स की जिम्मेवारी थी मेरा ध्यान रखना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहां भेजा, तो पूरी गलती मेरे पेरेंट्स की. शी इज कैरीड दैट रिजेंटमेंट इन हर फॉर मोर देन 30 इयर्स नाउ. रिजल्ट आज वो एडिक्शंस में है और वो एडिक्शन से बाहर नहीं निकल के आ रही, क्योंकि इतनी नफरत मेरे अंदर भरी है कि जब तक मैं ये नहीं लेती आई डोंट फील गुड एट ऑल. नहीं तो वो माइंड में मेरे वही थॉट्स चलती रहती हैं. मैरिज हुई, बेटी है, लेकिन डिवोर्स हो गया, हस्बैंड के साथ नहीं बनी. करियर वाइज कुछ भी नहीं कर पा रही, फिजिकली भी कुछ एक एलिमेंट्स लगी हुई है. पेरेंट्स के साथ रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं बना, ओनली बिकॉज 30 इयर्स से ऊपर वो नफरत पकड़ के रखी है. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ये रिजेंटमेंट नहीं कैरी कर सकते, इवन इफ द पास्ट एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी वेरी डैमेजिंग. चाहे कुछ भी हुआ हो, वी नीड टू फॉरगिव, क्योंकि उसी से हमारी हीलिंग होगी. नहीं तो उस बहन को देखकर मुझे लगा, देखो पूरी जीवन इस नफरत को पकड़ने की वजह से इमोशनली, फिजिकली, रिलेशनशिप्स, प्रोफेशन, चारों एस्पेक्ट्स पर कहीं भी हेल्दी नहीं चला.
0: आई थिंक डॉक्टर पटेल, क्यों हम फॉरगिव नहीं करते? क्योंकि शायद हम उससे पहले, उस इंसिडेंट से पहले जैसा जीवन जी रहे थे वैसा जीवन चाहते हैं. तो अब वो तो आएगा नहीं, क्योंकि लगता है वो तो खत्म हो गया, तो इसीलिए अब वो प्राप्ति तो होने वाली है नहीं, इसलिए हम फॉरगिव नहीं करते हैं. हम उसको पकड़ के रखते हैं या रिजेंटमेंट या गुस्से में रहते हैं कि वो तो प्राप्त नहीं होगा, वो तो वापस नहीं मिल पाएगा जो था हमारा इतना सुंदर. नहीं,
1: हम अपने डैमेज तो सोचे ना. वैसे शिवानी बेन ने कहा, मुझे मेरे दो पेशेंट के एग्जाम्पल याद आए, भाई यहाँ तो डिप्रेशन सिर्फ हुआ है, वहां तो सिजोफ्रेनिया हुआ है. बोथ ऑफ देम वर फिजिकली अब्यूज्ड, आज दोनों सिजोफ्रेनिक है. तो देखो उन्होंने इतना उसको दिल पर ले लिया कि पागलपन आ गया. तो अगर वहीं पर माफ कर देते जल्दी से, कोई टेक्निक को अच्छे से समझ लेते, तो बीमारी नहीं होती.
0: माफ करना क्यों जरूरी है?
2: क्योंकि माफ करने से मेरी कितनी सारी हीलिंग हो गई ना. देखो जैसे गिरीश भाई ने कहा, एक एक थॉट हमारे सेल पर वर्क कर रही है, माइंड पर वर्क कर रही है, हमारे बॉडी के हर सेल पर वर्क कर रही है. तो हेट्रेड की थॉट है ना, आई एम कैरिंग अ होल बंच ऑफ थॉट्स ऑफ हेट्रेड, तो पूरे इफेक्ट नहीं आएगा. एनर्जी है, वाइब्रेशंस नहीं क्रिएट होंगी. जिनसे भी मैं मिलूंगी उनको मुझसे कौन सी वाइब्रेशंस मिलेंगी? इट्स लाइक द परफ्यूम यू आर यूजिंग, दैट इज़ योर एनर्जी. तो अगर आपने नफरत की परफ्यूम यूज़ की हुई है, आपके किसी के साथ भी रिश्ता नहीं जुड़ेगा. आई कम नियर यू एंड आई मूव अवे. कई लोगों से जब हम मिलते हैं, हमें लगता है नॉट वेरी कम्फर्टेबल इनसे मिलने से. कुछ हुआ नहीं, कहेंगे इनका ऑरा बहुत भारी है, इनकी वाइनो बहुत भारी भारी है ये. कुछ लोगों से आप मिलेंगे, आपको लगेगा इनसे मिलकर अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ वॉट पैकेट दे आर कैरिंग हियर. तो इसलिए आपका सिर्फ एक रिश्ता नहीं खराब होता, यू नो, जिसमें आपने वो एक्सपीरियंस किया. आप किसी भी रिश्ते को ब्यूटीफुली नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, क्योंकि आपकी अपनी ऑरा बहुत भारी है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जीवन, ठीक है, एक हादसा कितना भी पड़ा, एक हुआ है, देयर इज लॉट्स मोर टू हैपन, बहुत कुछ है जीवन में और. लेकिन अब आगे की डेस्टिनी, इसके बाद मुझे कैसी क्रिएट करनी है, दैट्स कंप्लीटली इन माई हैंड्स नाउ. नफरत पकड़ के रखो, दिस विल बी द डेस्टिनी. फॉरगिव, the world will be beautiful for me. There was another lady, she was abused when she was a child. Today she's 35 plus. I think she's one of the most sincere watchers I have seen of this program. Ek bhi episode shayad nahi miss kiya, notes banaye, study kiya. She had been physically abused and ek din wo program mein baithi thi, live program mein, and humme us pe commentary kar rahe the ki let go, jinko bhi humne aaj din tak pakad kar rakha tha, aaj hum unko jaane dete hain. After the program, she got up and said, 30 years ke baad, aaj us vyakti ko jaane diya. Us ek incident ki wajah se, she did not get married, logon se wo dur ho gayi. She said, I hate people. Us ek experience ki wajah se. Lekin thodi der baithi, uske damage ko samjha. She said, I let him go today. Jeevan parivartan ho gayi. Today she's a different person. So, hum hi khud ko damage karte, हम ही खुद को हील कर सकते हैं. दिस इज ट्रेमेंडस पावर दैट वी हैव.
1: रियली नो, दिस इज पावरफुल. बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया. और एक इम्पोर्टेंट बात की भी, क्यों मैं माफ करना चाहता हूँ? क्योंकि जो तुम्हारे कारण मेरे पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुए, उससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ. मैं तुमको माफ नहीं करना चाहता हूँ, इट्स ओके. लेकिन मेरे पर जो नेगेटिव इफेक्ट हो रही है, एटलीस्ट आई वांट टू राइज अबाउट दैट।
0: तो मैं अपने आप को तो माफ करूं कम से कम।
1: नहीं, उसको ही माफ कर, तभी वो इन्फ्लुएंस से आप ऊपर उठेंगे। तो मेरे फायदे के लिए मैं किसी को माफ कर रहा हूँ, तो करना ही चाहिए।
2: एंड माफ करना मतलब भी क्या, मतलब उस इंसिडेंट और उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद। इट डजंट हैव टू कम बैक ऑन माई माइंड, दैट इज माफ करना ना। माफ मीन्स वो बात बार बार बार बार मेरे माइंड में चलती रहती है, वो थॉट्स क्रिएट होते रहते हैं। माफ करना नीड नॉट मीन कि मैं उनके साथ जाकर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन जाऊँ। माफ करना इज नॉट कि मैं उनसे रोज बातें, माफ करना जस्ट मीन्स वो मेरे चित्त पर अब नहीं है,
0: वो मेरे थॉट्स में ना आए, मैं उनके वो जो फीलिंग्स थी वो ना। बट इज इट पॉसिबल, कैसे कर सकते हैं, मेरे हाथ में नहीं होता ना। सी अगेन व्हेन इट ओके आई क्रिएट, बट देन वो जब क्रिएट कर रही होती हूँ मैं, तो मैं उसके वश में हूँ।
2: तो अपने आप को फिर से समझाओ ना। सी अगेन अवेयरनेस, ये थॉट्स आ रहे हैं, मैं फिर अपने आप को समझाऊँ। एक नुकसान उन्होंने मेरा किया, बाकी नुकसान मैं अपने कर रही हूँ। एक नुकसान उन्होंने मेरा किया, जो भी किया, बिजनेस में चीट किया, अब्यूज किया, जो एक नुकसान किया, यस दैट पर्सन हैज डन व्हाट डैमेज, बाकी नुकसान कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। टॉक टू योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ, दिस इज चेंजिंग माय थॉट्स। और इसमें परमात्मा का प्यार और शक्ति हमें वो हील करने में मदद करता है। कोई मेरे साथ अगर ऐसा करता है, कोई भी प्रकार का धोखा, इट्स अ रिजेक्शन, मुझे एक रिजेक्शन मिलता है किसी रिश्ते में, परमात्मा से मुझे एक्सेप्टेंस मिलता है, प्यार मिलता है, तो वो मेरी हीलिंग को ईजी कर देता है। जस्ट बिकम्स वेरी सिंपल टू डू द प्रोसेस, बट ओनली इफ आई कीप टेलिंग माई सेल्फ डैमेज उन्होंने नहीं किया, ये रिपीटेड करने से डैमेज मैं कर रही हूँ, दिस आई हैव टू एक्सप्लेन टू माई सेल्फ। आपको बिजनेस में किसी ने चीट किया, क्या नुकसान किया, पैसे ले गए ना आपके, सारे पैसे ले गए लेट्स से, लेकिन आपके मन का, शरीर का और आपके रिश्तों का अब नुकसान कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। किसी ने आपको फिजिकली अब्यूज़ किया, फिजिकली किया ना, लेकिन अब माइंड का, रिलेशनशिप्स का, प्रोफेशन का नुकसान मैं कर रही हूँ। दिस इज हाउ आई विल हैव टू कीप टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड कम आउट ऑफ इट।
1: और कुछ पावरफुल एग्जाम्पल्स भी याद करो। ग्राहम स्टेन का उदाहरण बहुत सारे लोगों ने सुना है कि जो उड़ीसा में एक फादर थे, उनको और उनके बच्चों को जिंदा जला दिया गया था। तो एक साल के बाद पत्रकारों ने उनकी पत्नी को यह प्रश्न पूछा कि आपके पति और बच्चों के हत्यारों के बारे में आपके दिल में कैसी भावनाएं। तो उस महिला ने बहुत ही पावरफुल उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये हत्या हुई थी उसी दिन मैंने उन्हें माफ कर दिया था। तो बताने में भी जबरदस्त शक्ति चाहिए।
0: तो उनका जो रख के भी क्या फायदा,
2: इट्स नॉट अबाउट क्या फायदा, शी चेंज्ड हर डेस्टिनी। वो पूरा परिवार अपना देश छोड़ के इन लोगों की सेवा के लिए आए थे, इन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया। नाउ दिस लेडी, शी इज लॉस्ट ऑल हर थ्री फैमिली मेम्बर्स, शी कुड हैव लिव्ड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन पेन, शी इज वर्किंग टुडे विद द सेम पीपल, शी इज सर्विंग देम, शी इज हेल्पिंग देम, शी इज चेंज्ड हर डेस्टिनी। आप वो सिचुएशन को तो नहीं चेंज कर सकते हो, यू कैन गेट दोज पीपल बैक, बट यू कैन चेंज हाउ यू आर गोइंग टू कैरी इट फॉरवर्ड। दैट्स द पावर, क्रिएटिंग माई प्रेजेंट एंड माई फ्यूचर, not only holding back my past. This is the power we have.
1: In fact, remember such example. और इसमें बहुत बड़ा healing power है। कहते हैं I forgive you। ये तीन शब्दों में बहुत जबरदस्त शक्ति है। बस
0: यहाँ एक मेरे को एक और भी aspect लेना है, rejection का, जो आपने कहा कि ये तो situations वो थी कि लोग चले भी गए और लोगों से मैंने अपना नाता भी नहीं रखा, because I was rejected या मुझे धोखा हुआ। There are times when I have been rejected, but I'm waiting. I know somebody जो एक relationship में break हुआ और उसके बाद वो लड़का कहीं गया, लड़की यही है, अब वो rejection है या जो भी, the girl is still waiting, you know, वो wait, और उसके प्रति वो नफरत भी है कि मुझे reject किया, किस कारण किया, क्या, और वो जो वो wait, तो आज भी पूरा जीवन, दो साल बाद भी वो जीवन वैसा का वैसा है, और आना वेट भी, और तो ये इसको कैसे हील करें, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी एक तरह के रिजेंटमेंट में चल रही है, बाकी सारे रिश्ते जो हैं वो और ख़राब होने शुरू हो गए, क्योंकि वेट जो है वो बहुत पेनफुल है, और ऑब्सेशन, उसको कैसे हैंडल करें।
1: सभी अपोजिट है नहीं, यहाँ पर जो लेट गो करने की बात थी, हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में वो अटैचमेंट है। अटैचमेंट इतना पावरफुल है कि व्यक्ति डिटैच नहीं हो पाता है। तब अगर ये अच्छी तरह से मन को समझाए कि डिटैच होना ही मेरे लिए सॉल्यूशन है, मैंने अटैचमेंट रखा तो मेरी सुख शांति आनंद सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस कुछ भी हो जाए मुझे डिटैच होना है।
0: अच्छा, हम अगर ऑब्सेशन की बात करते हैं रिलेशनशिप में, कि वो व्यक्ति ऑब्सेस्ड हो गया और दूसरा व्यक्ति चला गया है,
2: कुछ नहीं है इसमें, एक ही थॉट है, आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस पर्सन, एक थॉट है, विच इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है ये थॉट। लेकिन ऐसे सिचुएशन में ये लोग अपने आप को वही थॉट देते जाते हैं। हमारे पास इतनी लंबी लंबी ईमेल आती है, आई जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट दिस पर्सन, सेज हु, सेज मी, चेंज व्हाट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके बिना हमारा जीना बंद हो जाएगा। लेकिन आई लव टू गिव माई सेल्फ दिस थिंकिंग कि मैं इसलिए दर्द में हूँ, मैं इनके बिना नहीं जी सकती। तो जब तक आप अपने आप को वो थॉट दोगे, आपको वही फीलिंग आएगी, आपकी वो वेट पीरियड चलती रहेगी। चेंज योर थॉट पैटर्न, आई एम अ पावरफुल सोल, मेरी लिविंग, मेरी हैप्पीनेस किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा था उनके साथ, बात करना, रिश्ता, वो ठीक है, बट डिपेंडेंसी नहीं है। इमिजिएटली आई विल बी एबल टू गेट बैक माई सेल्फ टू दैट डिग्निटी। ये एक्चुअली अपनी डिग्निटी को बहुत नीचे कर देना है कि एक किसी की वजह से आई एम नॉट रेडी टू लिव, आई कांट डू विदाउट दिस पर्सन।
0: इनफैक्ट उसके बारे में हम बात भी नहीं कर पाते किसी और से, क्योंकि अंदर अंदर खुद को बहुत बुरा लग रहा
2: है और खुद पर बहुत गुस्सा आता है।
0: हाँ, पता? कि हम क्या कर रहे हैं?
2: खुद से नफरत होती है कि मैं कितनी कमजोर हूँ। इट्स लाइक एनी अदर एडिक्शन कि मैं इस ड्रग के बिना नहीं रह सकती, मैं इस सिगरेट के बिना नहीं रह सकती, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती। तो जैसे बाकी एडिक्शन से हम अपने आप को ज़बरदस्ती हटाते हैं ना, सपोज आई वॉन्ट टू गिव अप सम एडिक्शन, मैं उसको ज़बरदस्ती छोड़ती हूँ, थोड़े दिन तकलीफ होगी, इट्स अ विड्रॉल सिम्टम। इसी तरह से रिश्ते में भी जो नहीं वर्कआउट कर रहा, आपको अपने आप को ज़बरदस्ती हटाना है, यू विल हैव टू ब्रेक अवे, थोड़े दिन तकलीफ होगी, लेकिन उस तकलीफ में अपनी काउंसलिंग खुद करते जाएंगे, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करते जाएंगे, धीरे धीरे एडिक्शन ओवरकम हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, थोड़े दिन करते हैं, फिर बीच में कहते हैं मैं एक बार फोन करके बात कर लूं, बस 2 मिनट के लिए बात कर लूं। तो इट्स लाइक 10 दिन मेहनत किया, 10 दिन मेहनत किया, सिगरेट छोड़ा, विड्रॉल सिम्टम हुए, थोड़ी सी विल पावर आई, फिर जाके एक सिगरेट ले ली, तो आपका वो पूरा 10 दिन का एफर्ट वेस्ट हुआ, यू हैव टू बिगिन ऑल ओवर अगेन। सोचे, डिसाइड करें, यू वॉन्ट टू मूव अवे, डू इट स्ट्रिक्टली, एवरी वन हैज द पावर टू डू इट, इट ओनली डिपेंड्स आप अपने आप को कौन सी थॉट्स देंगे। हम अपने आप को ही, यही अगर आपके आस पास किसी और को हो रहा होता, आप उनको क्या थॉट्स देते? कहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप उस पर डिपेंडेंट नहीं है। जो थॉट्स आप दूसरों को देते हैं, वही थॉट्स अपने आप को देने हैं।
1: और देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक तो अपने आप को ये सोचो कि भी और क्या क्या संभावना है, ये एक व्यक्ति से मैं अटैच हूँ, उसको छोड़ नहीं पाया, और कुछ संभावनाएं हैं, वो लिखो सचमुच, तो भी आपको मिल जाएगी कि भी और भी कई संभावनाएं हैं। आई कैन मेक फ्रेंडशिप विद अदर्स, मैं कोई अच्छा प्रोफेशन कर सकती हूँ, और कोई मेरे लिए अच्छी संभावनाएं हैं। और एक बात ये बहुत समझने की ज़रूरत है, ऐसे बहुत सारे केसेस में कि अगर वो अटैच ही रहे तो दुख में जीवन जिया, डिप्रेशन में जिया, बीमारियां आई, ख़त्म हो गए, और जो इससे बाहर निकल गए तो फिर उनका जीवन और बहुत अच्छा हो गया। इवन बाद में तो ये कहने लगे कि अच्छा हुआ कि हम इससे बाहर आ गए, अगर नहीं आते तो शायद हमारा जीवन बहुत दुखी होता। मेरे पास तो ऐसे कई प्रैक्टिकल केसेस है नहीं, जहाँ भी लड़की को कहीं अटैचमेंट हो गया, वो सोचती थी मैं सुसाइड करूंगी, ये लड़के के अलावा कहीं नहीं जाऊंगी, थोड़ा अच्छे से उसका पीछा किया और बातें समझाई, ट्रीटमेंट की और से मुक्त हुई, आके तो बड़ा अच्छा हुआ वो। तो ये सब आप लोगों ने मेहनत तो की, एफर्ट
0: की पावर से, बिकॉज ये एक पावर है। ना सिर्फ यूथ इसमें फंस रहा है, आज मिडिल एज में जो लोग, हमने बहुत बार बात की है, ऑब्सेशन होके और खुद, जैसे आपने कहा, शर्म खुद से आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, काउंसलर के पास भी नहीं जा पा रहे, तो क्या मेरे थॉट्स पावरफुल थॉट्स या मेडिटेशन इज
2: आई कैन जस्ट टेल यू के थ्रू दिस टेलीविजन प्रोग्राम लॉट्स ऑफ पीपल हैव डन इट, आई कांट शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। बहुत बहुत बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो यूथ हैं, चाहे वो मैरिड कपल्स हैं, जो आउट ऑफ मैरिज रिश्तों में जुड़ चुके थे, they have overcome it, and it's an inspiration. I feel very nice when I meet such people, ki look at the power every soul has. Jo atma decide kar leti hai ki mujhe ye karna hai, वो कर लेती है. एंड एवरी टाइम हम किसी से ऐसे मिलते हैं, इट री इन्फोर्सेस कि जो अपने ऊपर करेगा उसको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा.
0: डॉक्टर पटेल, सिस्टर शिवानी, आज फिर एक बार हम अपनी ही थॉट पावर को क्या मिरेकल देखते हैं. यू नो, ऐसे ऐसे सिचुएशंस जब लगता है कि लेट को किया ही नहीं जा सकता, हम छोड़ ही नहीं सकते, ये दर्द मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, हमने मतलब जीवन का एक सच मान लिया है.
2: दर्द को हम, दर्द हमें नहीं छोड़ेगा, हमें दर्द को छोड़ना है.
0: हम दर्द को छोड़ के इक्वेशंस चेंज करके स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं. थैंक यू सो मच.
2: शांति.
0: अभी तक तो ये चल रहा था कि बाहर दर्द है उस व्यक्ति के कारण, उस सिचुएशन के कारण मैं कंटिन्यूस पेन में हूँ, पूरा टाइम मेरे मन में एक बोझ रहता है, उस बोझ को लिए जाना ही, उसको ढोए जाना ही मेरी ज़िंदगी है. लेकिन जब अपने आप को पहचानते हैं और इस शक्ति को जानते हैं कि ये मुझ में ही है, क्योंकि पहले भी मैंने ही क्रिएट किया, ये ऑब्सेशन भी उस व्यक्ति या सिचुएशन ने तो नहीं कहा था, या वो जो कुछ हुआ था वो उस वक्त का सच था, आज उस सच को बदले बहुत वक्त गुजर चुका है, आज का सच ये है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, शरीर के साथ हूँ, इसीलिए शरीर भी, शरीर के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, अपने प्रति मेरी जिम्मेदारी है. बाकी सारी जिम्मेदारियों के साथ इस जिम्मेदारी को भी देखें, अपनी ही ताकत को पहचानें, बदलाव संभव है. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, फिर मिलेंगे. ओम शांति.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, आज हम स्वामी विवेकानंद के तेजस्वी विचारों की चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे संत थे जिनके रोम का हर कण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। राष्ट्र के दीनहीन लोगों की सेवा को विवेकानंद ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। उन्होंने युवाओं के हृदय को जितना झंकृत किया उतना शायद किसी और ने किया हो। विवेकानंद जी ने करोड़ों देशवासियों को समृद्ध करना ही अपना जीवन का लक्ष्य बनाया था। उन्होंने 4 जुलाई सन 1902 को देह का त्याग कर दिया। वे भारत के महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में स्थित शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रही है। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद को केवल 2 का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी भाई बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया। कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ, परम और पवित्र है। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों को आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़भूंजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इसी प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यही बड़े बड़े महात्माओं व ऋषियों का जन्म हुआ। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यही केवल आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्यों के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। श्रोतो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

0: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक, पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजी शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रुति हो, स्वामी विवेकानंद के कुछ अनमोल वचन प्रसिद्ध हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। वे कहते थे, हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है, करना ये है कि हम इसकी दिव्यता को पहचाने, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर कोई एक विचार ले और इसे ही अपने जिंदगी का एकमात्र विचार बना ले। इसी विचार के बारे में सोचे, सपना देखे और इसी विचार पर जिए। आपके मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही एक विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। यही समाज की रीत है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। हर जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। श्रुते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ RJ शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, साधारण मनुष्य अपने विचार का 90% विचार व्यर्थ विचार करता है, इसीलिए वो निरंतर भूले करता है। एक प्रशिक्षित मन कभी कोई भूल नहीं करता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अगर आप अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैं उस व्यक्ति को शूरवीर मानता हूँ जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वयं पर विजय ही सबसे कठिन विजय होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है, उसकी मांगे जो जो पूरी कर की जाती है त्यों त्यों और गर्जना करता रहता है। वे कहते थे, ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। वे कहते हैं, आज वही कल है जिस कल की चिंता तुमने कल की थी। वे कहते हैं, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, मगर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बड़ा सोचो, दूसरों से पहले सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है। वे कहते थे, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता, जीवन के हर कदम हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। वे कहते हैं, प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन, इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वो जो प्रेम करता है वही जीता है, वो जो स्वार्थी है वह मर रहा है। इसीलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, संभव की भी सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाए। वे कहते हैं, भय और अधूरी इच्छा ही समस्त दुखों का मूल है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वाणी है जो हथियार उठाए बिना ही क्रांति करवा सकती है और परिश्रम किए बिना शांति। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, भगवान से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं है, बल्कि प्रभावी ढंग से उसके सारे बंधन तोड़ देता है। वे कहते हैं, विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो रहे हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता, वो भयभीत होते हैं और यही असफलता का कारण है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।

कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रुति हो, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। वे कहते हैं, जो अपने लिए नियम नहीं बनाते उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, पीड़ितों की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मठ की भूमि तक भी बेच देंगे। हजारों असहाय

नारी हमारे नेत्रों के सामने कष्ट भोगते रहे और हम मठ में रहे, ये असंभव है। हम सन्यासी हैं, वृक्षों के नीचे निवास करेंगे और भिक्षा मांग कर जीवित रह लेंगे। वे कहते हैं, किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। ये निर्भयता ही है जो क्षण मर परम आनंद लाती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो अग्नि हमें गर्मी देती है वो हमें नष्ट भी कर सकती है, ये अग्नि का दोष नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हार के डर से कोशिश छोड़ देने से अच्छा है जीत की कोशिश करते हुए मर जाना। वे कहते हैं, धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। ये शक्ति जब तक सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ये देश धर्म, दर्शन और प्रेम की जन्मभूमि है। ये सब चीज़ें अभी भी भारत में विद्यमान है। मुझे इस दुनिया की जो जानकारी है उसके बल पर दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में भारत अन्य देशों की अपेक्षा अब भी श्रेष्ठ है, महान है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब कभी भारत के सच्चे इतिहास का पता लगाया जाएगा तब ये संदेश प्रमाणित होगा कि धर्म के समान ही विज्ञान, संगीत, साहित्य, गणित, कला आदि में भी भारत समग्र संसार का आदि गुरु रहा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। वे कहते हैं, मनुष्य अपने अंदर से जितना करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा वो संसार को भी उसी तरह पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व जान सके। वे कहते हैं, जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज़ 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यानपिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: डिटेक्टिव गोपीचंद. क्या बात है वर्मा, बड़े परेशान लग रहे हो.
2: क्या बताऊं गोपीचंद, मेरे साथ एक बहुत ही बुरी घटना घटी है. मैं और मेरी पत्नी 3 हफ्ते के लिए छुट्टी पर गए हुए थे. हमने अपनी चाबियां पड़ोसी के पास छोड़ रखी थी. लौट कर देखा तो घर में कई कीमती चीजें गायब थी.
1: आपके पड़ोसी का इस बारे में क्या कहना है.
2: उन्होंने कहा कि हमारे जाने के एक दिन बाद हमारे घर एक डिलीवरी वैन आई थी. ड्राइवर ने पड़ोसी को बुलाकर कहा कि वह मेरे द्वारा ऑर्डर किया गया अलमारी छोड़ने आए, इसलिए पड़ोसी ने मेरे घर का दरवाजा खोलकर हमारी अलमारी हॉल में रखवा दी.
1: क्या आपके पड़ोसी भी अलमारी रखवाने अंदर गए थे.
2: जी नहीं, वे दरवाजे पर खड़े होकर ही नजर रख रहे थे. जैसे ही डिलीवरी वालों ने सामान अंदर रखा, मेरे पड़ोसी ने दरवाजा लॉक कर दिया. लेकिन कुछ ही देर बाद वह डिलीवरी वैन दोबारा लौटी और उसके ड्राइवर ने कहा कि गलती से किसी और की अलमारी उन्होंने हमारे घर रखवा दी है. हमारे पड़ोसी ने दोबारा ताला खोला और उनके जाने के बाद फिर से लॉक लगा दिया. ये रहे हमारे पड़ोसी मिस्टर पंकज. पंकज, ये है डिटेक्टिव गोपीचंद. मैं अभी अभी इन्हें अलमारी चोरी होने की बात बता रहा था.
3: मुझे बेहद अफसोस है कि मैं अपने दोस्त के घर की निगरानी ठीक से नहीं कर पाया, लेकिन आप यकीन मानिए मैंने एक पल के लिए भी उन लोगों को अपनी नज़र से अलग नहीं होने दिया. पता नहीं ये सब कैसे हो गया.
1: पुलिस क्या कहती है इस बारे में.
2: उन्हें अभी तक कोई भी सुराग हासिल नहीं हुआ.
3: कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है.
2: आपका क्या कहना है गोपीचंद.
1: मेरा शक तो उन डिलीवरी वालों पर ही जाता है.
2: लेकिन कैसे.
1: इट्स वेरी सिंपल. उन्होंने अलमारी में किसी को पहले से ही बंद कर रखा था, ताकि जैसे ही आप घर लॉक करके चले जाएं, वह आदमी अलमारी से बाहर निकलकर सारी कीमती चीजें चुरा कर दोबारा अलमारी में बंद हो जाए. अब आप समझ गए ना.
4: और इस तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए डिटेक्टिव गोपीचंद ने एक और केस सॉल्व किया.
5: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM. आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा बोलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत.
3: साधी भोळी माझी आई.
0: या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें. अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8. खुश रहो, खुशियां बांटो.
5: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
6: ओम शांति.
5: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन.
6: थैंक यू
5: सिस्टर. आप लास्ट टाइम बात कर रहे थे अबाउट रिजेक्टेड फील करता है बच्चा, और जब बच्चा गर्भ में होता है पेरेंट्स का कैसा असर होता है. तो मैं अभी कुछ इंटरनेट देख रहा था, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट छोटा सा आर्टिकल है.
6: श्योर.
5: थोड़े वर्ड्स इसके डिफिकल्ट हैं लेकिन मेडिकल टर्म्स हैं, फिर भी मैं पढ़ूंगा. इट सेज इम्पैक्ट ऑफ मटर्नल स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी ऑन फीटल न्यूरो बिहेवियरल डेवलपमेंट. इट सेज रिपोर्ट्स शो दैट एलिवेटेड लेवल्स ऑफ एंटीनेटल डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी आर एसोसिएटेड विथ पुअर इमोशनल एडजस्टमेंट इन यंग चिल्ड्रन. द इम्पैक्ट ऑफ वुमन्स एंग्जाइटी और डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैज बीन फाउंड टू एक्सटेंड इन टू चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस
6: राइट
5: एज वेल एज टू अफेक्ट द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस शॉर्ट फॉर्म में HPA. प्रेडिक्टिंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर शॉर्ट फॉर्म में ADHD. डिसऑर्डर सिम्टम्स इन 8 to 9 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन.
6: सच अ पावरफुल मैसेज. मेटर्नल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मतलब जब आत्मा माँ के गर्भ में है, अगर माँ एंड इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट द फादर, लेकिन मदर ऑफ कोर्स डायरेक्टली,
5: फादर जो है मदर को कुछ भी बोले, आके झगड़ा करे, लड़े, तो उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है.
6: रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन फादर की भी डायरेक्ट वाइब्रेशंस भी तो बच्चा तो कैच कर रहा है ना.
5: आप तो दोनों की ना. मदर तो डिस्टर्ब हुई, एटमोसफेयर भी डिस्टर्ब हुआ, गर्भ में बच्चा भी
6: अब्सॉर्ब कर रहा है. तो उसने कहा मेटर्नल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन विल हैव एन इफेक्ट ऑन द न्यूरो बिहेवियरल ऑफ द न्यू डेवलपमेंट. मतलब माँ को अगर स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, उसका डायरेक्ट असर उस आत्मा पर पड़ने वाला है. और वो इतना ब्यूटीफुल उसने बताया कि वेयर डज इट इफेक्ट द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस द HPA. अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में क्या रहता है?
5: सोल,
6: आत्मा. आत्मा तो असर कहाँ पड़ रहा है? उसने कहा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस, मतलब वहां कि यहाँ का जो मेटर्नल स्ट्रेस है वो वहां उस आत्मा पर असर कर रहा है. और उसने कहा कि अगर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है तो देर आर चांसेस कि वो बच्चा 8 to 10 साल की एज में जब होगा तो उसको ADHD या ऐसी कोई बातें हो सकती है. दिस इज सो इम्पोर्टेंट इन द प्रेजेंट टाइम, क्योंकि आज के समय में वर्किंग मदर्स हैं, जॉब भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो उनके पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ ज्यादा हैं, चैलेंजेस भी हैं. वर्क प्रेशर भी है और उसकी वजह से हमने कहा स्ट्रेस भी नेचुरल है, लेकिन उस 9 महीने के दौरान अगर हम अपनी ये सारी चीजें करते हुए तनाव, एंग्जाइटी या कभी कभी डिप्रेशन भी अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट असर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ दैट चाइल्ड उस पर पड़ने वाला है, क्योंकि आत्मा वो वाइब्रेशन कैच कर रहे हैं। जैसे आज एक मदर देखती है कि क्या मैं फिजिकली फिट हूं एक नई रचना के लिए, एम आई फिजिकली फिट, अलोंग विद दैट शी नीड्स टू चेक एम आई इमोशनली फिट।
5: ब्यूटीफुल,
6: इमोशनली फिट भी तो होना है,
5: लेकिन इमोशनली स्ट्रांग करने के लिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हस्बैंड, हस्बैंड की फैमिली, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ।
6: लेकिन अब वो सब कहेंगे तो हम ब्लेम गेम में चले जाएंगे, तो मदर को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी। बाकी सब लोग ध्यान रखें तो बहुत अच्छा है। सोच की चेकिंग इम्पोर्टेंट है। कई बार जीवन में कुछ परिस्थितियां चल रही होंगी, जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, गायनेक है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट थी तो उस 9 महीने के दौरान उसकी अपनी मदर को लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर था, एंड मोस्ट ऑफ दोज 9 मंथ्स हर मदर वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। तो वो लेडी उस 9 महीने के दौरान दो चीजें कर रही थी, एक अपनी मम्मी का फुल टाइम ध्यान रख रही थी, caring, caring and caring was all that she was doing for 9 months. Dusra, wo constantly fear mein thi ke inko kuch ho na jaye, kyunki unki mother kafi critical thi. Aaj uska beta 18 saal ka hai, uske andar ye do sanskar most dominant hai,
5: caring and fear. Wo
6: 18 saal ka ladka itna caring hai जब हम उसको देखते हैं तो, क्योंकि नॉर्मली बॉयज, यू नो 18 ईयर बॉयज इतने केयरिंग नहीं होते, इट्स मोर ऑफ अ फेमिनिन क्वालिटी, सो मच केयर जैसे गर्ल करेगी अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, उतना केयर वो करता है, सबकी केयर करता है, परिवार की, एक्सटेंडेड फैमिली की, मतलब केयरिंग उसका डोमिनेंट संस्कार है। लेकिन फियर उसका बहुत बड़ा स्ट्रांग संस्कार है, इतना फियर होता है कि फ्लाइट में बैठे तो भी कहेगा फ्लाइट गिर तो नहीं जाएगी, हम मर तो नहीं जाएंगे। एंड फिर ये बहन ने कहा कि अब उसको समझ में आया ये ज्ञान स्टडी करने के बाद कि ये क्यों ये संस्कार है, और तब उसने शेयर किया कि जब ये छोटा था, मतलब 4-5 साल का बच्चा, तब भी ये बहुत टर्बुलेंट, रात को रोने लगना, अपसेट हो जाना, कुछ उसको तंग कर रहा है, जैसे तकलीफ दे रहा है। लेकिन आज हम देखते हैं 18 साल का वो बच्चा हो गया है, अब उसको वर्क करना पड़ रहा है अपने ऊपर कि ये फियर का संस्कार कैसे खत्म करें। कहीं भी उसके पेरेंट्स कहीं चले जाए, उसके अंदर फियर होता है कुछ हो तो नहीं जाएगा उनको, क्योंकि उस मदर ने 9 महीने यही थॉट क्रिएट की थी, कुछ हो तो नहीं जाएगा मेरी मदर को। इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस समय ध्यान अगर हमने नहीं रखा, हमने जो रिकॉर्डिंग क्रिएट कर दी अपनी वाइब्रेशन भेज कर उस आत्मा पर, वो उस आत्मा की रिकॉर्डिंग बन जाती है और उसको पूरा जीवन और अनेक जीवन उस रिकॉर्डिंग के साथ चलना पड़ता है। अनलेस दे चेंज द रिकॉर्डिंग, दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि आत्मा शरीर के अंदर जब गर्भ में है, कैचिंग पावर हाईएस्ट है, पेरेंट्स को सोच कर सोचना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, किसी चीज में नहीं अटकना, किसी से नहीं उलझना, कोई दर्द नहीं, कोई छोटी छोटी बातों में आकर तेरा मेरा इसमें नहीं जाना, अंदर बैठकर कोई सुन रहा है। अगर मदर बहुत जल्दी जल्दी ऐसे हो जाती है, सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों में डरती है, बच्चा भी वैसा हो जाता है। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। एक्चुअली अ पेरेंट हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द डेस्टिनी ऑफ द चाइल्ड एट दैट टाइम। आज पेरेंट्स ये तो ध्यान रख रहे हैं कि कौन से महीने में बच्चा पैदा हो रहा है, कौन सी डेट पर है, वो मुहूर्त टाइम कितना है, पंडित जी ने कहा है अगर ये टाइम पे पैदा होगा तो बेस्ट है, उस हिसाब से कभी कभी बहुत सारी चीजें भी ऑल्टर कराने लग जाते हैं। डेस्टिनी ऑफ द चाइल्ड उसकी सोच, संस्कार और कर्म में है, और पेरेंट के पास पावर है उस संस्कारों को इन्फ्लुएंस करने की। जहां पावर है वहां यूज करनी चाहिए। हम और ही चीजों में, हम सब एक्सटर्नल चीजों में जाते हैं. नाउ लुक एट द सीडी, बच्चा है, एक सेट ऑफ संस्कार आत्मा पिछले जन्म से लेकर आई है. एंड ये काफी पावरफुल सेट ऑफ संस्कार है, क्योंकि ये सिर्फ पिछले जन्म की नहीं लेकिन अनेक अनेक अनेक जो जो जो जो सब रिकॉर्डिंग है वो उसके पास है. तो वन इज पास्ट बर्थ संस्कार, सेकंड फैमिली, पेरेंट्स से मिले संस्कार, वो सारी रिकॉर्डिंग है उसके ऊपर. तो ये दो सेट ऑफ संस्कार अगर हमें ध्यान रहे तो हमें बच्चों के साथ वर्क करना बहुत ईजी हो जाएगा. हमें अपने बच्चे के अंदर कुछ ऐसे संस्कार दिखाई देंगे जो हमें लगेगा ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये इसने कहां से सीखा, ये ऐसे करेगा तो कैसे होगा आगे. तो कभी कभी हम उनके संस्कार को देखकर फियर क्रिएट कर देते हैं, एंग्जाइटी भी क्रिएट कर देते हैं. कभी कभी उसके लिए हम उनको क्रिटिसाइज भी कर देते हैं. कभी कभी हम उनको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर भी कर देते हैं, उसको देखो वो तो ऐसा नहीं है, तुम ऐसे क्यों हो. ये सारी एनर्जी उस आत्मा के लिए डिप्लीटिंग है. इंडिविजुअल को देखना है ये आत्मा. एंड हमेशा एक बच्चे को देखकर ये कॉन्शियसनेस क्लियर, ये आत्मा पीछे से कुछ अनुभव करके यहाँ आई है. जो इसके संस्कार हैं अभी, ब्यूटीफुल संस्कार्स, कुछ एक अगर हमें लगे भी कि कंफर्टेबल नहीं है, ये सब संस्कार किसी ना किसी कारणवश क्रिएट हुए हैं. लेकिन इम्पोर्टेंट याद रखना, ग्रूव नया बन सकता है.
5: मेरा जो ग्रैंड चाइल्ड है, मेरी बेटी का बेटा, अभी बोलना ही सीखा है. तो उसकी मदर ने शायद, मेरी डॉटर ने कुछ बोल दिया, डांट डूट दिया होगा, तो आके बोलता है नाना जी मुझे चोट लगी है.
6: हाँ.
5: तो मतलब किधर, इधर नहीं, इनसाइड.
6: इनसाइड, यस.
5: उसको ये शब्द कहाँ से आया कि मुझे अंदर चोट लगी,
6: अंदर चोट लगी है. ये भी लेकिन पॉसिबल है कि मदर भी सेंसिटिव है.
5: डेढ़ दो साल वाले बच्चे अंदर की चोट की बात कैसे.
6: एवरी चाइल्ड विल नॉट बी द सेम ना. कोई बच्चे मिलेंगे बहुत चंचल है, मस्ती वाले हैं, खेलते कूदते
5: हैं, है.
6: कोई बच्चे बहुत प्रोफाउंड बातें करते हैं.
5: हाँ, ये प्रोफाउंड भी करता, मस्ती भी.
6: हाँ, बहुत प्रोफाउंड. ऐसा लगेगा नहीं कि ये दो तीन साल का बच्चा है, एकदम प्रोफाउंड बातें करेंगे. द अदर डे आई मेट अ लिटिल गर्ल, चार या पांच साल की होगी, तो शी सेड आपको पता है, सेड क्या, गॉड मेरे से बातें करता है. आई सेड रियली, शी सेड हाँ. आई सेड कैसे बातें करता है, शी सेड बातें करता है, वो भी मेरे से बात करता है, मैं भी उससे बात करती हूँ. तो मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा कि कभी सिखाया है ऐसे क्या आपने कि यू नो भगवान से बातें करनी है. कहता हमारे घर में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, यही गॉड से बातें कर रही थी, बाकी हमारे घर में कोई नहीं कर रहा ये कुछ भी. सो बच्चा लेकर आया है वो संस्कार.
5: मेरे बेटे का बेटा, हम लोग सब वेजिटेरियन थे, तो बाद में इन लोग नॉन वेज बन गए थे. तो बच्चे को जबरदस्त के छुपा के चावल में मिला मिला के नॉन वेज उसकी मेड खिलाती थी.
6: हाँ.
5: फिर एग्स भी. तो उसने कई बार बोला नो आई डोंट लाइक, नहीं चाहिए. जैसे अब थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब वो अब डालो तो थूक देता है. और अभी वो प्योर वेजिटेरियन बना हुआ है. बोलता नो आई डोंट वांट इट. अब बात करने लग गया है.
6: हाँ.
5: तो मुझे नहीं चाहिए, एग भी नहीं खाता है.
6: ये संस्कार उसका पास्ट का कैरी फॉरवर्ड है.
5: अच्छा.
6: अभी का नहीं है क्योंकि इतना स्ट्रांग है. क्योंकि वो अगर वो संस्कार उस बच्चे का अभी का बना होता है ना, ये एक दो साल का, वो बहुत सॉफ्ट ग्रूव होता है. इसीलिए कहते छोटे बच्चे को कैसे भी मोल्ड करना चाहो तो मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि दे आर इन दैट स्टेज.
5: ये नॉन वेजिटेरियन का मोल्ड नहीं हो रहा है.
6: ये मोल्ड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ये एक दो साल का संस्कार नहीं है,
5: जन्मों का.
6: वो बहुत स्ट्रांग. अब आप सी, दैट्स व्हाई वी हैव टू विजुअलाइज. इमेजिन करें कि वो आत्मा अपने पहले शरीर में स्ट्रांग वेजिटेरियन, जैसे हम देखते हैं कि सपोज जैन कम्युनिटी के कोई थे, स्ट्रांग, टच भी नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, नजदीक भी नहीं जाएंगे. कोई संत महात्मा आत्मा अगर वो है जिसने कभी ऐसी चीज को सूंघा भी ना हो और जिसका बिलीफ सिस्टम उस चीज के प्रति बहुत स्ट्रांग हो कि ये चीज नहीं, मतलब नहीं, ये पाप है, यू नो, उतना स्ट्रांग अगर बिलीफ सिस्टम है किसी आत्मा का, इतने साल वो आत्मा उस बिलीफ सिस्टम के साथ जी, तो उसका वो लूप ऑटोमेटिक में है. वो ब्रेन वैसे वाली वायरिंग है,
5: आत्मा के रिकॉर्ड, गाय का दूध दे दो।
6: यस, अब ये आत्मा ने शरीर छोड़ा, नया शरीर लिया। अब इस बच्चे के केस में अगर हम देखें कि जब ये माँ के गर्भ में था तब इसको नॉन वेजिटेरियन का मिला है वाइब्रेशन, क्योंकि मदर इज हैविंग, लेकिन फिर भी वो प्रभाव उसके वो वाले संस्कार को चेंज नहीं कर पाया, क्योंकि पास्ट का संस्कार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यू नो दैट्स व्हाई अ सोल इज अ बंडल ऑफ ऑल दीज संस्कार।
5: फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया,
6: फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, पास्ट संस्कार बहुत स्ट्रांग है। अब उसको गर्भ में नॉनवेज का मिला भी, टेस्ट भी मिला, वाइब्रेशन भी मिली, लेकिन फिर भी
5: जब वो बोल नहीं पाता था तब वो खाया भी। हाँ। जब ठोस ठोस के उसको उनमें अंडा डाल देते थे, जो भी डाल देते थे वो खा लेता था उस टाइम।
6: राइट,
5: जैसे जैसे उसको बड़ा होने लगा है थूकने लगा,
6: नहीं खाना है। अब देखो, पास्ट बर्थ का संस्कार वेजिटेरियन, गर्भ में मिला नॉन वेज, तीसरा वातावरण आसपास पेरेंट्स अभी नॉन वेज खिला रहे हैं लेकिन पास्ट बर्थ का संस्कार बहुत डोमिनेंट है।
5: देखो
6: कितना इजी है संस्कार।
5: आप जो ग्रुप की बात कर रही थी, कितना ये सामने एग्जांपल है,
6: कितना स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। अब आगे इस बच्चे की जर्नी को देखना है कि क्या ये आत्मा अपने उस पास्ट संस्कार को पकड़ कर रखती है, या क्या ये चलते चलते परिस्थितियों में, पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से, फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस से उस एक नए ग्रुप को बनाती है। बोथ इज पॉसिबल। दिस इज द जर्नी ऑफ द सोल। संस्कार लेकर आए, पेरेंट्स से कुछ संस्कार बने, एंड दैट इज द फर्स्ट सेट ऑफ बंडल दैट वी हैव। इम्पोर्टेंट इज के पेरेंट्स को रियलाइज और अंडरस्टैंड करना है कि ये बच्चा आत्मा है जो संस्कार लेकर आया है। उसकी छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना। बच्चे को रिजेक्शन मिलता है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। बच्चों को इस एज में तो अपने पास्ट बर्थ की बातें भी याद होती हैं, सिर्फ वो एज होती है जहां वो उसको बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आज इतनी स्टडीज हैं, इतने रिसर्च पेपर्स हैं जहां बच्चों ने अपने पास्ट की सारी बातें बताई हैं, पेरेंट्स उनके कौन थे, फैमिली कौन थी, घर कौन सा था, जाके उनको आइडेंटिफाई भी किया है, उन लोगों को भी पहचाना है, बताया भी है मैं इधर ये वाली चीज रख के गई थी। यू नो, जैसे कई बार लेडीज घर में कुछ पैसे छुपा देती हैं, ज्वेलरी छुपाती हैं ताकि आने वाले समय में यूज होगा, और फिर अचानक शरीर छोड़ दिया, जाकर वो दिखाते हैं यहां रखा था, खोलो इसको, इसमें से निकलेगा, इतना स्ट्रांग है। तो ये सब देखने के बाद इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड कि ड्रेस ही तो बदली, सिर्फ ड्रेस ही बदलती है, कुछ और नहीं बदलता। तो हम जब सोल उसको देखेंगे, आत्मा, हम उसके किसी भी संस्कार पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएंगे। एक बहन हमारे पास सेंटर पर आई कुछ दिन पहले, कहती मेरे 4 साल का बच्चा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन पानी से बहुत डरता है, स्विमिंग नहीं करता। मुझे भी स्विमिंग बहुत पसंद है, कहती है, मेरे हस्बैंड को भी स्विमिंग बहुत पसंद है, सो वी वॉन्ट हिम ऑल्सो टू लर्न स्विमिंग। You know, we want so many things just because we do it, the child should also do. And we feel it's natural. कि पेरेंट को अगर वो आदत है तो बच्चे के अंदर भी वो होगी आदत। कहती लेकिन ये तो स्विमिंग पूल के नजदीक भी नहीं जाता है। कहती पिछले संडे मैं उसको सुबह से मना कर, आज जाएंगे, तो वो भी कहता हाँ मम्मी जाएंगे। शाम को जब तक पहुंचे, उधर कर मैं लेके गई, डर के भाग गया। कहते मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने पकड़ा, 2 थप्पड़ मारे और पूल में डाल दिया। कहते मैंने ये किया, सारे बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं, ये क्यों नहीं स्विमिंग कर सकता, व्हाई इज माई चाइल्ड डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स। तो आई जस्ट सेड इट लाइक दैट, यू नो, वेरी नेचुरली टू हर। आई सेड आपको याद है 5 साल पहले वो शहर में फ्लड आया था? आई सेड इस आत्मा ने उसमें शरीर छोड़ा था। कहते क्या आपको दिखता है ऐसा? हाँ, जस्ट सेड इट टू हर। शी सेड फिर तो ऑब्वियसली उसको पानी से डर लगेगा। आई सेड ऑब्वियसली, सी इट्स वन रियलाइजेशन विच विल चेंज एवरीथिंग। 30 सेकेंड्स पहले हम कहते क्यों पानी के नजदीक नहीं जाता है, क्यों सब बच्चों की तरह स्विमिंग नहीं कर सकता है, मेरा बच्चा डरपोक क्यों है। 30 सेकेंड्स में जब अगर ये समझ में आ गया इस आत्मा ने पिछली बार क्या एक्सपीरियंस किया था, हमें उसका वो सारा प्रेजेंट बिहेवियर नॉर्मल लगेगा। बच्चे हैं जिनको पानी से डर लगता है, कुछ बच्चों को अंधेरे से डर लगता है, कुछ बच्चों को अकेले छोड़ो तो वो अकेले नहीं रह पाते हैं।
5: मेरा वन ऑफ द ग्रैंडचिल्ड्रन, उसको तालियां बजाओ, अप्लॉज करो, वो रोने लगता है, बोले डोंट क्लैप, डोंट क्लैप, नो क्लैपिंग।
6: अब अगर इसको हम सोल कॉन्शियस स्थिति में नहीं देखें तो पेरेंट्स परेशान होने लगेंगे।
5: मुझे लोग बोल रहे थे साइकाट्रिस्ट के पास ले जाओ, हमारे यहाँ बात करने वाली हैं औरतें, अच्छी तरह प्यार से बात करेंगी, बताएंगी, कि फिर एक नया वर्ड डाल देंगे कोई उसके दिमाग
6: नहीं,
5: में
6: नहीं जरूरत है अब
5: तो मदर के दिमाग में डाल देंगे और उसके तो वो बच्चे के को भी पहुंच जाएगा कि मैं बीमार हूँ।
6: नॉर्मली बच्चों को
5: भूल जाएगा बच्चों,
6: हाँ, चार पाँच छह साल के एज तक पास्ट की मेमोरीज भूल जाने लगते हैं, जो मेमोरीज हैं, जो याद होती हैं। बच्चों को बहुत सारी बातें याद होती हैं, वर्ड्स याद होते हैं, वो सब भूलने लगता है अगर हम बहुत ज्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करें। यू नो वी शुड नॉट रिवाइव दैट मेमोरी, क्योंकि वो ग्रूव धीरे धीरे फेड हो रहा है, उसको रिवाइव नहीं करना चाहिए बार बार। कुछ चीजें कई बार जैसे ये हो सकता है, या जैसे पानी से, अंधेरे से डर, ये एक ट्रॉमा का इफेक्ट होता है। जैसे एक लेडी पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, क्योंकि उसको दो चीजों से डर लगता था, एक पानी और एक बस को देखकर। उसको बस से बहुत डर लगता था और पानी से डर लगता था। तो आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या करेंगे, आत्मा को, मेमोरी को रिवाइव करेंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे। तो थोड़ा पीछे गए तो उसको ये सीन दिखाई दिया कि वो श्रीलंका में है और वो राइस की जो पैडी फील्ड्स होती है ना, उसके साइड पे एज पे ऐसे चल रही है और सामने से बस आती है। शी लूजेज हर बैलेंस एंड फॉल्स इनटू द वॉटर एंड शी लीव्स द बॉडी। वो उस स्थिति में शरीर छोड़ती है। जिस स्थिति में आत्मा शरीर छोड़ती है ना, उसका बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए कहते हैं अंतमति सोगति, अंतमति बहुत इम्पोर्टेंट है।
5: इसीलिए एक्सीडेंटल डेथ को हिंदू पंडित बोलते हैं, नॉट अ नेचुरल डेथ।
6: या बिकॉज वो एंड में अगर ट्रॉमा हुआ है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि उसका कोई ऐसे कैरी फॉरवर्ड हमेशा होगा। लेकिन आत्मा ने दर्द में शरीर छोड़ा है, ट्रॉमा में छोड़ा है, अचानक छोड़ा है, बातें इनकम्प्लीट रह गई है, तो वो कई बार इम्प्रेशन याद रह जाता है। बट दैट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। मेजोरिटी आत्माओं को कुछ ना कुछ पास्ट का याद है। अब जैसे आपने कहा अपने ग्रैंड चाइल्ड का कि ताली बजाना, सडनली नॉइज, अपलोड करना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं है, एंड ही विल से ताली नहीं बजाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस आत्मा के ऊपर ताली बजने के साथ कोई एक्सपीरियंस रिकॉर्डेड है। जैसे हमने उस दिन देखा, सिगरेट पीने के साथ रिलैक्स्ड फील होने का एक्सपीरियंस रिकॉर्डेड है ना, एक बार किया तो सेकेंड टाइम जब टेंस्ड हुए तो रिलैक्स्ड फील करने के लिए हमने सिगरेट उठाई, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में एक्सपीरियंस और कर्म दोनों रिकॉर्डेड था। अब एक जीवन काल में तो ये देखना इजी होता है, लेकिन जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा तो वो हमें कंफ्यूजन, समझ में नहीं आता। अब अगर इस आत्मा का क्लैपिंग के सिनारियो के साथ कोई दर्द एसोसिएटेड है, सम अनप्लेजेंट अनहैप्पी एक्सपीरियंस है, तो वो जैसे ही वो स्टिम्युलस फिर आएगा, उस आत्मा को वो अनकंफर्टेबल फीलिंग होने लगेगी एंड दे विल से नहीं बजाओ। वो आत्मा नहीं बता सकती कि उसका वो रीजन क्या है, उसको वो बात याद नहीं है, सिर्फ वो दर्द याद है। तो पेरेंट्स को इस थोड़े से पीरियड को क्रॉस करना है, क्रॉस करना है विदाउट सेइंग क्यों आप ऐसे हो, क्योंकि ये भी एक बच्चे को फिर कंफ्यूजन हो जाता है, क्यों मैं ऐसा हूं, नो क्वेश्चंस। लेकिन साथ साथ धीरे धीरे एक आधे साल बाद हम उसको एक नया ग्रूव क्रिएट करने में मदद करेंगे, लेकिन पुराने ग्रूव को क्वेश्चन नहीं करेंगे, पुराने संस्कार के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसके सामने एक जना सिर्फ ताली बजाएगा, थोड़ी सी बजाएगा, जोर से नहीं होगा, ज्यादा लोग नहीं करें।
5: अब पहले से कम हो गया, वैसे
6: कम हो गया ना, ये होगा ही, ये कम होना ही है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है बच्चा, इट्स लाइक मेमोरी नो, आपको कल की बात कितनी याद है और पांच साल पहले की बात कितनी याद है, फर्क होगा। प्रकृति का नियम है, आत्मा नया शरीर लेती है, जैसे जैसे वो नया शरीर बड़ा हो रहा है, आत्मा बोलने की स्थिति में आती है, तब तक वो अपना पास्ट की बातें भूलती जाती है। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि पास्ट की बातें याद रखना इज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, वो हमारे प्रेजेंट के साथ क्लैश करेगा, हम पास्ट में भी जाएंगे प्रेजेंट में भी आएंगे, तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। इम्पोर्टेंट इज कि पेरेंट्स को फैमिली को ये अंडरस्टैंड करना और उस आत्मा के हर संस्कार को एक्सेप्ट करना और साथ साथ उसको एक नया संस्कार क्रिएट करने में मदद करना। आज के समाज को देखें, कहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहाँ नेचुरल कैलामिटी हो रही है, कहाँ किसी को कैंसर है, किसी को डिप्रेशन है, ये आज का समाज है। ये ही आत्माएं तो शरीर छोड़ेंगी और हमारे घर बच्चा बनकर आएंगी ना।
5: सही बात।
6: तो वो कुछ ना कुछ ट्रॉमा हो सकता है ना, देख कर आई है, तो उसको वो ट्रॉमा के दर्द से बाहर निकलने में मदद करना ये प्रेजेंट फैमिली की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वो तब कर पाएंगे जब उनको याद होगा आत्मा है। अगर वो कहेंगे मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा ऐसा क्यों है,
5: थप्पड़ मार के पुल पे पानी में फेंक दिया।
6: वेरी डिस्टर्ब्ड, शी थॉट इट्स वेरी अननेचुरल कि वो कैसे ऐसे। एंड देन यू नो हाउ पेरेंट्स विजुअलाइज कि ये मेरा करियर है तो मेरा बच्चा भी यही बनेगा। अब बच्चा तो अपने संस्कार और अपना भाग्य लेकर आया है, लेकिन हम कहते हैं वो यही बनेगा, वो यही करेगा। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग होती है। हमें उस दिन का वो आर्टिकल याद रखना है, कितना भी वो संस्कार लूप में है, वी हैव द पावर

0: दर्द खत्म करना है उसका एक्सपीरियंस. सो धीरे धीरे धीरे हम एक नया पैटर्न क्रिएट करने में आत्मा को मदद करते हैं. इसीलिए प्रेजेंट जीवन में कितना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो ट्रॉमास होंगे अगर उसका दर्द यहाँ पकड़ लिया, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप्स, दर्द, हर्ट, रिजेंटमेंट पकड़ ली, शरीर छोड़ेंगे, बच्चा वो कैरी फॉरवर्ड करेगा. बच्चे को भी नहीं पता होगा क्यों मुझे दर्द होता है इतना, पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता क्यों दर्द होता है इतना. यही आत्मा पिछले कॉस्ट्यूम में इसको बहुत इजीली रिजॉल्व करके आ सकती थी. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक रिकॉर्डिंग पर अटेंशन अटेंशन ध्यान रखें. हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन रिकॉर्ड हो रहा है. तो दो सेट ऑफ संस्कार ये हुए. पास्ट लाइफ संस्कार वेरी वेरी पावरफुल. सेकेंड, पेरेंट्स और फैमिली से मिले हुए संस्कार एक्सट्रीमली पावरफुल इन्फ्लुएंस.
1: थैंक यू सो मच सिस्टर.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. थैंक यू.
2: व्हेन द सोल इज इन द वूम्ब ऑफ द मदर, इफ द मदर हैज फ्रीक्वेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन, then these negative emotions have a deep impact on the emotional strength and the mental health of the child. While the soul is in the womb, parents have the power to influence the sanskars and thereby the destiny of their child. Parents need to protect themselves from getting into conflict, put aside the egos, forgive and forget, so that they radiate only vibrations of purity, peace and love to the soul. Parents will understand their children if they are aware that the child is a soul who is carrying sanskars of many past births and sanskars received from family in this birth. Parents should not criticize, ridicule or compare their child with others. Every soul will have a different set of sanskars. Thoughts like, why is my child like this? Why is he not like everyone else? Are thoughts in which a parent is questioning and thereby rejecting the sanskars of the child. Let us have compassion for the soul's past and help the soul to gradually create a new sanskar.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माय एनर्जी लाइक दिस। माय एनर्जी इज फॉर अ पर्पस ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साथी, पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है। क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा, ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ दर्शना सोनी जी भोपाल से जुड़ी हुई हैं। तो पिछली बार हमने विशेष मानसिक स्वास्थ्य पर उनसे बातें की थी, तो तब मुझे लगा कि आप करियर पे भी बात कर सकते हैं, हमारे युवा साथियों को अपना अनुभव सुनाकर उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि गांव में रहने वाले जो युवा साथी हैं उनको करियर काउंसलिंग की बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। कई बार युवा सोचते कुछ और, होता कुछ और कई बार तो बच्चे पढ़ते भी कम है गांव साइड में। 10th 12th होने के बाद वो कोई ना कोई जॉब या मजदूरी करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनका जो है उतनी बड़ी सोच नहीं रखते कि हमें आगे क्या करना है, तो ऐसे में थोड़ी मुश्किलें होती हैं। और कुछ कुछ बच्चे जो है एजुकेशन फील्ड में कई टीचर वगैरह बन जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो मजदूरी या फिर इधर उधर गांव के लोग जो है सेट हो जाते हैं। तो ऐसे में गांव वालों को या विद्यार्थी मित्रों को खास करके काउंसलिंग का थोड़ा सा हमें जो है पार्ट अगर उनको मिल जाता है, तो थोड़ी मेहनत करके वो भी अपना अच्छा जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं या अच्छा करियर बना सकते हैं। तो आइए इसी सिलसिले को ध्यान में रखते हुए दर्शना जी से बात करेंगे। दर्शना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत।
0: जी कैसे हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप बताइए।
0: जी जी जी, मैं भी अच्छा हूँ। और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए, आपने अपने करियर को कैसे चुना और करियर के लिए आपने किस तरह की पहल की?
1: जी बिल्कुल, मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखती हूँ।
0: जी जी,
1: और एक पिछड़ापन है वहाँ पर जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। हमारी भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, और राजधानी में एक छोटा जिला है हरदा, तो वहीं के ग्रामीण अंचल से मेरी शिक्षा जो है वहीं से शुरू हुई। तो कहना चाहूंगी कि वहाँ से आगे बढ़ते हुए जब मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, उसके पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी हूँ। मेरा 12th गवर्नमेंट स्कूल, 9th से लेकर 12th तक मेरा गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था। उसके बाद मेरा जो एडमिशन है वो मेडिकल कॉलेज में हुआ, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद मैंने सोशल वर्क एजुकेशन में अपना PG किया, तो अच्छा, ये बहुत बड़ा मेरा एक टारगेट रहा, बिकॉज अक्सर डॉक्टर्स MD करते हैं अपनी लाइफ में, कि उन्हें MD करना है, अच्छी जॉब पाना है, आगे जाना है। लेकिन मेरा जो चुनाव था वो सोशल वर्क काउंसलिंग की तरफ था। और उसके बाद मैंने PG डिप्लोमा भी किया मेंटल हेल्थ में, और इसके अलावा मेरा इंटरेस्ट योगा वगैरह में बहुत है, क्योंकि नेचुरोपैथी योगा भी हमारे जीवन का एक बेस है। तो कहना चाहूंगी कुल मिलाकर कि डॉक्टर बाय प्रोफेशन, बट बाय पैशन आई एम काउंसलर एंड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। तो डेफिनेटली करियर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड रहा है हम सबके जीवन में, तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे।
0: बिल्कुल सही बात कहा आपने। तो फिर आप आगे कैसे बढ़े, थोड़ा सा अपनी करियर काउंसलिंग या फिर करियर को लेकर आपके मन में क्या था, थोड़ा सा वो बताइए।
1: जी अगर मैं अपना खुद का एग्जाम्पल पहले दूं, तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूंगी, हाँ, करियर को मैंने कैसे देखा अपने जीवन में, तो देखिए शुरू से ही बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि इंटेलिजेंट वो होता है बंदा जो साइंस सब्जेक्ट लेता है। तो स्कूल से ही दिमाग में भर गया था कि अगर मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो मुझे डॉक्टर बनना है। तो बचपन से घर में परिवार में, क्योंकि ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है ना इंसान को, तो इंसान के सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, दो ही ऑप्शन कि डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पर ये बेस्ट होते हैं। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं हमारे पूरे बैकग्राउंड में, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, पूरे शहरी इलाका भी आसपास है, लेकिन फिर भी कोई करियर काउंसलिंग मुझे नहीं मिली थी मेरे बचपन में जिस तरह से मिलनी चाहिए थी। क्योंकि जब हमें ऑप्शंस पता चलते हैं ना कि डॉक्टर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो दवाई दे, बहुत सारे लोग PhD भी करते हैं, वो भी डॉक्टर होते हैं। तो मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मुझे तो बचपन से सुनने में आया था कि डॉक्टर बनना अच्छा होता है, तो ठान लिया था कि चलो डॉक्टर बनना है। और इंजेक्शन लगाने से डर लगता है पढ़ने में, एवरेज स्टूडेंट इंजेक्शन लगाने में डर लगता है, पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट थी, तो बहुत महंगी कोचिंग क्लास से भी मैंने एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि मैं अपनी क्षमताओं को जानती थी। सोशली काफी अवेयर थी शुरू से ही, स्कूल टाइम से ही सोशली अवेयर थी। कल्चरल बैकग्राउंड में मेरा काफी इंटरेस्ट था, डांसिंग स्किल्स को लेकर मेरा मन में बहुत रुझान था। पर मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी तो मैंने अपनी गवर्नमेंट को एक लेटर भी लिखा था कि हमारी स्कूल में डांस टीचर क्यों नहीं है, क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में आर्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं है। अब ये बात तो सोचने वाली है कि स्कूल टाइम में ये बात मेरे दिमाग में आ गई थी, ये मेरा पहला सोशल एक्शन था करियर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे डांस सीखना है, तो बहुत ज्यादा एक तरह से ना एक इम्बेलेंस हो गया था मेरे माइंड में कि मुझे सीखना जरूरी है, मैं सीखना चाहती हूँ। अब वो करियर से संबंधित होता या नहीं होता उसके लिए काउंसलिंग की जरूरत थी, है ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्कूल टाइम से ही शुरू हो जाती हैं। फिर मेडिकल कॉलेज में ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश वीक होने के कारण हमारा परफॉर्मेंस एवरेज से नीचे भी चला जाता है, हमारे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं। लेकिन अब मुद्दा इस बात का उठता है कि कौन प्रैक्टिस आगे जाकर अच्छा करेगा, ये मार्क्स से या नंबरों से डिसाइड नहीं होता, ये बात होती है। और मैंने होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के एक पार्ट को समझा कि जो मेंटेनिंग कॉज होता है, मतलब कि सिर्फ दवाई से ही जिंदगी नहीं सुलझती, दवाइयों के नॉलेज के साथ साथ आपको अपने जीवन में मेंटली, फिजिकली एंड सोशली एंड फाइनेंशियल लेवल पर ये नॉलेज होना चाहिए कि आपको लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो इस बात को समझाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, लोगों से बात करना जरूरी होता है। और मेरा चूंकि समाज सेवा से भी थोड़ा सा एक अटैचमेंट था, तो कॉलेज टाइम से ही जिन लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां थी, किडनी फेलियर था एक लड़की को, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, उसके लिए मैंने एक छोटा सा अभियान चलाया, कार्ड शीट पर मैंने उसका एड बना करके कॉलेज में लगाया कि बच्ची को पैसे की जरूरत है, उसका किडनी ट्रांसप्लांट होना है या जो भी है। हालांकि आजकल तो इतनी सारी टेक्निक्स आ गई हैं कि बिना ट्रांसप्लांट के भी किडनी की बीमारी को ठीक किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कॉलेज टाइम से ही मुझे सोसाइटी की तरफ ले गई, कम्युनिकेशन की तरफ ले गई, और सोशल वर्क से मेरा इंटरेस्ट काफी जुड़ता गया। और सरोकार नाम की एक संस्था है भोपाल में, तो वहां से मेरा अटैचमेंट हुआ, मुझे करियर की नई दिशा मिली। फिर मैंने काउंसलिंग की तरफ अपना रुख और भी मोड़ दिया, और फिर मेंटल हेल्थ को लेकर के अब नॉर्मल मेंटल हेल्थ की तरफ और मेरा रुझान बढ़ता गया। और अलग अलग एनजीओ से मैंने एज ए गेस्ट लेक्चरर भी काम किया, और आज ये कंडीशन है कि हाँ, इसमें मैं बहुत उस लेवल का नॉलेज मैंने ले लिया है कि मैं किसी भी व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करने के लिए बेहतर प्रयास कर सकती हूँ, इतना मैं कह सकती हूँ अभी प्रेजेंट की कंडीशन में। जी हाँ,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दर्शना जी, काफी अच्छा आपने इनसाइट दिया है हम सभी को कि आपने अपने जो जर्नी है उसके जरिए आपने बहुत अच्छी बातें बताया कि किस तरह का माइंडसेट हमारा होता है, वो आपने बताया। और मोस्टली गांव से आने वाले बच्चे जो है जब पढ़ाई करते हैं 10th 12th में, तो उनके लिए इंग्लिश का और फिर ये मेडिकल फील्ड की जो बातें आती हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उन्हें, क्योंकि वो उस तरह के सोसाइटी में कभी पले पड़े नहीं है, उनको कभी वो चीजें टच में नहीं आई, तो उनके लिए वो सारी चीजें फिर से नई हो जाती है, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके अगर थोड़ा सा वहां पर एक पार्ट अगर मिल जाए बच्चों को, थोड़ा सा अपग्रेड होने का अगर मौका मिल जाए, कोई ऐसे कोच मिल जाए, कोई ऐसे ट्रेनर मिल जाए, तो शायद बच्चों को बेहतर जिंदगी मिल सकती है, बेहतर करियर के बारे में सोच भी सकते हैं। जैसे आजकल बड़े बड़े स्कूलों में वगैरह जो है काउंसलर्स भी रखते हैं ताकि बच्चे अपने करियर को ठीक से फ्रेम कर पाए, और वो चीजें कहीं ना कहीं हमारी जो स्कूल लेवल पे है रेगुलर जो है उसमें कहीं ना कहीं, और गांव से साइड में होता है तो फिर ये चीजें लैकिंग हो जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं दर्शना सोनी जी से कि कैसे हम लोग अलग अलग करियर में जा सकते हैं और अपने करियर को फ्रेम आउट कर सकते हैं, उसके बारे में उनसे बात करते हैं, लेकिन गीत के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो मुस्कुराओ।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम की। बातें हो रही है खास दर्शना सोनी जी से, जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और युवाओं को साथ में ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए ये प्रोग्राम है जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं और अपने करियर को फ्रेम करने में कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी कमी रह जाती है। उस कमी को पूरा करने का उद्देश्य से इस कार्यक्रम को हम रेडियो पे प्ले करते हैं और बहुत सारे युवा साथियों को जो है अच्छा लगता है इस तरह का कार्यक्रम। वो फोन वगैरह नहीं करते हैं लेकिन सुनते हैं कार्यक्रम और सुनकर वो अपने आप को जो है काफी अच्छा महसूस करते हैं, उन्हें मोटिवेशन मिलता है। और पिछले बार हमने देखा कि जब हमने शुरू शुरू में रेडियो पर इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो एक हॉस्टल वाला लड़के ने फोन करके मुझे बताया था कि वो एकदम से डिप्रेशन में था हॉस्टल में, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छा नहीं लग रहा था उसको। लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से उसे काफी इंसाइट मिला और फिर उनको लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने फोन करके, ऐसा लगा कि वो मेरे इस डिप्रेशन को इस प्रोग्राम ने एक सेकंड में चेंज कर दिया और मैं बिल्कुल हैप्पी फील करने लगा और मेरे अंदर एक जैसे कि ऊर्जा आ गई। ऐसा लगा मानो कोई रेडियो के माध्यम से कोई फरिश्ते मुझे जो है कुछ बातें बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम सभी को मोटिवेट करता है कि लोग बच्चे सुनते हैं तो उन्हें जो है एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो आइए दर्शना सोनी जी, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में और मैं चाहूंगा कि करियर को फ्रेम आउट कैसे करें, गांव में रहने वाले बच्चे अगर अपग्रेड होना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे?
1: देखिए, बच्चे चाहे गाँव के हों या शहर के हों, मैं तो ये कहूंगी कि शहरों में भी आज भी ऐसे स्कूल्स हैं जो करियर काउंसलर को या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को रखते नहीं है, या फिर मतलब बहुत सारे स्कूल्स रखते भी होंगे बड़े बड़े शहरों में, लेकिन सभी शहरों में ऐसा नहीं होता। मतलब छोटे शहरों की अगर मैं बात करूं तो छोटे शहरों में आज भी इसमें कमियां देखी जा सकती है ना। तो मैं सबसे पहले करियर को लेकर के, चूंकि हमारी भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है कि माता पिता पहले गुरु होते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो अगर माता पिता गुरु हैं तो सबसे पहला सजेशन जो है करियर के लिए वो मैं माता

0: से शुरू करूंगी कि
1: बिल्कुल
0: माता पिता शुरू से ही, मतलब जब बच्चा छोटा होता है तब से ही उसकी मेंटल, फिजिकल और सोशल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करें कि
1: जी।
0: वो कैसा है, और एक डायरी बनाए। मैं सभी पेरेंट्स को सजेशन देना चाहूंगी कि अभी तक अगर उन्होंने डायरी नहीं बनाई है तो वो अपनी एक डेली डायरी बनाए और उसमें मंथली रिपोर्ट अपने बच्चे की लिखें कि इस महीने हमने अपने बच्चे में, चाहे वो 10th क्लास में हो, 11th क्लास में, 12th क्लास में, है ना, चाहे वो 10th 11th या 12th में, या फिर वो कॉलेज पढ़ने वाला बंदा, राइट, क्योंकि कॉलेज में भी आजकल क्या होता है कि सिर्फ टाइम पास होता है कई जगहों पर। सीधे शब्दों में कहा जाए तो डिग्री लेने का काम हो रहा है लेकिन स्किल्स डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है कई जगहों पर। एमबीए में लोग एडमिशन ले लेते हैं और उन्हें एमबीए का क्या फुल फॉर्म होता है, उसका वर्ड मीनिंग हमारी जिंदगी में क्या है, उनको सिखाया उस तरह से नहीं जाता है, कई लोगों को मैंने देखा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि उस डायरी में पूरे महीने की एक्टिविटीज लिखी जाए कि आज हमारे बच्चे ने, मतलब पूरे महीने में मेंटली, फिजिकली और सोशली क्या इम्प्रूव किया है, उसने किस बात में इंटरेस्ट दिखाया, किस बात में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्या वो करना चाहता है, क्या वो करना नहीं चाहता है। तो जो चेंजेस होते हैं ना माइंड के, जो इम्बेलेंस होता है माइंड का, बड़े बड़े बच्चों में भी, जो 20 साल से ऊपर के हैं, 25 साल के हैं, उनके अंदर भी, और जो छोटे हैं स्कूल में उनके अंदर भी। तो इससे क्या होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि माता पिता को बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में पूरी जानकारी होगी, मतलब कि पूरी महत्वपूर्ण जानकारी। पूरी पूरी जानकारी होना तो डिफिकल्ट होता है क्योंकि एवरी पर्सन इज यूनिक इन द वर्ल्ड, लेकिन बहुत कुछ जाना और पहचाना जा सकता है। फिर यहाँ से शुरू होती है एक न्यू जर्नी की, चलिए आप डायरी मेंटेन कर रहे हैं, आपको पता है। फिर ये बात आती है कि जब 10th होता है तो 10th में प्रोफेशनल काउंसलर से उसको ये काउंसलिंग दिलवाई जाए कि डिफरेंट सब्जेक्ट हैं पूरे इंडिया में, आर्ट्स है, मैथ्स है, साइंस है, तो उससे रिलेटेड करियर काउंसलिंग का एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो डिफरेंट क्वेश्चन का जब आंसर देता है ना इंसान, जैसे कि किसी को पेड़ काटना पसंद नहीं है, उसमें लिखा है कि क्या आप पेड़ काटेंगे, तो अगर वो यस पे निशान लगाता है तो इसका मतलब वो एक हमारे विजुअल डेवलपमेंट के बारे में या आर्किटेक्चर के बारे में या बिल्डिंग बनाने के बारे में सोच सकता है। लेकिन अगर वो बोलेगा नहीं, मुझे पेड़ काटना बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ पर तो बिल्डिंग बननी चाहिए, है ना, इस एरिया में थी, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पेड़ काटना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग हम बनाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को ये लग रहा है कि नहीं बनाना चाहते, मतलब वो एनवायरमेंट से संबंधित है, कहीं ना कहीं उसका लगाव है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग तरीके। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हमें सुनने में बड़े अजीब लगे, लेकिन उसका महत्व ये होता है कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है हम पता करना चाह रहे हैं। हम मान लीजिए मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन उससे नहीं बन रहा है, लेकिन उसको अगर आर्ट से रिलेटेड या इतिहास से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर दिया गया तो उसका आंसर उसने बहुत अच्छे से दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास से संबंधित बातों में इंटरेस्टेड है।
1: जी
0: तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है करियर काउंसलिंग के लिए, जो कि करियर काउंसलर करवाता है। 10th क्लास में तो जरूर होना चाहिए क्योंकि सही सब्जेक्ट का चुनाव होगा तो 11th और 12th में प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चे को। और फिर दूसरी बात ये है कि 11th और 12th पढ़ने के बाद भी कई लोगों का इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो ये भी एक फैक्टर है। तो 12th के बाद भी काउंसलिंग की फिर जरूरत पड़ती है, फिर से वही एटीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, फिर से वही क्वेश्चनरीज का टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद भी इंसान का इंटरेस्ट पता चल सकता है। कुछ लोग पढ़ने में भी अच्छे होते हैं, क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं और संगीत भी अच्छा गा लेते हैं। अब तीनों चीजें तो करियर के रूप में हो नहीं सकती हैं, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि अगर हमारी कोई हॉबी, जैसे गिटार बजाना किसी की हॉबी है, तो वो उसे हॉबी के प्रोफेशन के तौर पर प्रायोरिटी के तौर पर रखे कि हाँ मैं हॉबी के तौर पर गिटार बजाऊंगा या परफॉर्मेंस दूंगा, लेकिन मैं 8 घंटे का जॉब फाइनेंस डिपार्टमेंट में करूंगा। तो ये भी क्राइटेरिया होता है कि आपको अगर 3 चीजें आती हैं, मान लीजिए आप संगीत में भी अच्छे हैं, आप वॉलीबॉल या क्रिकेट भी खेल लेते हैं, अगर आप पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट है, तो फिर चुनाव तो 8 से 9 घंटे का आपको करना ही पड़ेगा ना, कि आपकी प्रायोरिटी पैसे कमाने को लेकर के क्या है। सीधा मुद्दा ये भी है कि आप करियर के रूप में, एजुकेशन के रूप में और पैसा कमाने के लिए कौन सी लाइन चूज करना चाहते हैं, जहां आपकी बेहतर पकड़ है वहां आप चूज करेंगे। और बाय हॉबी, हॉबी को देखते हुए आप संगीत अगर बहुत अच्छा गा लेते हैं और अगर आप उसे प्रोफेशनली परफॉर्म भी करना चाहते हैं, तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि महीने में मैं कितनी बार परफॉर्मेंस दे पाऊंगा और मैं कितनी बार अपनी कला का उपयोग कर पाऊंगा, क्योंकि करियर के रूप में दो नावों में सवार नहीं हुआ जा सकता है। है ना। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप मोटिवेशन के तौर पर आगे बढ़े, लोगों के लिए आप एक ऐसा मोटिवेशन बन जाए कि लोग आपको खुद से इनवाइट करने लगे। आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप देखेंगे कि योर स्टोरी करके और बेटर इंडिया करके एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक पर। तो इसपे क्या होता है कि योर स्टोरी और बेटर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको स्टार्टअप या बिजनेस से रिलेटेड स्टोरीज मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के जमाने में जॉब करते नहीं है बल्कि जॉब देते हैं। तो जॉब देने वाला अगर बनना है तो हमें योर स्टोरी और बेटर इंडिया की कहानियों को बहुत ही गहराई के साथ समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। अब पैसों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में है वो तो अपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे सकते हैं, लेकिन जिनकी हालत खराब है, जिनका लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, या तो पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा या फुल टाइम जॉब कहीं पर करना पड़ेगा। तो पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करके जो पैसा इकट्ठा होता है, या फिर लोन लेने की प्रक्रिया उनको समझनी होगी कि कहाँ से मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसा इनोवेशन करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट खुद देने के लिए तैयार हो जाए। आजकल तो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को लेकर कुछ योजनाएं भी चलाई हैं, अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट में तो वो कुछ सपोर्ट भी करती है। तो इसकी पूरी नियमावली को समझना होगा। तो आजकल के बच्चे क्या 12th के बाद से ही बिजनेस के बारे में सोचते हैं, और काफी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि बचपन से बिजनेस को होते हुए अपने घरों में देखते हैं कि बिजनेस कैसे होता है। अब बिजनेस की अगर बात करें तो बहुत ही पॉपुलर बिजनेस जो इंडिया में पॉपुलर हो सकता है, और हेल्थ बेनिफिट के लिए मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी एक प्रकार से ग्रो हो रही है धीरे धीरे, उसमें मैं नाम लेना चाहूंगी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का।
1: जी जी
0: ऑर्गेनिक फील्ड में जो कल्चर हो रहा है उससे फूड जनरेट होता है। तो फूड जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। इंसान की बेसिक जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, ये सभी लोग जानते हैं। तो रोटी, कपड़ा और मकान में जो बिजनेस हो रहा है उसमें ऑर्गेनिक खेती काफी सारे युवा लोग कर रहे हैं, कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं और पैसा ही बहुत कमा रहे हैं। गुजरात में भी एक चिंतन दवे करके एक युवा है जिनका नाम है चिंतन दवे, उन्होंने भी लगभग 25 लाख का टर्नओवर किया है अपनी खेती में। एक छोटे से एरिया में उन्होंने घास उगाई है, एक ऐसी घास जो कि हमारे गाय भैंस खा सकते हैं और उससे दुग्ध उत्पादन बढ़ सकता है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, विदाउट एनी पेस्टिसाइड इस तरह से। और अगर आप इसके अलावा एग्जांपल देखना चाहेंगे तो भोपाल के पास में इंदौर भी है मध्य प्रदेश में।
1: जी।
0: तो इंदौर जो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, इंदौर
1: जी, जी, जी।
0: इंदौर में शिवपुरी और इंदौर का एक लड़का है जिसका नाम है हरि ओम, और शिवपुरी का एक लड़का है जिसका नाम है सुपात्र उपाध्याय। ये दोनों मिल करके एक रूट्स नाम का एक कंपनी चला रहे हैं, रूट्स नाम की, जिसमें की सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि केमिकल फ्री है, मतलब फुली ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है। और ये एक ऑफलाइन शॉप है, ऑनलाइन भी वो लोग बेचते हैं, ऑफलाइन शॉप है। जबकि उनका एजुकेशन आप देखेंगे तो एजुकेशन वाइज उन लोगों ने फायर एंड सेफ्टी ब्रांच पे बीटेक किया हुआ है। अब आप ये सोचने वाली बात है कि जिन लोगों ने फायर एंड सेफ्टी ब्रांच पे अपने पेरेंट्स के कहने पर, किसी ने अपने पेरेंट्स के कहने पर बीटेक में 4.5 साल लगा दिए, उसके बाद उनको समझ में आया कि नहीं, ये हमारी लाइन का हिस्सा नहीं है, ये हमारा मन नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है और हम बिजनेस करना चाहते हैं। तो उन लोगों ने 2-3 बिजनेस बदले, उनको फेलियर भी मिला, लेकिन फेलियर से वो लोग हारे नहीं, उन्होंने अंततः बिजनेस ही किया। तो कई बार ऐसा होता है कि जो डिसीजन है करियर का वो वाकई में गलत हो जाता है। कई लोग पीएससी फेस करते हैं, लोक सेवा आयोग की एग्जाम देते हैं 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, और कई लोग बीई करते हैं, है ना, फिर कई लोग बीए करके डायरेक्टली एग्जाम दे देते हैं। तो देखिए मुद्दा ये भी होता है कि इसके पीछे 2-3 कारण होते हैं। मान लीजिए किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बीई करने की सलाह दे दी, इंजीनियरिंग की सलाह दे दी, तो उसके पीछे कारण ये भी होता है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी एक होता है कि यार अच्छी खासी जॉब लग सकती है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी कई लोगों को फील होती है। दूसरा बिलीफ सिस्टम, कि बच्चों पर बिलीफ सिस्टम कमजोर होता है, कई बार पेरेंट्स बिलीव नहीं कर पाते कि यार ये आगे जाके पता नहीं क्या करेगा, डिग्री होना बहुत जरूरी है, बड़ी बड़ी डिग्री अगर पास में होंगी, एमबीए कर लेगा, बीटेक कर लेगा तो कहीं ना कहीं नौकरी अच्छी मिल सकती है। तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को सॉल्व करने के लिए वो लोग चूज करते हैं कि यार ये करियर हो सकता है, वरना ये रूट्स जो इंदौर में चला रहे हैं सुपात्र और हरिओम, तो ये रूट्स केमिकल फ्री प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में इसलिए बेच रहा है क्योंकि उनका सेल्फ इंटरेस्ट है, लेकिन ये बिलीफ सिस्टम और ये जो फेलियर को सहने की शक्ति है ये होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फेलियर को सहने की शक्ति नहीं होगी ना तो इंसान क्या करेगा, वो मजबूरन कोई ना कोई जॉब कर लेगा, फिर वो काम नहीं करेगा जो उसके इंटरेस्ट का है। तो ये होता है पेरेंट्स के साथ में कई बार। और जो लोग, मैं एक ऐसा एग्जांपल भी जानती हूँ जिसकी मम्मी प्यून है, स्कूल में एक चपरासी की पोस्ट पर है एक लड़का जिसने आईआईटी से बीटेक किया और उसने जॉब नहीं किया, उसके बाद उसने खेती बाड़ी सीखी और शहद शहद का बिजनेस उसने सीखा, लेकिन शहद का बिजनेस करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए उसको काफी टाइम लगा और उसने लोन लिया था इसके लिए, जबकि उसके घर की स्थिति लोअर मिडिल क्लास है। तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली की आप हालत समझ सकते हैं कि उन्हें क्या सोचना पड़ता होगा, क्या करना पड़ता होगा। लेकिन चूंकि बंदा पढ़ने में बहुत अच्छा था तो गेस्ट लेक्चरर के तौर पर अलग अलग कॉलेजेस में से सेशंस वगैरह लिए, उसने पैसों की कमाई भी करी, साथ में लोन भी उसने लिया और शहद की कंपनी उसने खोली और आज लाखों का टर्नओवर है हम लोगों का, 25 लाख से शायद ऊपर का ही टर्नओवर है। तो 4-5 साल लगते हैं ग्रो होने में, धीरे धीरे इंसान कमाता है पैसे, अपने घर को भी चलाता है ना, तो ये सब चीजें करियर के साथ में चलती रहती है। और बहुत ही अच्छा होता है कि घर वाले अगर साथ हो जाए, मतलब माता पिता और घर वाले अगर बच्चों के साथ हो जाए ना, तो मुझे लगता है करियर ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
0: हाँ, मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है क्योंकि जिसका मन है जो करने का, उसमें अगर मेंटली सहयोग किया जाए। अभी हो रहा होता क्या है इंडिया में, आज भी ये हो रहा है कि स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए लोगों की समझ नहीं है, और मार्क्स के आधार पर तो सबको तोला भी नहीं जा सकता कि मार्कशीट बहुत अच्छी है किसी की, किसी ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया तो वो इंसान ईमानदार भी होगा अपने काम के लिए, जरूरी नहीं है। तमाम तरह के लोग हैं दुनिया में जिनकी मार्कशीट बहुत अच्छी, जिन्होंने MBA किया हुआ है, लेकिन अब आप देखिए कि उनका काम काज क्या ईमानदारी के बेस पर है, क्या ईमानदारी के आधार पर है, क्या समाज के लिए बदलाव कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है।
1: जी
0: तो
1: दर्शना जी, काफी अच्छा
0: हाँ,
1: आपने बताया,
0: हाँ,
1: बहुत ही सुंदर अलग अलग एग्जाम्पल देखे आपने, बहुत सारे उदाहरण दिए कि कैसे हम लोग अपना करियर को फ्रेम आउट कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो इसमें माता पिता और फैमिली का जो है बैकग्राउंड बच्चों के साथ अच्छा हो, फैमिली की बॉन्डिंग मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है, तो बच्चा बहुत कुछ करने के लिए सक्षम भी हो जाता है, उसको एक मेंटली सपोर्ट मिलता है, ये बात मुझे बड़ा अच्छा लगा। कई बार होता है ना, माता पिता बोलते ठीक है जो करेगा सो, नहीं तो हम तो है ही है, ऐसे करके उनको जो है डिपेंडेंट कर देते, तो वो भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन बच्चे को करियर के बारे में उसको कुछ करने के लिए सपोर्ट करें, उसको बताएं कि क्या करना चाहते हैं, काउंसलिंग करें, उसके साथ बातचीत करें और उसको जहां भी लगता है वहां हेल्प करें। अगर पढ़ाई बीच में छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ रहा है भाई, क्या हो गया, तो थोड़ा सा उसको हेल्प करें कहीं ट्यूशन के लिए, ताकि वो अच्छा ग्रो कर सके। या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं है तो फिर टेक्निकल चीजें उसको सिखाए। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आपने स्टार्टअप की बात बताई, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कही है, तो इसमें भी KVK करके संस्थान है गवर्नमेंट का, वो ट्रेनिंग देती रहती, तो उनके साथ कोई अच्छे मास्टर या कोई अच्छे ट्रेनर के साथ उनको अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग दे खेती करने का भी, तो उससे भी बच्चे जो है अपना कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आजकल जो हाइड्रोलिक फार्मिंग भी आ गई है, तो वो घर के छत पे भी चीजों का प्रयोग करके कर सकते हैं, अपनी सब्जियां घर पे उगा सकते हैं, किचन गार्डनिंग का भी कॉन्सेप्ट आया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी हो गया है, तो घर से भी कुछ चीजें कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए माता पिता का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जब बच्चे को ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई हार्ड लग रहा है, तो नेचुरली उसका कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक कला होगा, जैसे आपने कहा डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी चीजें भी है, तो इस फील्ड में भी वो अपना जो है करियर बना सकता है। बस इसमें वही है कि एक माता पिता का बॉन्डिंग बच्चों के प्रति चाहिए, और वो अगर होता है तो चीजें आसान हो जाती। तो आई आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं, उसके बाद फिर दर्शना जी से बात करेंगे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर करियर ऑप्शन, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और आज के हमारे खास मेहमान दर्शना सोनी जी भोपाल से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं। और आशा करूंगा अब हम लोग आखिरी मोड़ पे है कार्यक्रम के कंक्लूजन पे कि हम लोग एक मैसेज के साथ कुछ बातें आपको बताने वाले हैं। तो दर्शना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार। कैसे हैं आप?
1: जी हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ।
0: तो मैं चाहूंगा कि कंक्लूजन में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल तो बताए बच्चों के, और जाते जाते क्या बताना चाहेंगे एक प्रॉपर तरीके से वो अपने करियर को फ्रेम करे, इसके लिए कुछ सिंपल टिप्स उनको जरूर बताइए। जी
1: हाँ जी, एक कंक्लूजन मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, किसी भी करियर के लिए जी
0: जी जी जी
1: हाँ हाँ किसी भी करियर के लिए जो इको फ्रेंडली लाइफ होती है वो बहुत जरूरी होती है आज के समय में, क्योंकि करियर शब्द के पहले आती हेल्थ। तो सबसे पहले हर एक इंसान को समझना पड़ेगा कि अगर हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में इको फ्रेंडली लाइफ अगर शामिल है, अगर हम प्रकृति के करीब हैं, तो हमारे दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज आएंगे जो दूसरों से हमें अलग बनाए। क्योंकि नौकरी भी अगर हम कहीं करते हैं और अगर हम नौकरी अपनी छोड़ देते हैं बाय चांस, और अगर हम अपना करियर चेंज कर लेते हैं, तो सामने वाला हमें याद करे, वहां पर हमारी स्पार्क होनी चाहिए कि सामने वाला हमें याद करे कि यार वो बंदा यहाँ पर था तो क्या इनोवेटिव थॉट थे उसके, क्या क्रिएटिव माइंड था उसका। तो ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जैसी लाइफ हमेशा रहे ये जरूरी नहीं होता है। आज मैंने एक ऐसे डॉक्टर को भी देखा है जो कि पुणे शहर में एक बहुत बड़ा सर्जन था, गोल्ड मेडलिस्ट सर्जन, लेकिन आज वो लोगों को कुछ सालों पहले मतलब उनका माइंडसेट चेंज हुआ और उन्होंने हॉस्पिटल में ताला लगा दिया। उसके बाद उन्होंने उनका नाम है डॉक्टर प्रवीण चौड़िया, जो पूरे इंडिया में और विदेशों में भी शायद फेमस है। मेडिसिन फ्री लाइफ करके उनका ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक बहुत बड़े एरिया में, एक बहुत बड़े लैंड में उन्होंने काफी सारे पेड़ लगाए, उन्होंने लोगों को एक इको फ्रेंडली नेचर में रहना सिखाया, और आज वो योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग एंड ऑर्गेनिक फूड को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से काउंसलिंग कर रहे हैं। लोगों को 4 दिन जंगल में रखते हैं अपने साथ में एक प्राकृतिक वातावरण में। तो आप सोच सकते हैं कि लाइफ हमें क्या सिखा रही है। लाइफ हमें यही सिखा रही है कि हमारा प्रोफेशन चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, चाहे कोई से भी डिपार्टमेंट में हो, लेकिन हमें प्रकृति के करीब रहना है, तभी हमारा माइंड इनोवेटिव या क्रिएटिव सोच पाएगा लाइफ में। और परोपकार भी हमेशा साथ में रखना है, क्योंकि बिना परोपकार के तो कोई भी करियर हमें संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता है। बस यही मैसेज है मेरा।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को आपकी बातें क्लियर है कि कैसे हम अपने करियर को फ्रेम कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। बहुत सारी आपने आउटलाइन जो है बच्चों को दिया है और बहुत सारी चीजें जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इस विषय पर आपने बहुत अच्छी बातें बताई। चलिए दर्शना जी, जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप सभी को।
1: हाँ जी, मैसेज तो अभी फिलहाल जैसे कि मैंने अभी कहा ही है तुरंत कि इको फ्रेंडली लाइफ से जुड़ना बहुत जरूरी है। और लास्ट मैसेज यही है कि करियर का कोई भी कैप्शन मायने रखता है कि हमारा पद क्या है, हमारी प्रतिष्ठा क्या है, हमारा समाज में ओहदा क्या है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। तो किसी भी करियर के लिए ह्यूमैनिटी का रिलीजन हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र का विजन हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। हम जो भी वर्कआउट कर रहे हैं अपने करियर में प्रोफेशनल लेवल पर, उस टेबल पर हमारा हाथ अगर रखा जाता है तो उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट होना चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। जी बस यही मैसेज है मेरा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दर्शना सोनी जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी बातें आपने शेयर किया अपने अनुभव के, और हमारे युवा साथियों के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो इनसाइट है आज उनको मिल गया है। और जिस तरह से आपने छोटी छोटी बातें उनको बताया है, एक काउंसलिंग वाला जो पार्ट है वो भी आपने पूरा किया, और एक संदेश के माध्यम से इको फ्रेंडली होने के लिए आपने कहा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम लोग कर सकते हैं। और एक रेवोल्यूशन एक तरफ जो है हम देख रहे हैं, जहां पर हम जो एक बीच में जो है कुछ चीजें हम लोग टेक्निकल चीजों को या फिर पढ़ाई को लेकर काफी सजग थे, लेकिन अब वही चीजें जो है नेचर के साथ जुड़ रहे हैं हम लोग। जैसे आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया और स्टार्टअप्स के बारे में बताया, तो ये सारी चीजें हम सभी लोगों के लिए बहुत ही एक वरदान साबित हो सकता है अगर हम आपका जो मैसेज है एक अच्छा इंसान बन के अगर हम लोग काम करना शुरू कर दे। तो थोड़ी सी जरूर मुश्किलें होती हैं, लेकिन बाद में वो सेट हो जाता है और आप एक अच्छा व्यक्ति भी बनते हैं और एक अच्छा करियर भी आपका बन जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगा दर्शना जी, थैंक यू सो मच फिर से एक बार
1: जी,
0: आपको।
1: आपका भी धन्यवाद।
0: जी जी जी शुक्रिया। तो मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और विद्यार्थी मित्रों को मैं कहूंगा कि आप आराम से टाइम लीजिए करियर फ्रेम करने के लिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, किसी की मत सुनिए ऐसा नहीं कहूंगा मैं, सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की, जो आपके मन को अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप कंफर्ट है उसी क्षेत्र में आप काम करें, ऐसे शुभ आशा के साथ अपने फ्यूचर को अपने करियर को ब्राइट बनाए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत ओम शांति,
1: जय जय
0: सुनते
1: माता।
0: रहो मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच।

0: wonderful.
1: सच है बिल्कुल. You are wonderful.
0: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया जले. छम छम छम छम छ छम छ छम. ए गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है. रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है. रोज

0: जमेदार सुबेदार पीते घुड़ाकू पीते पीते चिलम चली वारे तमाकू तेरे घुंघट में पिक पिक घुंघट में पिक पिक घुंघट में पिक पिक हे हे
1: भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी
2: यो यो यो यो
1: भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी
2: यो यो यो यो
0: देखो चला रे चला रे चला हाय मेरा मन
2: तेरी गोरी गोरी प्यारी प्यारी पंखी की सुवन
0: देखो चला रे चला रे चला हाय मेरा मन देखो वो चला रे मेरा मन
1: हे भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी
3: पहनना हटा दो
1: भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी